सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, आपको अवगत करा दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम वतन का राग, जो केंद्रित है श्री राम शर्मा आचार्य पर। 8:30 बजे कार्यक्रम होगा प्रकृति की पुकार, आज सुनेगा मिट्टी के बारे में। इस विषय पर विशेषज्ञ प्रवीण सोलंकी से फराज फयाज की बातचीत सुनिएगा। सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा योग संवाद। योग संवाद में आज आप सुनेंगे श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत। सुबह 10 बजे सुनिएगा रेडियो रिपोर्ट, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्टोरी टेलिंग और सदानीरा निमाड़ी गायन पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। साढ़े 10 बजे सुनिएगा आजाद हिंद, जो केंद्रित है अवनीनाथ मुखर्जी पर। 11 बजे स्वास्थ्य चर्चा, चर्चा का विषय होगा HIV। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे विशेष विशेषज्ञ संध्या सक्सेना। 11:30 बजे सुनेगा युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, आज श्री राम शर्मा आचार्य की पुण्यतिथि है। रेडियो आजाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।

0: भूल का फल। रात में वर्षा हुई थी, सवेरे रोज से अधिक चमकीली धूप निकली। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, भरपेट पिया, फिर घास सूंघ कर फुदक गया। गीली नम भूमि पर उसे कूदने में बड़ा मजा आया और वो चौकड़ियां भरने लगा। पहले माता के समीप उछलता रहा और फिर जब कानों में वायु भर गई तो दूर की सूझी। माँ ने कहा, बेटा दूर मत जा, कहीं जंगल में भटक जाएगा। वो थोड़ी दूर निकल गया था। उसने वहीं से कह दिया, मैं थोड़ी देर में खेल कूद कर लौट आऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। माता मना करती रही, लेकिन वो तो दूर जा चुका था। उसे अपनी समझ पर बहुत अभिमान था और माता के मना करने पर उसे झुंझलाहट भी आई थी। वो कूदने में मस्त था, चौकड़ी लगाने में उसे रास्ते का पता ही नहीं रहा। उसने जंगल को देखा और ये सोचकर कि थोड़ी दूर तक आज जंगल भी देख लूं, आगे बढ़ता गया। सचमुच वो जंगल में भटक गया और इसका पता उसे तब लगा जब वो कूदते उछलते थक गया। जब उसने लौटना चाहा तो उसे रास्ते का पता ही नहीं था। वो कटीली घनी झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढने के लिए भटकता ही रहा। अरे तू तो बहुत अच्छा आया, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, पास की झाड़ी से एक बड़ा सा भेड़िया ये कहता हुआ निकल पड़ा। बकरी के बच्चे को ना तो उत्तर देने का अवकाश मिला और ना रोने का। उसे केवल मन में यही बात याद आती रही, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहूं सुभाए, लहे उ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए।
1: जीवन सौरभ।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है अत्यष्टि।
3: इंद्राय ही द्यौरसुरो अनम्नतेन्द्राय मही पृथिवी वरी मभिर द्युम्नसाता वरी मभी इंद्रम विश्वे सजोषसो देवासो दधिरे पुरह इंद्राय विश्वा सवनानि मानुषा रातानि संतु मानुषा। विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी द्युलोक ने अपने संसाधनों से इंद्र देव का सहयोग किया। उत्साहित देवगणों ने सहमति पूर्वक इंद्रदेव को अग्रणी रूप से प्रतिष्ठित किया। सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर हवि भाग अर्पित करते हैं। मनुष्यों द्वारा दी गई सोमयुक्त आहुतियां इंद्रदेव के लिए समर्पित हों। विश्वेषु हित्वा सवनेषु तुञ्जते समानमेकम् वृषमणियवः पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक् तं त्वा नावं न पर्षणिं शूषस्य धुरि धीमहि इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्र मायवः। हे इंद्रदेव, सभी सोमयागों में विभिन्न उद्देश्यों वाले याजक आपको हविष्यान्न प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप में आहुतियां देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तुति करने वाले स्तोत्रों द्वारा आपका ध्यान करते हैं।
4: विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र शारदी रवातिरः सासहानो अवातिरः शासस्तमिन्द्र मर्त्य मयज्युम शवसस्पते मही ममुष्णाह पृथ्वीमिमा अपो मंदसान इमा अपह। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को पददलित किए जाने पर जब आपने ही उनकी शरतकालीन आवासीय नगरियों को विध्वंस किया, तब प्रजाजनों में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जलों पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। आदित्ये अस्य वीर्यस्य चक्रिरन् मदेषु वृषन् नुषिजो यदा विथ सखीयतो यदा विथ चकर्थ कारमेभ्यः प्रतनासु प्रवन्तवे ते अन्यामन्याम् नद्य सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमानों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा
3: आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया। आपने ही धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्नादि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध कराया। उतो नो अस्या उषसो जुषेत हियर कस्य बोधि हविषो हवीमभि स्वर्षाता हवीमभि यदिंद्र हन्तवे मृधो वृषा वज्रंचिकेतसि आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभातकालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चारित स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जानें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रु नाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्तोत्रों और नए ज्ञानी स्तोताओं की प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। त्वं तमिंद्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्तं तुविजातमर्त्यं वज्रेण शूरमर्त्यं जहि यो नो अघायति शृणुष्व शुश्रवस्तमः रिष्टं न यामन्नपभूतु दुर्मतिर्विश्वापभूतु दुर्मतिः। हे अतिविख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार डालें। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु आपके वज्रास्त्र के प्रहार से खंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, अमीर गरीब, प्रेम द्वेष, ये सब मनुष्य के लिए केवल स्पर्श मात्र होते हैं। जीवन में केवल वही सफलता प्राप्त करता है जो इन सब से विचलित हुए बिना आगे बढ़ता है।

श्रोताओं, जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी निराशा के बाद आशा आती है। जब सुख नहीं टिकता तो दुख कैसे टिकेगा?

सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने से जीवन के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद की सही प्राप्ति केवल तब हो सकती है जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें।

श्रोताओं, हर समय प्रभु के नाम का जाप करने वाला स्वर्ग और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि परमात्मा द्वारा बताए गए रास्ते पर बिना रुके चलने वाला मनुष्य ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है।

इसी भजन के साथ आज का भक्ति संगीत संपन्न करने की अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को। नमस्कार, आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। यदि ज्ञान दृष्टि से चिंतन किया जाए तो विवेक के द्वारा रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः संप्रदाय को धर्म की मान्यता देना विवेक की दृष्टि से सत्य नहीं हो सकता है। अविवेक से ही अंधश्रद्धा का जन्म होता है। इसी अंधश्रद्धा के कारण ही लोग भ्रमित होकर मानव से मानव के बीच में भेद उत्पन्न करते रहते हैं और यही भेद समाज को विभाजित करने में सहायक सिद्ध होता है। यही अंधश्रद्धा समाज में कुरीतियों को जन्म देकर पूरी मानवता को अज्ञान के अंधकार में ढकेलने में सफलता प्राप्त करती है। समाज को ऐसा चिंतन देकर एकता के सूत्र में बांधने वाले और मानवता को अंधकार की गर्त से निकलने का रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ थे श्री राम शर्मा आचार्य। उनका जन्म आगरा जनपद के आंवलखेड़ा गांव में 20 सितंबर सन 1911 को हुआ था। उनका बचपन गांव में ही बीता। उनके पिता पंडित रूप किशोर जी शर्मा राजघरानों में राजपुरोहिती का काम करते थे। वे उद्भट विद्वान और भगवत कथाकार थे। श्रीराम शर्मा के मन में बचपन से ही मानव मात्र के लिए अपार करुणा का भाव था और व्यक्तिगत साधना की ओर उनका गहरा झुकाव भी था। गांव के छोटे छोटे बच्चों को अमराइयों के नीचे बिठाकर वे स्कूली शिक्षा भी देते और आध्यात्मिक शिक्षा भी। उनके भीतर एक छटपटाहट थी जिसके चलते वे हिमालय की ओर भाग निकलते और जब पकड़े जाते तो कहते, हिमालय ही मेरा घर है, मैं वहीं जा रहा था। ये वो समय था जब समाज जाति धर्म और संप्रदायों में बुरी तरह बंटा हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं था। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने समाज सुधार की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं औपचारिक शिक्षा बहुत कम ली थी, लेकिन उनकी आंतरिक चेतना पूर्णतः जागृत थी। वो हाट बाजारों में जाते और लोगों को सामान्य स्वास्थ्य की शिक्षा देते, पशुधन कैसे सुरक्षित रखें ये बताते। लोगों के जीवन से जुड़कर वे उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे। महिलाओं और बेरोजगारों के लिए उन्होंने गांव में ही एक बुनता घर स्थापित किया ताकि वो हाथ से कपड़े बुनकर स्वावलंबी बन सकें। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही सन 1926 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और इस तरह उन्हें आत्मबोध होना आरंभ हुआ। उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगी। इस तरह उनकी चेतना युग निर्माण मिशन से जाकर जुड़ गई।

एक तरफ श्रीराम शर्मा की आध्यात्मिक यात्रा जारी थी, वो समाज सुधार और युग निर्माण के मिशन से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर भारत की पराधीनता उन्हें कचोटती रहती। उनके इस असमंजस को गुरु सत्ता समझ रही थी और अचानक एक दिन उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी। युग धर्म की महत्ता और समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इस आवाज में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह काम करने का संदेश छिपा हुआ था। गांधी जी ने उन दिनों असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया था। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने की घटना को उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त किया, मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखवा दिया। अब साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी, लंबी सजाएं और काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही नहीं बने, घर वाले उसकी पूरी रोकथाम कर सकें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होते ही मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए, जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से ये आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। किसी ने उन्हें समझा दिया कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वो मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम करा दें। भाइयों ने भी कहा, घर से कोई रिश्ता न रहेगा, उसमें प्रवेश न मिलेगा तुम्हें। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। इस संदर्भ में प्रहलाद का चित्र आंखों के सामने तैरने लगा। ध्रुव की कहानी मस्तिष्क को घेरने लगी। पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। अनगिनत वीर बलिदानियों की, संतों की, सुधारकों की, शहीदों की कहानियां सामने तैरने लगी। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेकों विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता हुआ लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। इस तरह उनका सन 1927 से 1933 तक का समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। वे भूमिगत होकर काम करते रहे और कई बार जेल गए। आसनसोल जेल में ही वे नेहरू जी की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफी किदवई, पंडित मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे। आजादी के महायज्ञ में वो अपनी आहुति लगातार देते रहे।

ये वो समय था जब भारत की आत्मा आजादी के लिए छटपटा रही थी। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के फैसले ने जन आक्रोश को भड़का दिया था। उसके विरोध में वे भी शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान वे ब्रिटिश शासन के समक्ष झुके नहीं। अंग्रेज सिपाही डंडों से उन्हें मारते रहे। वे बेहोश हो गए, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने दांतों से झंडे को पकड़ रखा था। बेहोशी की अवस्था में जब वो चिकित्सक के पास ले जाए गए, तब उनके भींचे हुए दांतों के नीचे से झंडे का टुकड़ा निकला। उनकी सहन शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और उन्हें आजादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत्त का नाम मिला। आज भी आगरा के उनके साथी मत्त के नाम से ही उन्हें जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी उन्होंने पूरे आगरा प्रांत का दौरा किया था। सारे आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने सौंपे और पंत जी ने उन्हें बापू के सामने पेश किया। फिर गांधी जी ने अपनी प्रशस्ति के साथ ये सारे आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त प्रांत में लगान माफी के आदेश पारित हुए। सन 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर आरंभ हुआ, जब पौंडीचेरी में वे श्री अरविंद से, शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर से और साबरमती आश्रम में वे बापू से मिलने गए। इन सब के निर्देश पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। आगरा से प्रकाशित सैनिक समाचार पत्र के संपादक श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने उन्हें कार्यवाहक संपादक बनाया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से वे गांधी जी के अत्यंत निकट आ गए। साथ ही आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाशनाथ काटजू से उनके घनिष्ठ संबंध बन गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रभारी नेता नियुक्त हुए। मैनपुरी षड्यंत्र केस में उनका सहयोग था और आगरा षड्यंत्र केस के वे प्रमुख अभियुक्त थे। वे अपने एक पुत्र, बेटी और भाई के साथ पकड़े गए। सन 1945 में वो रिहा हुए। इस जेल प्रवास के दौरान ही उनके तीन पुत्रों की मृत्यु हो गई। 1948 के बाद उन्होंने सघन रूप से लेखन का कार्य किया और कई किताबें लिखीं। इन सब के बीच 4 घंटे नियमित स्वाध्याय का उनका क्रम कभी नहीं टूटा। जीवन के उत्तरार्ध में ग्लूकोमा के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। 8 से 10 वर्ष इसी अवस्था में उन्होंने 5 पुस्तकें बोलकर लिखवाई। उन्होंने वेदों का सरल भाषा में अनुवाद करके उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वे ताउम्र जीवन पर अपने विचारों की रोशनी से लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहे और मानव मात्र के कल्याण में डूबे हुए 2 जून सन 1990 को उस परम ज्योति में विलीन हो गए। उनका कहना था, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। नमन ऐसी दिव्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
4: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का।
5: श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
3: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
6: नमस्कार जी।
3: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
6: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है
3: जी।
6: और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है
3: जी।
6: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में BSc कृषि किया, फिर MSc कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर PhD जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
3: जी,
6: वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए
3: जी,
6: ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
3: जी,
6: और जितना भी गंदा पानी है चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
3: जी।
6: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है उसके लिए करना है, जैसे पूरे फ्लावर
3: जी,
6: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है
3: जी।
6: इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ
3: जी।
6: यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके, मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो फूड के जो चेन है उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
6: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
3: जी,
6: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
3: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई?
6: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे
3: जी,
6: वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे, तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमि बोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
3: जी,
6: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए। और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
3: जी,
6: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
3: जी,
6: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण। मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस, तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है। मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का। मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है, जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
3: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप समझाएं।
6: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
3: जी,
6: है ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है। मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे
3: जी।
6: तभी तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना
3: जी।
6: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
3: जी,
6: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
3: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गाँव में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है
6: जी? बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी
3: जी,
6: जो चीज पहले 1 दिन में पता चलती थी वो आज सेकेंड्स में पता चलती है
3: जी।
6: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
3: जी,
6: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं, पानी चला देते हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको मिट्टी की जान कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले। ये बहुत जरूरी है आज। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे यूट्यूब फेसबुक पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
3: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
6: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने। किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की बात करें या रेलवे रोड की, या फिर जो कहीं भी अगर कोई अगर सिटी बनता है
3: जी,
6: तो वो सिटी पूरा आप ये मान लीजिए कि स्क्वायर किलोमीटर मोर देन दैट पूरा सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट? मतलब वहां का जो वाटर होल्डिंग या यूं कहें कि वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जाता है
3: जी।
6: अब पानी की इंटेंसिटी तो उतनी है रेनफॉल की, तो वो जितना भी पानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में गिरा है वो पूरा फ्लडिंग करके बिल्कुल स्पीड से नदी का रास्ता ढूंढेगा
3: जी जी,
6: है ना। जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एब्जॉर्प्शन था वो पूरा एब्जॉर्ब न होके पूरा आगे बढ़ जाएगा
3: जी।
6: इसे बहुत शुद्ध तरीके से यूं समझें कि अगर हम हमारे एक शर्ट पे पानी डालेंगे तो वो 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा
3: जी।
6: वहीं अगर 1 लीटर पानी अगर हम रेनकोट पे डालेंगे
3: जी,
6: पूरा उसको रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा।
3: सही।
6: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है। मतलब सॉइल को पूरा इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया
3: जी।
6: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है। मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी

0: फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर, मसूर, इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण,
1: जी
0: फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: जी
0: इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो CSR का जो नॉर्म्स होता है, जो इन्वायरमेंटल सिंपैथी होती है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, तो उसमें प्रॉपर प्लांटेशन, यदि हमने कोई रोड निकाला है और उसमें प्लांट कटे हैं तो बी इंश्योर कि उससे ज्यादा प्लांट वापस नए रोड के आउट साइड में लगाए जाए, ताकि वो जो बैलेंस में मिसमैच किया है प्रकृति का वो वापस मैच हो जाए। नहीं
1: अच्छा
0: तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मृदा का जो क्षरण है
1: जी
0: वो करना आसान है, लेकिन उसको वापस रोकना या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1,000 साल लगते हैं। अगर कोई चट्टान है, उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है तो
1: जी
0: वो 1,000 साल लगते हैं। हजारों साल की प्रोसेस होती है,
1: जी
0: वेदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की,
1: जी
0: अर्बनाइजेशन की। तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है वो सभी अपनाने चाहिए।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
0: जी, अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की,
1: जी
0: एक तो होता है पेडोलॉजी,
1: जी
0: मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ और उस पे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है,
1: जी
0: मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से, तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो
1: जी
0: दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मतलब हम मिट्टी परीक्षण से, सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है,
1: जी
0: नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि
1: जी
0: हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है।
1: जी
0: अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें। तो
1: जी
0: ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है और
1: जी
0: अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है, ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो
1: जी
0: इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का,
1: जी
0: उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है वहां बनाना है, या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है, तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है, दैट्स इट।
1: सर, एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
0: देखिए, जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की, यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें तो एक किसानों ने क्या है, नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है।
1: जी
0: क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं वो पशुओं को खिलाए जाते हैं, और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र गोबर, उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल लार इत्यादि, ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था।
1: जी
0: मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था।
1: जी जी
0: अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है। कारण
1: बिल्कुल
0: चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं,
1: जी
0: मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का, कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए।
1: जी जी
0: भाई मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई। बस
1: जी
0: उसने वो पोषक तत्व डाले कम, और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो क्षरण या उर्वरता की जो समस्या आई है उसमें ये जो दो तीन कारण है ये
1: जी
0: बहुत ज्यादा रूप से मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल कहेगी, जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है? जी
0: अच्छा, एक प्रश्न है, या यूं कहूं कि किसानों के लिए सुझाव है कि फसल चक्रण की, यदि जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसान फसल चक्र अपनाता है तो निश्चित ही उस चक्र की फसलों का जो पकने की अवधि रहती है वो भी अलग-अलग होती है।
1: जी
0: जैसे मैंने कहा कि कोई किसान गेहूं लगा रहा है और कोई किसान चना लगा रहा है,
1: जी
0: चना तुलनात्मक रूप से जल्दी कट जाएगा, उसकी नरवाई भी कम निकलती है, उसको पोषक तत्व भी कम लगते हैं और वो पशुओं के लिए एक टेस्ट में डिफरेंट लाने का भी काम करता है। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं तो किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है और नरवाई प्रबंधन में भी, और पशुओं को भी वैरायटी वाला फूड मिल जाता है। इसी तरीके से नरवाई प्रबंधन की भी यदि बात करें तो हमने उस नरवाई ने जितने पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं, अगर वो पोषक तत्व वापस किसी भी तरीके से प्रबंधित करके मिट्टी में डाल दें तो वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है मिट्टी की उर्वरता को प्रबंधन करने का। तो
1: जी
0: इसमें सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा किसानों को आपके रेडियो के माध्यम से, कि जैसे किसानों की नरवाई निकली, अभी धान की नरवाई निकली हुई है,
1: जी
0: उसको खेत के पास एक गड्ढा बना लें नरवाई के मात्रा के अनुसार, बड़ा छोटा, उस गड्ढे में नरवाई डालना है 1 फीट की परत, फिर उस पे थोड़ा गोबर का लपेटा, फिर दूसरी परत नरवाई की डाल देंगे, फिर गोबर
1: जी
0: का लपेटा, और इस तरीके से डालते जाएंगे।
1: जी
0: और अंत में जो भी आपके पास, या तो वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं अभी इफको द्वारा बनाया गया है,
1: जी
0: या फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो जो ट्राइकोडर्मा वीरडी है ये भी डाल देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत जल्दी सड़ गल कर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये नरवाई का प्रबंधन का सबसे अच्छा मतलब तरीका है, इससे हम लोग केंद्र पर भी करते हैं
1: जी
0: ताकि ये जितनी भी नरवाई है
1: जी
0: वापस मिट्टी में चले जाए पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए। तो ये
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा एक मृदा उर्वरता को संरक्षित करने का तरीका है।
1: सर, किसानों के लिए मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और ये कब करना चाहिए, अगर आप इस पर कुछ बताएं?
0: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा है उसमें हमने ये पढ़ा है, प्रोफेसर जस्टिस वान लिबिग ने बताया है
1: जी
0: कि हर पोषक तत्व का एक विशेष कार्य होता है और वो कार्य अन्य पोषक तत्व से नहीं कर सकते हैं,
1: जी जी
0: है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक की कमी से पौधों में ये विकार हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नत्रजन बहुत ज्यादा दे दिया तो अब वो समस्या समाधान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है।
1: जी
0: इसलिए अब मिट्टी में जिंक कम है या नाइट्रोजन ज्यादा है ये पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना पड़ेगा।
1: जी
0: तो मिट्टी परीक्षण करवाने से हमें पता चलता है कि किस पोषक तत्व में मिट्टी बहुत अच्छी है, किसमें कमी है। तो मिट्टी परीक्षण करवाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो एक तो अप्रैल महीने होता है और एक ये नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय एक फसल कट के दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है।
1: अच्छा,
0: कहने का मतलब है कि खेत खाली रहता है, तो
1: जी
0: जब खेत खाली रहता है तब मिट्टी का नमूना लेना बहुत अच्छा रहता है, इसको 3 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नमूना लेने का एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीके का हमने वीडियो बना के भी केंद्र के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे लें मृदा का नमूना। अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो
1: जी
0: कृषि विज्ञान केंद्र के फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पे डालेंगे कैसे लें मृदा का नमूना, तो ये आपको मिल जाएगा।
1: अच्छा
0: इसमें इसमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखते हैं, जैसे खेत खाली होना चाहिए, जहाँ ढलान वाला हिस्सा है वहां से नमूना नहीं लेते हैं, और अगर मेड़ है तो मेड़ के 2-3 फीट से नमूना छोड़कर लेना है, और खेत में यदि कोई पेड़ है तो
1: जी
0: पेड़ के नीचे से भी जहाँ चारों तरफ छांव बनती है वहां से नमूना नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक जगह चयन करके वी आकृति का गड्ढा करते हैं, ऊपर से फावड़े से थोड़ी नरवाई हटाते हैं और वी आकृति के गड्ढे को 4 से 6 इंच गहरा करते हैं सामान्य फसलों के लिए,
1: जी
0: गेहूं धान मक्का इनके लिए। अगर किसी को तुअर लगाना है और कपास लगाना है गन्ना लगाना है तो 3 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं, और अगर किसी को बगीचा लगाना है आम का बगीचा तो वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक मतलब 4 से 6 फुट तक गहराई करते हैं, और उस गहराई के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंची मोटी परत निकालते हैं। अब इसके बाद ये एक जगह से निकल गया, इसी तरीके से 4-5 जगह से प्रति एकड़ 5 जगह से नमूना निकाल कर पांचों जगहों के नमूने को एक बड़ी सी पन्नी पर इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, और अगर कोई बड़ा पत्थर या कुछ बड़े लकड़ी या कंकड़ पत्थर इत्यादि है तो उनको हटा देते हैं। अब इसके 4 हिस्से करते हैं हम लोग,
1: जी
0: 2 विपरीत दिशा के रखते हैं और 2 फेंक देते हैं, ये मतलब हमको इसका जो मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो 2 रखेंगे तो वो 10 किलो का नमूना यदि है तो 5 किलो बचेगा, फिर जो 2 हैं इनको अच्छे से मिलाकर 1 बनाएंगे, 1 का पुनः 4 बनाएंगे, फिर 2 रखेंगे 2 विपरीत दिशा के फेंक देंगे तो 2.5 बचेगा, फिर 2 का 1 और 1 के 4, 4 के 2, इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम नमूना केवल शेष न रह जाए। अब
1: जी
0: 500 ग्राम नमूना हम किसान की पूरी जानकारी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, पूर्व लगाई गई फसल, आगामी लगाई गई फसल, ये सब जानकारी के साथ नजदीकी प्रयोगशाला में भेजते हैं परीक्षण के लिए। परीक्षण उपरांत जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम 3 साल में परीक्षण जरूर करवाएं,
1: अच्छा
0: 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। 3 साल
1: जी
0: तक एक परीक्षण मान्य रहता है, उसके बाद फिर पोषक तत्वों में बदलाव हो सकते हैं, तो 3 साल में एक बार नमूना परीक्षण करवाना चाहिए।
1: रासायनिक उर्वरकों जो हैं उनके उपयोग से मृदा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं?
0: निश्चित ही, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में अगर हम देखें तो किसी भी उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा होती
1: जी
0: है ना, जैसे अपन यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी जो होता है 54% वो फिलर मटेरियल होता है, मतलब एक तरीके से वाहक मटेरियल कह सकते हैं उसको, तो वो जब मिट्टी में धीरे धीरे जाता है तो वो मिट्टी में जमा होने लगता है,
1: जी जी
0: उसकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में विकार उत्पन्न करती है, या यूं कहें कि अम्लीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है या क्षारीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है, कुल मिला के मिट्टी में एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, और जब उसकी निश्चित मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी में अति
1: जी
0: विकार उत्पन्न होता है।
1: जी
0: ये जो पोषक तत्व भी होते हैं ये बहुत ज्यादा मिट्टी में एकदम से प्रभाव डालते हैं,
1: जी
0: जैसे हमने यूरिया डाला तो कुछ दिन तक मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है,
1: जी
0: और अगर एक ही तरीके का हमने उर्वरक डालते गए तो वो जैसे यूरिया है मिट्टी में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, डीएपी है मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, तो अगर हमने केवल यूरिया बहुत ज्यादा डाला है तो वो धीरे धीरे अम्ल हो जाएगा। अब
1: जी
0: अम्ल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान है
1: जी
0: वो निर्धारित करता है कि सभी पोषक तत्व किस अनुपात में पौधे को मिलेंगे।
1: जी
0: अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो कुछ पोषक तत्व तो पौधा ले ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मिट्टी बीमार पड़ जाएगी और वो पौधे को पोषक तत्व अवशोषित नहीं करने देगी, क्योंकि हर पोषक तत्व पौधा तभी ले पाता है जब वो आवेशित अवस्था में आता है,
1: जी
0: हमने पढ़ा है हम शिक्षण संस्थानों में कि जो नत्रजन है उसको सभी पौधे नाइट्रेट रूप में लेते हैं, NO3 माइनस माइनस माइनस, मतलब NO3 ट्रिपल माइनस। अगर धान की बात करें, आलू की बात करें, तो वो अमोनिया रूप में लेते हैं, NH4 प्लस।
1: जी
0: अब अगर ये आवेशित अवस्था में आने का कार्य अगर किसी के द्वारा प्रभावित होता है, किसी रासायनिक केमिकल के द्वारा, तो निश्चित ही पौधों पर भी इसका प्रभाव दिखता है। और
1: जी
0: ये हमारे पौधों की जो उपलब्धता है या पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है, वो पौधे के लिए प्रभावित होती है और हमारा पौधा फिर अच्छे से बढ़वा नहीं कर पाता है। इसलिए रसायनों का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक प्रबंधन का सिद्धांत है,
1: जी
0: नरवर प्रबंधन का, गोबर प्रबंधन का, हरी खाद का,
1: जी
0: फसल चक्रण का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी जी
0: और इसके साथ भी मैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जो लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले जीव होते हैं,
1: जी
0: उनका उपयोग भी करने की सलाह दूंगा किसानों को। जैसे उदाहरण के लिए, हम यूरिया की जगह अगर धान और गेहूं की फसल है तो एजोटोबैक्टर से बीज उपचार करना चाहिए। चना और अगर तुअर और मूंग की फसल है तो राइजोबियम से बीज उपचार करना
1: जी
0: चाहिए। ये जो लाभदायक जीव हैं, ये वातावरण की नत्रजन को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि इन फसलों को यूरिया के नत्रजन की आवश्यकता न पड़े। इसी तरीके से जो फास्फोरस घोलक जीवाणु रहता है,
1: जी
0: वो यदि उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, तो यूरिया और डीएपी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जिंक सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन पे किसानों को वापस थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है, मतलब समन्वित सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके हमको पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।
1: मृदा संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: जी, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2014 से, मतलब अभी भी वो चल रही है बहुत ही व्यापक स्तर पर, है ना। तो इसमें किसानों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है, वो इस योजना के माध्यम से करके दिया जाता है, और किसानों को अवगत कराया जाता है कि आज आपकी मिट्टी की ये स्थिति है, आपको अगर इस फसल का इस मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको ये पोषक तत्व डालने पड़ेंगे, और इस तरीके से गोबर की खाद, इस तरीके से PSB, NPK, ये सब डालना पड़ेगा।
1: जी
0: इस योजना के माध्यम से किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाता है, जिसमें एक तो पूरे किसान की जानकारी रहती है,
1: जी
0: दूसरा 12 पैरामीटर जो होते हैं,
1: जी
0: 12 पैरामीटर में पूरे किसान की जो फर्टिलिटी का स्टेटस है वो डाल रहता है, तीसरा मुख्य बिंदु रहता है कि अगर इस 12 पैरामीटर या फिर मृदा उर्वरता के हिसाब से किसान को गेहूं लगाना है, तो कितना NPK, कितना गोबर की खाद, कितना PSB, राइजोबियम डालना पड़ेगा। मिला
1: जी
0: के एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मिट्टी की उर्वरता से लेके, किसान की जानकारी से लेके, जो आगामी फसल लगाना है उसमें कौन सा पोषक तत्व किस उर्वरक से डालना है, ये सब जानकारी उसमें रहता है। दूसरा, अगर योजना में बात करें तो ये तो एक विशेष योजना हो गई।
1: जी
0: उसके बाद भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इससे किसानों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो किन किन कारणों से कम हो रही है, अगर हमको इसको संरक्षित करना है तो क्या क्या कारण करना
1: जी
0: है, और अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सब जानकारियां विविध योजनाओं के माध्यम से या फिर अन्य योजना के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों को जागरूक करते
1: जी
0: हैं, ताकि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लगातार बनी रहे और टिकाऊ तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी उसी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करके प्राप्त हो सके।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है, आप लोग क्या कुछ करते हैं, क्या ट्रेनिंग्स देते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में स्टूडेंट्स को लेकर, या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए।
0: देखिए, किसी भी अगर उत्पादन की बात करें, मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल बेस आता है वो मिट्टी ही होता है, तो
1: जी
0: निश्चित ही हमारा केंद्र भी इसको बचाने या इसकी उर्वरता को संरक्षित करने में अग्रणी योगदान निभा रहा है। एक तो हम यहाँ से कुछ मॉडल तैयार करके किसानों को बताते हैं कि हमने ये करके देखा है, आप भी कीजिए।
1: जी
0: जैसे एक तो हरी खाद का प्रयोग हमने करके देखा है कि जैसे हमने पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया, एक की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैविक कार्बन 0.5 था। हमने उसमें 3 बार हरी खाद की फसल लिया और उसका जो जैविक कार्बन है वो 0.75 तक हो गया।
1: जी
0: मतलब नरवाई प्रबंधन या फिर ये जो हरी खाद की फसल है इससे हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते
1: जी
0: हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि कैसे रासायनिक केमिकलों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमने केंद्र पर फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद मतलब प्रोम का निर्माण शुरू किया ताकि
1: जी
0: किसानों को यूरिया का और डीएपी का विकल्प उपलब्ध हो जाए। कि इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक तरल जैव उत्पादन इकाई है
1: जी
0: जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं। ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा। हमें
1: जी
0: किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग। तो
1: जी
0: धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए, बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए। नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: आपने रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की यानी माटी की,
1: जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, मनुष्य जीवन के माया जाल में फंसा हुआ है। वो निरंतर दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ संजो लेने के लिए, किंतु इस अनवरत दौड़ का अंत है कहाँ? इच्छाओं के इस अथाह सागर का किनारा कहाँ है? योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज हम सुनेंगे श्री राम के हृदय से निकली वो करुण पुकार, जिसमें वो तृष्णा के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। राज वैभव के मध्य रहते हुए भी युवराज श्री राम ने देखा कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी शांत होती है तो तीसरी मन के द्वार पर आ खड़ी होती है। तृष्णा मनुष्य को आशा और निराशा के झूलों में झुलाती रहती है। कभी वो स्वप्न दिखाती है तो कभी भय उत्पन्न करती है, कभी सुख का प्रलोभन देती है और कभी दुख के अंधकार में ढकेल देती है। वो मृग तृष्णा के समान है, दूर से जल का आभास देती है लेकिन निकट जाने पर केवल शुष्क मरुभूमि ही हाथ लगती है। भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि जिस हृदय में तृष्णा का साम्राज्य है वहाँ शांति का निवास नहीं हो सकता है, और जहाँ संतोष का दीपक जल उठता है वहाँ संसार के समस्त वैभव भी फीके पड़ जाते हैं। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य चिंतन में और सुने श्री राम के वैराग्य की वो वाणी जो आज भी मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा पर।
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तृष्णा का प्रभाव क्या होता है?
2: देखिए, तृष्णा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो हृदय है ना, वो चंचल हो जाता है। जबकि आप देखें, हम लोग कहते हैं मन चंचल है
1: जी,
2: यहाँ पर बात यह है कि तृष्णा आपके हृदय को भी चंचल करती है, यानी आपके भाव दशा पर सीधे अपना प्रभाव छोड़ती है। इसी को भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि तृष्णा न जीर्णा व मेव जीर्णा, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। अब ऐसे में तृष्णा कभी शांत नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य है, जो चिंता हमारे जीवन में आती है, वो तृष्णा की वजह से आती है। तो तृष्णा का जीवन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है, उसके लिए बहुत सुंदर उपमा इसमें दिया गया है। योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उपमा के माध्यम से उन तत्वों पर प्रकाश डाला गया है जिससे आम जीवन में जीने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान हो सके कि वास्तव में योग क्या है। वैराग्य को लोग समझते हैं कि विषयों का त्याग है वैराग्य, विरक्ति है, या संसार से भागना वैराग्य है। उसको पलायन कई बार मैंने कहते हैं, जिसका संसार बहुत अच्छा नहीं रहा या जो संसार में फेलियर देखा, असफलता देखा तो उसने वो वैरागी हो गए, या वैरागी होने से माता पिता डरते हैं। वैराग्य आप समस्त सांसारिक कर्मों में पूरी कुशलता से रत होने के बाद भी वैरागी हो सकते हैं, क्योंकि वैराग्य सत्य का उद्घाटन है, सत्य का दर्शन है वैराग्य। शेक्सपियर ने ही शायद ये बात कही थी कि ये रंगशाला है जहां सारे लोग अपने पात्र भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए, तो उस पात्र से वैराग्य भी है और राग भी है। राग जब तक, तभी तक है जब तक आप प्ले कर रहे हैं, जब तक उस पात्र का अभिनय कर रहे हैं, तब तक उस पात्र को अपने जीवन में ऐसे उतारते हैं जैसे आपका जीवन ही वो हो। लेकिन जैसे ही वो पात्र पूरा होता है, वो पात्र आप भूल जाते हैं और फिर किसी और पात्र के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये बात एक वैरागी की ही बात की जा रही है। तो अभिनय जैसे है, ये जीवन भी अभिनय है, लेकिन अब कहा जाए तो अभिनय की तरह इसे कोई देखेगा नहीं, हर आदमी इसमें फंसा हुआ है। तो संसार में फंसा हुआ जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका चित्त तृष्णा से मुक्त न हो, जब तक उसका चित्त वैरागी न हो। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जैसे समुद्र के भीतर जो भंवर उठता है या जो लहरें उठती हैं, वो भंवर और हलचल उत्पन्न करने के लिए उठती हैं, समुद्र की शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होती हैं। यद्यपि बाहरी प्रभाव है वो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो तृष्णा है वो उसकी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होता है लहरों की भांति। और जो आपने पूछा इसका क्या प्रभाव है, कहते हैं हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम और आकुलता पैदा करती है। अंतःकरण को कभी वो भ्रम से मुक्त नहीं करती, बेचैन करती है, और हम सोचते हैं कि हम शायद तृष्णा की वजह से शांत हो जाएंगे, वो शांति को हरने वाली है। तो तृष्णा का जीवन में कह सकते हैं प्रभाव यही है कि वो आपको अशांत कर देगी,
1: अशांत कर देगी, बिल्कुल। अच्छा, इसी ग्रंथ में पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा हुई है
2: जी,
1: तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं कि पारमार्थिक स्वरूप से आशय क्या है व्यक्ति के पारमार्थिक स्वरूप से, और दूसरा ये कि व्यक्ति अपने पारमार्थिक स्वरूप को पाने में क्यों असमर्थ है।
2: क्या बात है, देखिए ये जो ग्रंथ है ना ये अद्वैत का ग्रंथ है, इसको अद्वैत ज्ञान कहा गया। अद्वैत ज्ञान का मतलब हुआ कि जहां फिर किसी दूसरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे में जो आपने पूछा, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब एक सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरः, कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, तो यहाँ पर मिथ्या को लोग झूठ समझ लेते हैं, झूठ नहीं है, झूठ जैसा जो लगे। तो उन्होंने तीन तरह के सत्ताओं की बात की
1: जी।
2: वेदांत में तीन तरह की सत्ता मानी जाती है, एक प्रातिभासिक सत्ता जिसमें रज्जू और सर्प का उदाहरण लिया जाता है कि रस्सी अंधेरे में सांप जैसी दिखती है, होती नहीं,
1: होता नहीं है।
2: तो ये हो गया एक प्रातिभासिक सत्ता, आभास हो रहा है, रस्सी में सर्प का आभास होना ये तभी तक होगा जब तक आपको रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। रस्सी का ज्ञान होते ही आप सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो वैसे ही संसार में जो विषयों के प्रति जो कामना है, इसका सत्य जब आपके सामने उद्घाटित होगा तो विषयों में जो आप वास करना चाहते हैं तो वो वास नहीं होगा, उसी को वास का न होना और वास का होना वासना कहलाता है।
1: अच्छा।
2: और जब विषयों में वास न हो तो उसको आप वैराग्य कह लें, तो वो स्थिति बनती है। तो ये हो गया आभासिक, जहां आभासिक ज्ञान हो रहा है। उसके बाद कहते हैं एक व्यवहारिक जगत है, कि व्यवहारिक जगत में दो के बीच व्यवहार होता है, जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जब दो के बीच व्यवहार होगा तो इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जब उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं गोपियों के पास कि जा जाइए इनको आप ब्रह्म ज्ञान दे के आइए, तो चूंकि ये प्रेम की भी कथा है तो ऐसे में देखें तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्म ज्ञान आदमी को शुष्क बना देगा, ऐसा नहीं है। अब उद्धव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शुष्क हो गए थे, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए गोपियों के पास भेजा, और उन्होंने कहा किसके प्रेम में आप लोग इस तरह से विह्वल हैं, वो ब्रह्म आप ही में तो है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ही वना पर। तो फिर गोपियों ने जो ज्ञान दिया, कहा कि ब्रह्म और हम में कोई भेद नहीं है, तो आपके हमें इस ज्ञान की जरूरत क्या है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो आप, हम तो अपने ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, हमारा कृष्ण जो है हमारा ही स्वरूप है, हमें किसी और के रूप में कोई आकर्षण नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में मस्त है। तो उद्धव ने कहा कि यह है व्यवहारिक सत्य, जहां पर रोना भी हो रहा है हंसना भी हो रहा है, कहते हम तो उस कृष्ण के साथ खेलना आते हैं, हमारे व्यवहार में वो है। तो व्यवहारिक सत्य हो गया, और पारमार्थिक सत्य में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसमें समानार्थी हो जाते हैं आप।
1: अच्छा।
2: और इसका प्रसंग मैं आपसे लूंगा, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुझे किस रूप में जानते हैं, तो उन्होंने जब पारमार्थिक सत्य को उद्घाटित कहा, हनुमान जी ने कहा कि पारमार्थिक सत्ता में तो जो आप हैं वो मैं हूं, व्यवहारिक रूप में मैं आपका दास हूं, है ना। तो ये हुआ कि व्यवहार में आपको स्वामी और दास बनना पड़ेगा, माता और पुत्र बनना पड़ेगा, माता पिता बनना पड़ेगा, ये व्यवहार होगा इससे, लेकिन पारमार्थिक में तो एक ही सत्ता है, जिसके आप पिता हैं, जो पुत्र है वो भी वही है,
1: वही है। तो ये पारमार्थिक स्वरूप है व्यक्ति का।
2: लेकिन आदमी इसको नहीं जान पाता, तो कहते हैं कि इसका कारण तृष्णा ही है। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं भरद्वाज को, कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होने के लिए बहुत तरह का प्रयास करता है, लेकिन जैसे आधी सले गड़े तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने न जाने कहां से कहां किस अयोग्य अवस्था में हमें पहुंचा दिया। ये राम जी देख रहे हैं, तो राम जी की दृष्टि है, और जिसकी भी दृष्टि ऐसी हो जाए वो समझिए वो राम जी की दृष्टि में जा रहा है। राम उससे दूर नहीं है, राम से वो दूर नहीं है।
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तृष्णा का जो स्वभाव है और इसका जो स्वरूप है, इसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगे आप?
2: तृष्णा का स्वभाव ये है कि यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नर्क में गमनागमन कराती है। अब देखिए आदमी यहाँ क्या करता है, हम लोग जो सामाजिक अनुशासन की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना, ये करणीय है, ये निषिद्ध है, अकरणीय है, ये धर्म है, ये अधर्म है, इसको करने से नरक होगा, इसको करने से स्वर्ग होगा। तो ये व्यवहारिक जो जगत है वो इसी तृष्णा से गवर्न है, अनुशासित है।
1: जी, जी, जी।
2: कि ये कहते हैं कि तृष्णा जो है धर्म अधर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में गमनागमन कराती है, आगमन कराती है। तो अगर आप स्वर्ग की आकांक्षी हैं तो भी आप तृष्णा में हैं, और अगर आप नरक से भयभीत हैं तो भी आप तृष्णा में हैं। तो तृष्णा को जैसे ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आपका चित्त स्वर्ग और नरक इन दोनों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण शतकम में कहते हैं कि जब बंधन नहीं तो मोक्ष कहाँ। यानी मोक्ष और बंधन इन दोनों के चिंतन से जो मुक्ति दिलाए वो तृष्णा का सत्य उद्घाटन है, तृष्णा के सत्य का उद्घाटन है, कि जहां पर मोक्ष की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। ये है तृष्णा का स्वभाव कि आपको इस तरीके से फंसाएगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि से जुड़ी रहती है हमेशा ही, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। इसका स्वभाव है कि ये हमेशा जड़ से ही जोड़ेगी आपको। स्वर्ग भी देखिए, आप कभी विचार करिए विभिन्न मान्यताओं में स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में आपने उन्हीं श्रेष्ठतम भोगों को स्थापित कर रखा है जिन भोगों के साथ आप यहाँ होना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: है ना? तो वहां भी जड़ पदार्थों की स्थापना हुई है।
1: जी, जी,
2: और
1: जी।
2: नरक में भी क्या आपने स्थापित कर रखा है, उन कष्टों का अपार विस्तार कर रखा है आपने, जिन कष्टों से आप अपने आप को यहाँ बचाना चाहते
1: बिल्कुल,
2: हैं
1: बिल्कुल।
2: तो कह दिया ये नरक है। और उसी आधार पर आप जीवन के व्यवहार को अनुशासित करते हैं। तो तृष्णा हमेशा जड़ पदार्थों से संबंध रखती है। राम जी कह रहे हैं, राम जी का चिंतन तो देखिए कि उस उम्र में 12 साल की अवस्था में, क्योंकि ये ब्रह्म का वैराग्य है, कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये देखें तो ये ग्रंथ बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है, और इस पर तो बहुत कह सकते हैं गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। तो तृष्णा का ये स्वभाव है कि जड़ के साथ संबंध रखेगी और सदा आपको विक्षुब्ध रखेगी, कभी शांति नहीं देगी।
1: अच्छा शशिकांत जी, ये जो ग्रंथ है ये क्या बताता है कि प्राणियों के नाश का क्या कारण है?
2: प्राणियों के नाश का कारण क्या है? उन्होंने साफ साफ कहा, राम जी ने कहा कि जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि तृष्णा काली नागिन के समान है जो सहस्त्र कुटिलताओं से भरी है, जिसमें विषय सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं वो, कि विषय का सुख जहां भी आपने कल्पित किया, ये समझने की वो तृष्णा है और वो आपका नाश कराएगी
1: जी।
2: कहते हैं विषमता रूपी विष को ही ये उगलती है, मतलब इसमें कभी भी आप समत्व नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में योग को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं योगस्त कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध है सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। उन्होंने कहा कि समत्व योग है अर्जुन, और आप कभी विचार करके देखिए तो बुद्धि क्या आपको समत्व में रहने देगी? बुद्धि हमेशा विषम भाव को खड़ा करती है, विषमता खड़ा करेगी। तो ये जो तृष्णा है ये विषमता रूपी विष ही उगलती है, और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेगी। जैसे आप विषमता रूपी विष के संपर्क में आए, आप कहीं ना कहीं जो करणीय है, जो धर्म है, उसके शिकार हो जाएंगे या अधर्म के शिकार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये डसेगी विष का ही आपको। तो इस तरीके से ये प्राणियों का नाश ही करेगी, चाहे वो आप इसे गंभीरता से अगर देखा जाए तो चाहे वो करणीय कर्म भी अगर आपकी वासना बन जाती है, आप किसी जड़ पदार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं
1: जी, जी।
2: तो वो आपका नाश करेगा,
1: नाश करे,
2: क्योंकि जड़ पदार्थ से आप चैतन्य से तो दूर होंगे ही ना।
1: जी जी
2: जी।
1: तो हम यही समझें कि जो तृष्णा है उससे दुख ही दुख है,
2: तृष्णा से दुख ही दुख है। मैंने पहले भी कहा था
1: यही उसका फल कहा जाएगा।
2: वैराग्य जब हुआ भर्तृहरि जी को तो उन्होंने यही तो कहा कि ये तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया है ना।
1: जी जी जी।
2: तृष्णा जीर्ण नहीं हुई।
1: अच्छा, तो मोह से आच्छादित जो चित्त है
2: जी,
1: उसको किस तरह से शांत किया जाए?
2: जी, आपने सुंदर सवाल किया कि मोह से आच्छादित चित्त को कैसे शांत किया जाए। कहते हैं इस संसार रूपी जो ये विस्तार दिख रहा है ना, इसको इन्होंने विशाल वन कहा, और इसमें तृष्णा रूपी विष की बेल फैली हुई है। ये संसार में जो व्यवहार है वो तृष्णा से मुक्त व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहारिक जगत में आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि आपका व्यवहार कहीं तृष्णा रूपी काली नागिन के द्वारा प्रेरित तो नहीं है, जहां पर आप विषय वासनाओं के विष का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मोह से आच्छादित चित्त होगा, क्योंकि ये तृष्णा आपके अधोपतन और उपद्रव रूपी फल को ही उत्पन्न करेगी, तृष्णा से कभी आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, अधोगामी बनाएगी
1: जी।
2: और आपके जीवन में उपद्रव उत्पन्न होगा
1: जी।
2: तो इसका एक उपाय है कि आप इस संसार के मोह से अपने को मुक्त रखें। संसार के मोह से मुक्त रहने के लिए पहले शरीर के मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतों से निर्मित है तो पंचभूतों की तरफ यह आकर्षित भी होगा। लेकिन आप अगर वैराग्य का दीप जल रहा है आपके अंदर, विवेक है आपके पास, तो आप ये जाने कि ये तृष्णा का प्रभाव है जो हमें अधोपतन या हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न करेगी और हमारा अधोपतन और चित्त को उपद्रव में ही ले जाएगी, चित्त को कभी शांत नहीं करेगी। तब जाके आप इस पर विजय पा सकते हैं या इसको समझ सकते हैं।
1: अच्छा, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि तृष्णा कैसे आती और जाती है, क्या कारण है इसका?
2: अब इसको कहा है इन्होंने कि ये तृष्णा कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ, देख कितनी बड़ी बात है कि कुहरे के समान है जहां आपको दिखेगा नहीं और मोह के आवरण से ढकी है। इसी को हम लोग कहते हैं माया। माया जब कहते हैं, माया का दो काम है, वो आवरण और विक्षेप उत्पन्न करना। विक्षेप का मतलब साफ साफ न देख पाना, सच न देख पाना, और आवरण का मतलब ढक लेना। तो ऐसे में तृष्णा मोह उत्पन्न करती है और ये जो है विवेक का प्रकाश आपके न मिलने पाए, ऐसा इसका होगा कि विवेक के प्रकाश से आप वंचित होकर के इसके अंधकार में, जैसे कुहरे के अंधकार में आप सत्य को नहीं देख पाते, ऐसे ही आप कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है और विवेक का प्रकाश छा जाने पर ही शांत होती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। ये तृष्णा इतनी इतनी प्रबल है कि जो साध्य नहीं है उसको भी ये आपका साधन बना देगी और उसमें चित्त को उलझा देगी और आप जीवन भर दुख के सिवाय, जैसे कहते हैं ना कि सुख को हम साध्य मानते हैं कि हमारे जीवन का साध्य सुख है
1: जी, जी,
2: तो
1: जी।
2: ऐसे में तृष्णा के कुहरे के नाते हम सुख के स्वरूप, जो हमारा स्वरूप ही है, अविनाशी जो स्वरूप है, वो सुख का सुख राशि है, जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सुंदर और सत्य है वो शिव है, लेकिन वो शिव एक तृष्णा के नाते आच्छादित है वो आपका, और आप मोह के शरीर के मोह में फंसकर संसार के विषय वासनाओं में ही शिव को खोजते रहते हैं। और आप विचार करके देखिए कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की शरण में भी अगर जाते हैं तो संसार ही लेके जाते हैं, भगवान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यानी वही भगवान हमें प्रिय है जो हमारे सांसारिक जड़ कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हो। तो अंततः हम तृष्णा के ही तो शिकार हुए ना, क्योंकि तृष्णा हमेशा जड़ के साथ आपको जोड़ेगी।
1: कौन मीरा की तरह जाता है, सभी कामना लेकर जाते हैं,
2: सब जाते हैं कामना लेकर के, और कामना हमेशा संसार की ही होगी। शरीर को तो संसार की ही कामना होगी क्योंकि ये भी जड़ है, चेतना के बिना शरीर क्या है, जड़ है। और तृष्णा कभी चेतना के प्रति आपको चैतन्य होने नहीं देगी, हमेशा जड़ के साथ आपका संबंध जोड़ेगी। तो ऐसे में हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब हम अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं तो उस समय हमारा साध्य संसार है कि आराध्य है। तो तृष्णा क्या कर रही है, असाध्य को साधने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, जो संसार कभी सदा किसी का नहीं।
1: जी जी जी,
2: संसार आज तक का आप इतिहास उठा करके देखें, चूंकि ये दृष्टि राम जी की है इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को विवेक की दृष्टि है, विवेक से उत्पन्न वैराग्य है। देखिए एक बात मैं अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई बार हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन की असफलता से प्रभावित होकर के लोग वैराग्य की तरफ बढ़ पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर देखने में
2: अक्सर देखने में यही आता है कि उनको संसार दुखद दिखा या उनके आसपास के लोगों को संसार में उन्होंने दुखद देखा तो ऐसे में उन्होंने संसार से पलायन कर लिया, जबकि वैराग्य बिल्कुल ये नहीं है। वैराग्य एक सत्य उद्घाटित होने के बाद संसार में किया जाने वाला व्यवहार है, जिसके लिए राम जी को उपदेश हो रहा है कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। राम जी भी व्यवहार से भाग रहे हैं,
1: जी जी जी,
2: सांसारिक व्यवहार से राम जी हट रहे हैं और हट गए हैं। तभी ये गुरु उपदेश कर रहे हैं उनको।
1: हाँ, हाँ,
2: है ना,
1: बिल्कुल।
2: और वो अपने चित्त की बात कर रहे हैं, उस वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं, और गुरु उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। आप इस संसार में जब तक हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक आप कर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब कर्म आप ऐसा करने लगो जिसमें न समाज की भलाई हो न बताने योग्य हो, तो ऐसा कर्म तो आपने उसी दिन अपने आप को मार दिया। एक ऐसा आदमी जिसका कर्म संसार में प्रकाशित होने योग्य न हो, आप क्या समझते हैं वो आदमी जिंदा कब था? किसी ने कहा भी था कि हम मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए देर से जाते हैं।
1: जी,
2: तो ऐसा अगर हमने कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म को प्रकाशित न किया जा सके, बताया न जा सके, तो निश्चित ही हमारे जीवन पर सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में हमने, प्रकृति ने तो हमें वो सब कुछ दिया जो सबको देती है, तभी तो हम जिंदा रहे, लेकिन हमने क्या दिया?
1: बिल्कुल,
2: हमने तो जीवन के विपरीत व्यवहार किया ना।
1: जी जी,
2: तो इसीलिए विष्णु पालनहार हैं, और इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो,
1: जीने दो।
2: यही राम जी को सिखाया जा रहा है।
1: हाँ।
2: ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए समझते हैं कि ये तो अलग बात है, ये अलग बात है, अन्यथा देखें। हाँ। कहते हैं कि राम, पहले जो वैराग्य आपका हुआ है उससे आप तो जीना सीखो, क्योंकि आप तो जीने से भागने लगे।
1: अच्छा,
2: हो ना,
1: ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब भी संसार की निस्सारता का ज्ञान भीतर उतरता है तो इंसान फिर कर्म से छूटता है, है ना, और उनको फिर से इस ज्ञान के साथ कर्म में रत करने के लिए सारा उपदेश, और यही हमें भी सीखना है।
2: मैं आपसे सुनीता जी कहूं, मनोविज्ञान आज जो तमाम मानसिक बीमारियों का अध्ययन कर रहा है, वो मानसिक बीमारियां व्यक्ति के कर्म न करने से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है करना वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है उसे चाहता नहीं है। फिर वो अंदर के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में इतना उलझ गया है कि वो अपने चित्त के साथ शांत नहीं रह पाता, अपने आप को जवाब नहीं दे पाता। कहते ना कि आप अपनी नजर में गिरने लगते हैं, फिर आपको संभाले कौन? तो ऐसे में फिर वैराग्य की आवश्यकता है, और वो वैराग्य जो असफलता से नहीं, विवेक से उत्पन्न हो, सत्य के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वैराग्य।
1: ज्ञान है, बिल्कुल,
2: वैराग्य। अच्छा, ज्ञान है
1: जी। अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि दो सवालों का जवाब आप दे दें कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है, और तृष्णा की हमने बात की है, तो तृष्णा के निवारण का क्या मंत्र है?
2: व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है? क्या आपने सुंदर प्रश्न किया कि व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है, संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। ये राम जी ने कहा।
1: जी,
2: अब
1: जी,
2: सवाल आप देखिए कि संसार में जब आप देखेंगे कि जब अभी हमने बात की कि तृष्णा हमेशा जड़ चीजों से आपको जोड़ती है, तो स्वर्ग की कामना, क्या ये भी तो तृष्णा का ही हिस्सा है? तो अंत में हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना लेके बैठा है। तो राम जी की दृष्टि में तृष्णा ऐसी है, लेकिन हमारी तृष्णा तो स्वर्ग तक हमें ले जाती है। आप देखिए, हमारे लिए ये बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शास्त्र बहुत दुर्लभ और अद्वैत ज्ञान की बात करता है। इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए, जो आपके प्रश्नों से के साथ हम बढ़ भी रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि ये तृष्णा जो है, यही जो है व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है।
1: दूसरा इसके निवारण का मंत्र,
2: जी इसके निवारण का कहते हैं मंत्र ये है कि इसके लिए कहते हैं ना कि सत्संग करें, तो कहते हैं ये जो संतों का संग है या इस तरह का जो चिंतन है, महर्षि राम जी कह रहे हैं, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान सूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यों को भी यह तृष्णा एक मात्र पल भर का याचक बनाकर रख देती है। सोचिए आप, यानी आप, एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति याचक क्यों बना हुआ है?
1: हाँ, हाँ।
2: जब हम ब्रह्म हैं, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, अपने यहाँ हर जगह पंडित पूजन में बोलते हैं पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते, इतना गहरा घोष कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण से कुछ भी घटाओ वो पूर्ण ही रहेगा, जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण होगा। तो फिर ऐसे में व्यक्ति याचक क्यों है, क्यों मंदिर जा रहा है?
1: बड़ा प्रश्न है,
2: बड़ा प्रश्न है। तो ये इसलिए है कि वो तृष्णा का शिकार है। तृष्णा कुछ है नहीं, एक प्रकार की अज्ञानता है। जड़ पदार्थों से हमारा योग होने के नाते हम तृष्णा से ग्रस्त हैं। अगर हम चैतन्य का चिंतन करें, जो राम जी ने अपने वैराग्य दशा में तृष्णा की जो निंदा की है, वो इसलिए की है, मतलब वो बता सकें लोगों को कि देखो ये तृष्णा किस तरीके से तुम्हें पकड़े हुए है, और इस जाल में तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कर्म से सुखी नहीं हो, क्योंकि राम जी के वैराग्य का यही कारण था।
1: जी, जी,
2: उन्होंने वैराग्य किसी विषाद से नहीं लिया था।
1: हाँ, हाँ।
2: जबकि गीता में अर्जुन को विषाद से वैराग्य होता है।
1: बिल्कुल,
2: यहाँ राम जी ने कर्म करते हुए लोगों को जब देखा, तो कहा कि किसी भी कर्म से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो फिर उनके चित्त में ये अनुसंधान, ये प्रश्न फूटा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग किया तो तब गुरु वशिष्ठ ने, जो गुरु वशिष्ठ मतलब उसके पहले भी शिक्षा दिए हैं चारों भाइयों को, लेकिन अब जो योग के अंतरतम रहस्यों को जो श्री राम जी के सामने विश्वामित्र जी के मांगने पर जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को दिया है, तब दिया है जब उनके अंदर ये विवेक से उत्पन्न वैराग्य हुआ है।
1: तो मुझे ऐसा लगता है शशिकांत जी कि इस संसार में कोई भी ज्ञान
2: जी
1: हम नहीं जानते हैं, जिस बात को एक बार बताया जाता है तो वो ज्ञान हमें सांसारिक ज्ञान हो जाता है
2: जी।
1: फिर दोबारा उसे जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती
2: जी।
1: लेकिन ये जो ज्ञान है
2: जी,
1: ये अभ्यास मांगता है,
2: अभ्यास मांगता
1: है ना, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती
2: बिल्कुल।
1: है तो ये सत्संग हमारा आपका बना रहेगा अगले अंक में भी। आज आप उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में आपने सुना श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा विषय पर चर्चा। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
3: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। यह इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सुश्री कलापिनी हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभा आएंगे। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमकली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और बौद्धिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती है। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध ये रचना

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूं। तुकाराम का पद है, मेरे पूज्य पिता और गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने इसे स्वरबद्ध किया है।

0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थी कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंद।

रेडियो रिपोर्ट में पहले आज हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल स्टोरी टेलर्स के कार्यक्रम में, जहां रविवार को सफलता के पीछे छिपे संघर्ष की कहानियों ने प्रेरित किया।

0: जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: बट एट द एंड लॉन्ग टर्म गेम, जो एक बात बोलते हैं ना, एक्चुअली जो आप कर रहे हो ना, उसका एक टर्म होता है इवेंट आईपीस। आज के दिन ये टर्म काफी प्रचलित हो रहा है इवेंट इंडस्ट्री में, इवेंट आईपी। इवेंट आईपी मतलब इवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इवेंट तो कोई नई चीज है नहीं, दुनिया भर में सालों से हो रहा है, मतलब अरसों से होते आ रहे हैं इवेंट्स। अब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे ही आपकी स्ट्रेंथ आपके कॉन्फ़िगरेशन में है। कोई बड़े नाम कोई छोटे नाम, बट बड़े लेवल पे ऐसे समझो, एक एग्जांपल के तौर पे हमारे एक एडिशन में गुलजार साहब आए थे। किसी ने कहा गुलजार साहब आ रहे हैं भोपाल, एक सेशन हो रहा है उनका, काई के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई तो कुछ हो रहा है फेस्टिवल। तो मुझे समझ आया, जब तक मैं इन बहुत अच्छे नाम है, बट अगर मेरा फोकस यही रहेगा ना कि मुझे नाम बुलाने, जो कि मेरा रहता था, मैं तब तक अपना नाम नहीं बना पाऊंगा। अपना नाम बनाने के लिए, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने भी या कोई भी इस तरह की आईपी को आप देखोगे, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एज एन आईपी, कई रीजन से वो आईपी बना। आज मैं भी अगर एक लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा हूँ, तो वो आइडिया मैं क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से उठा के कर रहा हूँ। मैंने फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल कर दिया, बट एट द एंड ऑफ इट लिटरेचर फेस्टिवल वॉज देयर आइडिया, एन इनिशियल आइडिया विच बूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स। इतने साल लग गए उनको एक नाम बनने में, जो जयपुर का एक बहुत प्रचलित नाम है।

अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा मानना ये किसी भी फेस्टिवल में जो जाए, जो लोग अटेंड करें, उनको उनके लिए कुछ टेक अवे होना चाहिए वहाँ से। आप क्या लेके जा रहे हैं वहाँ से? फॉर एग्जाम्पल जो एक तो वो लोग आएंगे जो सुनना पसंद करते हैं, और दूसरे वो तो सुनाना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कैंस गया था, कैंस के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे वो मतलब मार्केट प्लेस कहते हैं हम कॉन्टेंट का, जहाँ पर कॉन्टेंट खरीदने और बेचने वाले लोग भी आते हैं, उनकी नेटवर्किंग होती है, उनकी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब जब हम इससे एसोसिएट हुआ, स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स हु आर इन वर्किंग इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो क्रिएटिव डिसीजंस लेते हैं वहां पर। आई हैव स्पोकन विद स्टेज, देयर इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टेज। सो इनके लोग आने के लिए तैयार हैं कि भाई हम आएंगे, अपना स्टॉल लगा के बैठेंगे, जिनको अपनी स्टोरी सबमिट करनी है हमारे पास आके सबमिट कर सकते हो। सो इट विल बी समथिंग कि यहाँ से उन राइटर्स के लिए भी टेक अवे होगा।

एब्सोल्युटली आई थिंक ये है, और इस बार हम उसको उस सबसे पहले उसी मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं. वी आर फाइनलाइजिंग अ वेन्यू विद इन द सिटी, विद इन द लिमिट्स ऑफ द सिटी. अब इसी इसी जवाब के साथ और इस उम्मीद के साथ कि भोपाल कहानियों का शहर बनेगा, और जो कि है भी, बट यहाँ पे और ऑर्गेनाइज तरीके से, और बट इवेंचुअली वी विल मेक भोपाल द स्टोरी टेलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड देन वील गो बियॉन्ड इंडिया. और हम अच्छा फेस्टिवल करेंगे,

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं भारत भवन में, जहां सादा नीरा समागम के तहत कई प्रस्तुतियां हुईं। यह निमाड़ी गायन की प्रस्तुति, कलाकार हैं मनीषा शास्त्री और उनके साथी।

माँ नर्मदा के पावन तट से आए हम निमाड़ के कलाकार, आप सभी को हमारा नर्मदे हार। अगली प्रस्तुति हमारी है आयो महीनो आषाढ़ को। आषाढ़ के महीने में किस प्रकार से पानी गिरता है और क्या क्या होता है वो गीत के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा,

परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। जवाहर बाल भवन में भावनाओं का अनूठा ताना बाना, मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती परिकल्पना, रंगमंच में सुलगते जज्बात, आखिरी बस में थमेगी रिश्तों की सांझ। जी हाँ, जब रंगमंच में भावनाओं के दीप जलते हैं तो शब्दों के परे संवेदनाओं का एक अनंत आकाश खुल जाता है। शहर की खामोश शाम को सुरमयी कलात्मकता से सराबोर करने के लिए रंग दर्शन कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति आखिरी बस का मंचन किया गया। जवाहर बाल भवन के मुक्ताकाश मंच में सजे इस मंच ने मानवीय रिश्तों के उस मर्म को छुआ जो अक्सर आधुनिकता की आपाधापी में कहीं छूट जाता है। निर्देशक संतोष सुमन के रंग अनुभव ने हर पात्र को मंच पर जीवंत कर दिया। ये नाटक हमें एहसास कराता है कि जब तक रिश्तों में उम्मीद की आखिरी बस बाकी है, तब तक इंसानियत का सफर कभी नहीं थम सकता। रूसी कथाकार अलेक्जेंडर वैम्पिलोप की मूल रचना पर आधारित और अजय सिन्हा द्वारा अनुवादित ये नाटक महज एक कहानी नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन का दर्पण है। नाटक की आत्मा एक बूढ़े पिता वर्मा के जीवन की ढलती सांझ और उसकी असीम थकान के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं एक बेटे रवि का निश्चल पवित्र प्रेम और एक बेटी की अनमनी सी उलझने जिंदगी के कैनवास पर सतरंगी रंग बिखेरती है। ये नाटक समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर गहरा प्रहार करता है। कला जब समाज के खोखलेपन को आईना दिखाने का माध्यम बनती है तो रंगमंच पर केवल दृश्य नहीं बदलते बल्कि सोई हुई चेतना जाग उठती है। राजधानी के तुलसीनगर स्थित जवाहर बाल भवन के मुक्ताकाश मंच के अंतरंग कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक ऐसी साहित्यिक रस से सराबोर नाट्य प्रस्तुति रीढ़ की हड्डी का सफल मंचन किया गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की कालजयी लेखनी से उपजी ये एकांकी आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक और मर्मस्पर्शी प्रतीत होती है। ये नाटक महज एक विवाह की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि मानवीय स्वाभाविक और सामाजिक विविधताओं का सजीव कोलाज है। कहानी की धुरी है उमा, आत्मविश्वास और प्रखर स्वाभिमान से दीप्तिमान एक नव युवती जिसका किरदार मंच पर खुशबू सोनी ने जीवंत किया। विवाह के नाम पर लड़की को परखने की रूढ़िवादी परंपरा और उसके चरित्र और शिक्षा पर उठाए जाने वाले प्रश्नों के तीखे वाणों को ये नाटक बड़ी बेबाकी से सहजता भी है और उसका प्रतिकार भी करता है। एक तरफ जहाँ बाबू गोपाल प्रसाद की संकीर्ण मानसिकता समाज के दकियानुसी चेहरे को उघाड़ती है, वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षित होकर भी पिता की इसी संकीर्णता के आगे घुटने टेकने वाला उनका पुत्र शंकर रूढ़ी विहीन युवा पीढ़ी का प्रतीक बनकर उभरता है। सदा निरा नाम ही अपने आप में आनंद और जीवन का संदेश देता है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को सदा निरा समागम में सहभागिता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव-गांव तक जल संरक्षण का संदेश और पर्याप्त पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति में जल के महत्व को रेखांकित करते हुए रहीम के दोहे का उल्लेख किया और कहा कि जल केवल जीवन ही नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 2,00,000 जल संरचनाओं पर कार्य किया जा चुका है तथा राज्य सरकार हजारों करोड़ों रुपए जल संरक्षण पर खर्च कर रही है। कार्यक्रम में विदेशों के प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे जिसमें फिजी, साइप्रस और मैक्सिको के उच्चायुक्त शामिल थे। इस अवसर पर श्री राम तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ों परियोजना भविष्य के जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच
वैज्ञानिक जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समागम के अंतर्गत पर्यावरण, पंच महाभूत और जल संरक्षण पर संवाद किए। राजधानी भोपाल की शाम कला और परंपरा के अनूठे संगम की गवाह बनी, जब शास्त्रीय धुनों के बीच थिरकते कदमों और घुंघरुओं की झनकार ने फिजा में रस घोला तो लगा जैसे कला का जीवंत इतिहास मंच पर उतर आया हो। अवसर था लेक व्यू रोड स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित 15 दिवसीय प्रोडक्शन ओरिएंटेड ग्रीष्मकालीन कुचिपुड़ी नृत्य कार्यशाला के उद्घाटन का। ये कार्यशाला मात्र एक प्रशिक्षण शिविर नहीं बल्कि नई पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक जीवंत सेतु है। इस गरिमामयी सत्र की रौनक बढ़ाने विशेष रूप से उपस्थित रहे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित देश की सुप्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना गुरु वनश्री राव, उनके साथ उनके योग्य शिष्य और सहायक वांशिम राजा ने सहभागिता निभाई। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संग्रहालय के सहायक क्यूरेटर डॉक्टर पी शंकर राव ने की। उन्होंने कहा कि ऐसी रचनात्मक सहभागिताएं हमारी लुप्त होती कला परंपराओं के लिए काम करती हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। जैसे अमर शेरों के रचनाकार बशीर बद्र के निधन के बाद भोपाल उनकी यादों का साक्षी बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 जून को रविंद्र भवन में उजाले अपनी यादों की यादें बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बशीर बद्र के साहित्यिक अवदान पर संवाद के साथ अखिल भारतीय मुशायरा भी होगा। 28 मई को 90 वर्ष की आयु में बशीर बद्र का निधन हो गया था। और श्रोताओं, आज आप जा सकते हैं सदा नीरा समागम में नर्मदा हर कंकर शंकर भारत भवन में शाम 7:30 बजे से। कुचिपुड़ी नृत्य कार्यशाला में आप शामिल हो सकते हैं शाम 4 बजे से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शला का चित्र प्रदर्शनी आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे से जनजातीय संग्रहालय में। और अब मौसम पर एक नज़र। शहर में आज भी धूप के अलावा बादल छाने, कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रहने की संभावना है। परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल, हमें दे अनुमति। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर अपनी ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
2: तारीख मध्य प्रदेश की धरती ने एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चुंगुल से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया।
1: मैं जानती हूँ आज तुम मध्य प्रदेश की धरती का गुणगान क्यों कर रहे हो।
2: अच्छा, क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि तुम मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हो, जहाँ 3 जून 1891 को राय साहब त्रिलोक्यनाथ मुखर्जी के घर एक महान क्रांतिकारी अवनीनाथ मुखर्जी ने जन्म लिया था।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुम।
1: अवनीनाथ के बचपन में किसने सोचा था कि आगे चलकर वह महान क्रांतिकारी बनेगा?
2: हाँ तारी, अवनीनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ। अवनीनाथ ने वस्त्र उद्योग में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस कला के उच्च अध्ययन के लिए पहले वे जापान और फिर जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन दिनों भारतीय क्रांति की फसल पनप रही थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्र वातावरण इसके लिए काफी अनुकूल था। अनेक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। अवनीनाथ उनके संपर्क में आए तो फिर पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए, ऐसे कि उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का संकल्प ही ले लिया।
1: हाँ, कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी श्रृंखला की प्रमुख कड़ी बन गए। जर्मनी के प्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क से भारत में पहुंचने के लिए हथियारों का प्रबंध करना अवनीनाथ का प्रमुख दायित्व था।
2: ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग ने उन्हें भयानक क्रांतिकारी की संज्ञा दे रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जासूसों का एक पूरा दल उनके पीछे छोड़ दिया था। पर अवनीनाथ जासूसों की जासूसी करने की कला में निपुण थे। उन्हें कोई ब्रिटिश जासूस जानता ही नहीं था कि आखिर अवनीनाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी कौन सा है। इसके चलते कई बार वे अपने लिए तैनात जासूसों के साथ ही सफर कर चुके थे और कोई ब्रिटिश जासूस जान ही नहीं पाया था कि उनके साथ सफर करने वाला व्यक्ति वही अवनीनाथ मुखर्जी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बेचैन है।
1: अपने दायित्व की पूर्ति के सिलसिले में सन 1912 में जब अवनीनाथ भारत लौटे तो अपने शक की जाँच के लिए ब्रिटिश जासूसों का एक दल भी उनके पीछे पीछे भारत आया। कुछ दिन ब्रिटिश जासूसों की आंखों से ओझल रहने के लिए अवनीनाथ ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में प्राध्यापकी स्वीकार कर ली। प्राध्यापकी तो केवल बहाना थी, उद्देश्य था वृंदावन को कुछ समय के लिए आश्रय स्थली बनाना। उचित अवसर पाकर अवनीनाथ वृंदावन से गायब होकर जापान जा पहुँचे। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार इकट्ठे करने की योजना अभी अधूरी जो थी।
3: ओ

0: जापान से शस्त्र विक्रेताओं से सौदा करके अवनीनाथ जब जापान से भारत के लिए जहाज पर सवार हुए तो साथ ही एक ब्रिटिश जासूस भी उनके साथ उस जहाज में सवार हो गया। जिस केबिन में अवनीनाथ यात्रा कर रहे थे वह जासूस भी उसी केबिन में उनका सहयात्री बन करके उनसे मित्रता गाढ़ने की गरज से तरह तरह की बातें करता रहा। यूं तो अवनीनाथ के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, पर जापान के शस्त्र विक्रेताओं के कुछ पते जरूर एक कागज पर लिखे हुए थे। जब वह सहयात्री नहाने के लिए स्नान गृह में गया तो अवनीनाथ ने पते वाला कागज शैया के मोटे गद्दे के नीचे दबा दिया और निश्चिंत हो गए।
1: पर जासूस ने अवनीनाथ की तलाशी लेने के लिए एक चाल चली। जब जहाज सिंगापुर पहुंचा तो वहां बंदरगाह पर भारी सरगर्मी थी। अवनीनाथ को शक तो हुआ पर वे जासूसों की चाल समझ नहीं पाए। फिर वे अपने पास का एकमात्र आपत्तिजनक पते वाला कागज अपने कब्जे से हटा ही चुके थे, सो निश्चिंत बने रहे। ब्रिटिश जासूसों ने केबिन में दवा छिड़कने के बहाने

0: गद्दे के नीचे से निकला है, पर उनकी कोई दलील नहीं सुनी गई। जापान के शस्त्र विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी उनके विरुद्ध थी। उन्हें सिंगापुर से गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
1: भारत पहुंचने पर गिरफ्तारी की अवस्था में अवनीनाथ कब और कैसे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से निकल भागे कोई नहीं जान पाया। वह रहस्य रहस्य ही बना रहा। इधर भारत में पुलिस इस मामले की तहकीकात और अवनीनाथ की पुनः गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी रही। उधर अवनीनाथ मुखर्जी सबको चकमा देकर हॉलैंड जा पहुँचे।

0: जाना।
1: भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी यह घटना कम विस्मयकारी नहीं थी कि भारत से गायब होकर के हॉलैंड में अवनीनाथ मुखर्जी न केवल द्वितीय कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, बल्कि कुमारी रोशा फिटिंगफ के साथ प्यार की पेंगे भी बढ़ा रहे थे। आखिर हॉलैंड में ही रहते हुए उन्होंने रोशा फिटिंगफ से 1920 में विवाह कर लिया।
2: सन 1922 में अवनीनाथ मुखर्जी बर्लिन में थे और अपने पुराने क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हॉलैंड से गायब होकर वे कब बर्लिन पहुंचे, कोई नहीं जानता था। बर्लिन में उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, उनमें सुरेंद्र कर, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रमुख थे। अवनीनाथ मुखर्जी इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे।
1: बर्लिन में मौजूद क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि वह समय आ गया है जब उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत पहुंचकर विभिन्न प्रांतों में गुप्त संगठनों द्वारा विद्रोह की भूमिका बनाए। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल हुलिया बदलने में माहिर हो, वरन आवाज बदलकर विभिन्न प्रांतों की बोलियों के लहजे में भी बात कर सके। सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से इसके लिए अवनीनाथ मुखर्जी का चुनाव किया, क्योंकि हुलिया और आवाज बदलने में उन्हें इतना कमाल हासिल था कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कई अवसरों पर वे अपने इस हुनर का लोहा मनवा चुके थे।
2: आखिर अवनीनाथ मुखर्जी अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे। अत्यंत कुशलता के साथ उन्होंने साथियों द्वारा सौंपा गया दायित्व पूरा किया। मद्रास, गया, कलकत्ता और ढाका नगरों में उन्होंने क्रांति की संरचना पूरी सफलता के साथ नियोजित की। अपना काम पूरा करके वे सन 1924 में यूरोप के लिए रवाना हो गए।
1: रूस के मास्को नगर में रह करके उन्होंने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें आजादी के लिए भारत का दावा पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रूसी प्रवास में ही भारत की आजादी के चिंतक, भारत माता के सपूत अवनीनाथ मुखर्जी ने 28 अक्टूबर 1937 को अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी और अपना नाम हमेशा के लिए भारत के महान सपूतों की सूची में दर्ज करा दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आज कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे HIV एड्स की। साथियों, यूं तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती जाती रहती हैं और उनका उपचार भी हमें मिल जाता है। हम समय पर दवाइयां लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज पूर्णतः हम अभी तक भी ढूंढ नहीं पाए हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज और अपने नाम से ही लाइलाज सा लगने वाला HIV/AIDS। जी हाँ श्रोताओं, जितना इसका नाम खतरनाक है ना, उतनी ही ये बीमारी भी भयावह है, क्योंकि जरा सी लापरवाही का एक ही परिणाम है और वो है असमय मृत्यु। तो श्रोताओं, HIV/AIDS के विरुद्ध लड़ाई के लिए लोगों को एकजुट करती हैं हमारी आज की अतिथि। आज HIV/AIDS के कारण, लक्षण और समाधान पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं काउंसलर और सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती संध्या सक्सेना। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नमस्कार।
4: धन्यवाद मैम।
3: HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक प्रथम चरण है और दूसरा उसका अंतिम चरण यानी बीमारी। मैडम, आपसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि HIV क्या है?
4: HIV मैम एक वायरस है
3: जी,
4: और एड्स एक बीमारी है।
3: मैडम, अगला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें सबसे अधिक HIV फैलने की संभावना रहती है?
4: मैम, पहला कारण है इसका संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से
3: जी।
4: दूसरा है संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे को। तीसरा है संक्रमित सुई से अगर कोई व्यक्ति इंजेक्शन लगाता है तो उससे होता है
3: जी।
4: और चौथा है संक्रमित ब्लड लेने से। ब्लड भी जब भी लें तो जांचा परखा ब्लड बैंक से लेना चाहिए।
3: जैसा कि आजकल आधुनिकता के चलते मैडम व्यक्ति में धैर्य या संयम बहुत ही कम हो गया है, हमारे संस्कारों में पहले ब्रह्मचर्य से रहना सिखाया जाता था, लेकिन आजकल संस्कारों की सीमाओं को कहीं ना कहीं लांघा जा चुका है, तो क्या कहना चाहेंगी आप विशेषकर युवा वर्ग से?
4: मैं यही कहूँगी कि समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि जो पहले युवाओं में जो चीज़ें थी वो आज नहीं है
3: जी।
4: तो जो भी करें तो बहुत सावधानी से रखें ताकि हम जिसके साथ जो भी संबंध बना रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। इसके लिए कॉन्डोम यूज करें हमेशा
3: जी।
4: युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा युवा वर्ग देश का भविष्य है
3: जी।
4: अगर ये भविष्य खतरे में जाता है तो हमारा जाहिर सी बात है कि देश खतरे में जा रहा है।
3: मान लीजिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति, आपने कहा कि युवा वर्ग मानता नहीं है या परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं और उनको ऐसा पता चलता है कि उनका जो HIV टेस्ट वो कराना चाहते हैं, तो वो कैसे करा सकते हैं, कहाँ से करा सकते हैं?
4: मैम, HIV टेस्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सभी जगह होता है
3: जी।
4: हम उसे ICTC कहते हैं
3: जी। जी,
4: वहाँ पे काउंसलर रहती हैं, वो काउंसलिंग करती हैं और जो भी जिसका भी टेस्ट हो रहा है अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके और जो काउंसलर मैम होती है, सर होते हैं, जो भी है गोपनीयता रखी जाती है
3: जी।
4: इसमें
3: जी।
4: सबसे पहले तो इसमें गोपनीयता रखना ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब तक हम गोपनीयता नहीं रखेंगे तो सामने वाला हमसे कोई चीज शेयर नहीं करेगा
3: जी। जी जी,
4: तो इससे ना डरे, टेस्ट कराने वाला जो भी है व्यक्ति, कि ये चीज उजागर हो जाएगी, उजागर नहीं होगी कभी भी। अगर पॉजिटिव आता है तो उसका 3 बार टेस्ट होता है, 3रे बार में फाइनल होता है कि हाँ ये पॉजिटिव है। इसके लिए ना डरे किसी भी तरह की, अपने मन में वो ना लाए कि हमारी गोपनीयता भंग हो रही है या किसी से हम कह देंगे, टेस्ट करने वाला व्यक्ति कह देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चिंत होकर अपना टेस्ट कराएं।
3: जैसे HIV एड्स का जब पता चलता है तो आप एक काउंसलर भी हैं, स्वास्थ्यकर्ता भी हैं, तो आप मरीज को गोपनीय रखती हैं, तो कैसे निर्धारित करती हैं आप? पहली बात ये कि आप उसके परिवार को ये बात पता होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से या पता नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने कहा अभी कि हम उस बात को सीक्रेट रखते हैं।
4: बगैर पेशेंट की अनुमति के बगैर हम किसी को नहीं बता सकते हैं।
3: अच्छा,
4: ओनली पेशेंट से हम जब अनुमति ले लेते हैं उसके बाद ही, अगर मैरिड है जो मेल है फीमेल है तो उसके हम पार्टनर को तभी बता सकते हैं जबकि हमें उसकी अनुमति मिल जाती है। एकदम ऐसे नहीं बता पाते हैं कि इसे HIV हो गया है।
3: जी जी।
4: पता चल रहा है कि वो सुनने पे, मतलब HIV एक ऐसा है कि कई लोगों को
3: पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
4: सुनने से बहुत घबरा जाते हैं, और जिस जो पॉजिटिव निकलता है हम उसे भी ऐसे नहीं बता कि आप HIV हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत उसे समझा बुझा के, और कुछ नहीं है ये तो छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। फिर हम लोग AIT से लिंक कराते हैं उसे, तो वहाँ से दवाइयाँ वगैरह दिलवाई जाती हैं, दवाई रहेगी आपकी, आप दवाइयाँ खाइए टाइम टू टाइम, एकदम ठीक हो जाएंगे। मतलब वो इंसान व्यक्ति ये है ना, मैं टूट जाता है अंदर से, जहाँ उसने HIV का नाम सुना वहाँ पे बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि मैंने भी देखा है ऐसे कई लोगों को, कई लोगों को तो पसीना आ जाता है, ठंडा कांप जाते हैं, इस तरह की हो जाता है।
3: जैसे आपने कहा कि आप मतलब उनको समझाती हैं, तो जैसे आप कई बार स्वास्थ्यकर्ता भी हैं तो घर घर जाकर जागरूकता अभियान छेड़ती हैं, या आप ऑफिस में भी कई बार रहती हैं तो HIV एड्स के बारे में लोगों को समझाती हैं। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम इंसान जो है ना, वो इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहता, या करना भी चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं संकोच रहता है। तो आप किस तरीके से बात करने की शुरुआत करती हैं जब आप घर घर जाती हैं या ऑफिस में रहती हैं? क्योंकि मैडम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके ऊपर जिसे आपको पूरा करना होता है।
4: घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उन लोग से ऐसे फैमिली वो बनाने पड़ते हैं, जैसे फैमिली वाला मेंबर होता है, फैमिली मेंबर्स की तरह उनके साथ हमें बैठना ना होता है, उनके साथ तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हम मैम हैं, हम आप हमारे वो हैं, हम मैम हाँ पेशेंट है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। फैमिली मेंबर की तरह बहुत प्यार से उन्हें डील करना पड़ता है। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि अगर हमें बाय द वे पता चल जाता है टेस्ट के बाद कि बहू या बेटी जो भी है पॉजिटिव आए हैं, तो हम फिर धीरे से उनको बताएंगे कि सबसे ऐसे ही बोलना पड़ता है वहाँ, भाभी भैया आंटी अंकल जी करके, कि क्या बात है, ये कब से तबीयत इनकी खराब हो रही है। या उन लोगों को फिर मैम अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उन्हें कोई भी दवाइयाँ नहीं लगती हैं, उन्हें केवल AIT की ही दवाई से आराम मिलता है। बाकी अगर ऐसे किसी डॉक्टर को भी दिखा भी देते हैं तो वहाँ पे उन्हें आराम नहीं मिलता है।
3: अच्छा, जैसे आपने कहा कि पता चल जाता है कई बार जैसे बीमारी का, तो दवाइयाँ कैसे आप उन मरीजों को देते हैं? क्योंकि कई बार ये भी परिस्थितियाँ बनती हैं, ऐसा सुनने में भी आता है कि जो मरीज हैं वो दवाइयाँ ही नहीं खाते हैं, तो क्या ये दवाइयाँ जो आप देते हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, या कोई सरकार इसमें मदद करती है, या पेशेंट जो है वो खुद उसके लिए खर्च उठाता है?
4: नहीं जी मैम, ये सरकार की तरफ से मिलती है।
3: सरकार की तरफ
4: से पेशेंट को भी नहीं देना होता है, हमें भी हमारे तरह से कुछ नहीं करना है, सरकार देती है, ये फ्री दवाइयाँ मिलती हैं।
3: तो मरीज को आप कैसे समझाते हैं जो मरीज दवाइयाँ नहीं खाते हैं?
4: मरीज को मैम हम बहुत काउंसलिंग करते हैं, बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। हमसे अगर नहीं समझते हैं तो जो मेरे सीनियर है मेरे ऑफिस में वो लोग समझाते हैं, उनसे भी अगर समझ में नहीं आती है तो फिर हम काउंसलिंग उनकी ICTC गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहती है, ICTC रहती है, वहाँ पे मैम वगैरह से करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, वो फिर AIT पे भी जाके काउंसलिंग करवाते हैं उनकी, तो फिर आ जाता है धीरे धीरे समझ में। कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना ही समझाओ उन्हें समझ में नहीं आता है, तब वो बीमार पड़ जाते हैं बुरी तरह से, क्योंकि हम तो उनका समय समय पे हर 15 दिन में उनकी जानकारी लेते हैं, उनके घर जाना है, उन्हें देखनी है कि भाई आपकी डायरी दिखाइएगा हमें, आपने दवाई कब से नहीं ली है, या डब्बी मिलती है मैम दवाई की, तो वो देखते हैं, उसमें 30 टैबलेट मिलता है, तो उसको देखते हैं कि आपकी कितनी खत्म हो गई है, कितनी खाई है, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह मैम उनको हमें देख रेख करनी पड़ती है।
3: जी,
4: कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और ये बीमारी ऐसे छींकने खांसने से या छूने से, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से ऐसे नहीं फैलती है। ओनली इसके चार कारण है मैम जो मैं बता चुकी हूँ, उसी से फैलनी है। बहुत काउंसलिंग के बाद समझ में आती है फिर उन लोग को, समझ जाते हैं
3: तो कहीं ना कहीं जागरूकता आती ही है। आपके जो प्रयास है उनसे कहीं ना कहीं
4: हम लोग भी प्रयास करते हैं, बाकी और हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग भी सारे प्रयास करते हैं।
3: यही कुल मिलाकर एक टीम वर्क जो है, पूरा काम करता है
4: मैम, पूरा टीम वर्क ही होता है।
3: जी जी जी।
4: अगर मैं अकेले, अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को कर लूँ तो नहीं कर पाऊंगी।
3: जी जी,
4: पूरा टीम वर्क रहे।
3: जी जी, क्योंकि बीमारी जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है।
4: ये बीमारी एक ऐसी होती है ना HIV के, इसमें समाज भी मतलब एक झिझक देता है, हर इंसान को अलग कर देता है। कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है उसके फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें HIV/AIDS है, आप हमारे घर में मत रहो, हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमसे ये कहेंगे अरे इसको HIV/AIDS है। ये पता नहीं रहता कि HIV/AIDS किस कारण फैला है। इसका ये कारण नहीं है कि हम किसी के साथ संभोग कर रहे हैं तो फैल रहा है, एक ही कारण नहीं है इसके, क्योंकि मैम इसके चार कारण है। अब वो चार में से तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं चारों में से। मैम इसका पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है संक्रमित माँ से उसके होने वाले शिशु को। तीसरा कारण है संक्रमित व्यक्ति की सुई से, जो एक सुई से चार लोग इंजेक्ट करते हैं उससे। और तीसरा संक्रमित ब्लड लेने से।
3: जी जी,
4: इसके चार कारण तो हैं, लेकिन सबका ध्यान पहले कारण पे जाता है।
3: जी जी,
4: अगर कोई HIV आ जाता है तो सबसे पहले बस वो एक ही कारण पे जाता है कि इसी कारण हुआ है ये।
3: यानी कहीं ना कहीं देखिए कि आपका कहना ये है कि जो पेशेंट है उसको भी कितनी सारी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
4: उसे तो पल पल मतलब हर कदम पे चुनौतियों का सामना करना है।
3: जैसे मैं आपकी बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, जैसे आप लोग स्वास्थ्यकर्ता रहते हैं तो कैसे उन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं?
4: कई बार ऐसा होता है कि मैं भी IIT पे दवाइयाँ दिलाने पेशेंट को लेके जाती हूँ, तो मेरे भी वहाँ पे जान पहचान वाले
3: डॉक्टर्स
4: हैं, सभी लोग हैं। डॉक्टर्स वगैरह तो जानते हैं कि भाई ये तो संस्था में काम कर रही है तो इसलिए आई है। बाकी और जो मिलने वाले मिल जाते हैं, मुझे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं वहाँ पे, तो क्या हुआ।
3: तो आपके लिए भी एक चुनौती है,
4: मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
3: काम करते हैं मैडम, आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, जैसे व्यक्ति जो रहता है वो HIV टेस्ट कराना चाहता है तो ऐसा सुनने में आता है कि 2 से 3 बार किया जाना चाहिए, तो लोगों में कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं कि एक बार में कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता। तो क्या ये सही बात है कि 2 से 3 बार में कराना चाहिए?
4: पहली स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग बोलते हम, हमारे ऑफिस में ही करते हैं। अगर ऑफिस में आता है, इसे लग रहा है कि भाई कहीं से है सिम्टम्स है, तो फिर हम इसके ICTC में टेस्ट कराते हैं। तो ICTC में भी वो लोग 3 बार टेस्ट लगाते हैं, जब तीसरा हो जाता है, तीसरे में फाइनल होता है कि हाँ पॉजिटिव
3: है या नहीं है, दोनों परिस्थितियां पता चल जाती होंगी। मैम, एक आमजन और एक संक्रमित व्यक्ति, दोनों को आप कैसे समझाएंगी?
4: आमजन और पॉजिटिव समझाने का नजरिया तो मैम हमारा दोनों का एक ही रहता,
3: एक ही रहता है,
4: क्योंकि हम दोनों को एक ही पल्ले में रखते हैं। अगर अलग अलग रखेंगे तो फिर हमें भी मुश्किल होंगी थोड़ी सी, और उसको भी लगेगा कि ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ दोनों का समझाने का एक ही वो रहता है दोनों लोगों को। लेकिन इसके भी बीच में फिर जो पॉजिटिव है, फिर उसे हमें वन टू वन उसके साथ बात करनी पड़ती है, और ग्रुप में तो उसे कर ही नहीं सकते
3: हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन कौन सी सुरक्षाएं आपको रखनी है। अच्छा मैडम, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि HIV के लक्षण जो है वो महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होते हैं या लगभग एक जैसे ही होते हैं?
4: नहीं मैम, एक सेम रहता है,
3: एक जैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा लक्षण आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, कौन कौन से वो लक्षण रहते हैं जो HIV में, जब व्यक्ति में थोड़े कुछ लक्षण जो शुरुआती होते हैं?
4: जैसे वजन कम होना,
3: जी
4: कहीं की दवाइयां ना लगना उसे,
3: जी
4: और उल्टी होना, जी मचलाना, इस तरह के लक्षण होते हैं।
3: बहुत सामान्य से लक्षण है, यानी कहीं ना कहीं,
4: क्योंकि ऐसे अगर हम बीमार होते हैं तो कोई भी डॉक्टर को दिखा देते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। अगर बाय द वे हमें पता नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं, तो फिर हमें कहीं की दवाइयां नहीं लगेंगी, हम दुबले पतले होते जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उल्टियां होंगी, वजन कम होगा, जी मचलाना, इस तरह के सिम्टम्स होता है।
3: यानी शुरुआती दौर में आपको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये।
4: हाँ जी मैम, और सबसे पहला ये है कि सभी जगह कहीं पे भी, एक अगर प्रेग्नेंट महिला भी है तो सबसे पहले उसका पता चलता है कि भाई प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट मंथ है, तो उसके HIV टेस्ट होता है।
3: जी
4: क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो HIV टेस्ट तो इम्पोर्टेंट रहता है।
3: जी अच्छा मैडम, एक और सवाल हमारे दिमाग में इस समय आ रहा है कि क्या HIV एड्स का इलाज मिल पाया है जिससे इस महामारी से व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सके?
4: मैम, इलाज तो है इसका, बट ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, दवाइयाँ आप कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू हमारा पेशेंट अगर दवाइयाँ खाता है, AIT की दवाइयाँ खाता है, तो ये है कि एक लंबा समय, अपना लंबा जीवन अच्छे से गुजार सकता है, जी सकता है,
3: लेकिन वो दवाइयों के ही
4: दवाइयों के हैं। अगर एक महीने भी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो फिर वो इसी तरह का होने लगता है, वो उल्टी होना, कमजोरी होना शरीर में, भूख ना लगना, इस तरह का दिक्कतें होने लगती हैं।
3: अच्छा मैडम, कई बार नशे की लत के कारण या आर्थिक समस्याओं के चलते या कई सारे ऐसे कारण होते हैं जो HIV संक्रमित व्यक्ति हैं वो दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं, तो कितना ज़रूरी है दवाइयाँ लेना, और यदि दवाइयाँ छोड़ दी जाएँ तो क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं व्यक्ति की सेहत के लिए?
4: मैम, दवाइयाँ लेना तो इतना ज़रूरी है जैसे कि हम सांस लेते हैं, इस तरह की दवाइयाँ मतलब लेनी बहुत ज़रूरी, लाइफ टाइम दवाइयाँ लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे।
3: जी जी,
4: दवाइयाँ नहीं लेंगे तो फिर अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि कितना वो होता
3: कहीं
4: है
3: ना, कहीं हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम वो कमजोर हो जाएगा और
4: सिस्टम है बीमारियां घेर लेंगी, बीमारियां हमें घेर लेती हैं चारों तरफ से, तो फिर जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ, शरीर का बीमारियों ने घेरा
3: जी,
4: तो फिर दिक्कतें होती हैं हमें आगे जीवन जीने के लिए।
3: युवा वर्ग को आप खास तौर से क्या कहना चाहेंगी कि एक जो युवा वर्ग एक अपने दोस्त से ही बातचीत करता है तो वो खुद HIV से कैसे अपना बचाव करे, कैसे समझदारी रखे और अपने युवा साथी को कैसे वो समझाए?
4: सबसे मेन पॉइंट इसका ये रहता है कि HIV के बारे में अगर हम किसी को जानकारी दे रहे हैं तो उनको सही जानकारी दें। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम उसे जानकारी ना दें। कभी कभी ये भी होता है ना कि गलत जानकारी भी बहुत बड़ा खतरनाक कोई हमारे सामने स्थिति ला के खड़ा कर देती है।
3: कहीं ना कहीं देखिए, जानकारियों का अभाव जो है अफवाहों को भी फैलाता है, तो अफवाहें अगर दिमाग में घर कर जाएं तो वो एक मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो सही बात आपने बोली कि सही माध्यम से आप जानकारी लें, और अगर जानकारी आपके पास उचित नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना बांटें,
4: क्योंकि गलत जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। हम तो गलत हैं, पता चल रहा है कि सामने वाले को भी हमने अगर गलत जानकारी दे दी है तो वो सही होते हुए भी फिर वो गलत हो जाता है।
3: अच्छा मैडम, आज के परिवेश की अगर हम बात करें जिसमें हम हर बात जो है वो अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन ये जो HIV/AIDS एक ऐसा विषय है कि बेडरूम की बातें हम लिविंग रूम में कैसे करें, सोचकर हम खुद भी कतरा जाते हैं इस विषय पर बच्चों से बात करने से। और आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर के माहौल के कारण कई सारे सवाल लेकर आते हैं, उनके मन में कई सारी जिज्ञासाएं पनपती हैं, एक एज के बाद में उनका शरीर भी जो है वो हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि बच्चा जो है वो 9वीं-10वीं में आ जाए तो क्या उससे HIV/AIDS के बारे में बात करनी चाहिए?
4: बिल्कुल मैम, करनी चाहिए।
3: और करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए
4: मैम? क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों से, और मैं तो ये कहूँगी मैं कि अपने पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को सही जानकारी नहीं देंगे घर में,
3: जी जी,
4: तब तक कि वो कहते ना मन भटकता है,
3: जी जी,
4: क्योंकि बच्चे जहाँ 10-15 साल 12-13 साल के होते हैं तो एक मन में नए नए प्रश्न उठते हैं कि भाई ये कैसे से कैसे होता है, जहाँ सुन लिया उनने कि HIV क्या है तो वो सोचेंगे कि HIV क्या है, कैसे होता है। जब तक कि हम बच्चों के पेरेंट्स सही जानकारी उन्हें नहीं देंगे तो वो कहीं पर भी एक गलत रास्ता भी अपना लेंगे।
3: जी जी जी। अच्छा मैडम, ऐसा होता भी अक्सर कि जिस विषय को हम बच्चों से छुपाते हैं बच्चे उसी विषय को ज्यादा पूछते हैं। जी जी,
4: और वे पूछते भी हैं मैम, और कहीं कहीं बच्चे सही भी हैं।
3: जी जी,
4: क्योंकि बच्चे हमसे सही चीज पूछ रहे हैं, अगर आपने वही चीज घुमा फिरा दी और उसे सही आंसर नहीं दिया फिर वो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाएगा,
3: आपने ही भटकाने की शुरुआत आपने कर दी,
4: क्योंकि हमें पता है कि हमने ही बच्चे को भटका दिया है। इसलिए सही उसे जानकारी दीजिए, HIV/AIDS कोई बुरी चीज नहीं है, इसके बारे में जितना भी खुल के आप अपने बच्चे को बताएंगे तो उसे उतने अच्छे से जानकारी मिलेगी, ताकि अगर वो कहीं पे भटकना भी चाह रहा होगा
3: तो समझ जाएगा।
4: जी जी।
3: मैडम, जैसे कई बार पता चलता है समाज में HIV संक्रमित व्यक्ति है कोई भी, या माता पिता से किसी बच्चे में, आपने जैसे कहा कि माँ से बच्चे में बीमारी आ जाती है, तो बच्चा अगर संक्रमित है पता चल जाता है स्कूलों में तो उसे भेदभाव होने लगता है, कई बार वो छुआछूत जैसी स्थितियों का भी सामना करता है, कई सारी समस्याएं चुनौतियां उसके सामने आती हैं, तो इस तरह की जो एक भ्रांति है कि एड्स जो है वो छुआछूत से फैलता है, क्या ये सही है, या फिर बच्चे के प्रति जो व्यवहार समाज के द्वारा हो रहा है ये सही है क्या?
4: नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भेदभाव कभी भी किसी से नहीं रखना चाहिए।
3: जी जी,
4: क्योंकि ये छुआछूत से नहीं होना, मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि ये छुआछूत से नहीं होता है, ना छूने से होता है, ना साथ में खाना खाने से होता है, ना बात करने से होता है, ना आप एक टॉवल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी नहीं हो रहा है। ओनली इसके चार कारण हैं जो मैं बता चुकी हूँ, उससे ही होना है, बाकी ऐसे नहीं होता है। स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें गोपनीयता रखी जाती हैं।
3: मैडम एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि HIV का कोई टोल फ्री नंबर है जिस पर व्यक्ति जानकारी ले सकता है?
4: हाँ जी मैम बिल्कुल, इसका अगर हमें कहीं से सही जानकारी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स के द्वारा भी नहीं मिल रही है और स्कूलों में भी नहीं मिल रही है, हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं मिल रही है, तो इसका टोल फ्री नंबर है 1097
3: जी।
4: ये नंबर आप डायल करेंगे तो इस पे आपको सारी जानकारी HIV/AIDS के बारे में मिलेगी।
3: अच्छा चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी अब आप?
4: मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 2025 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार
3: जी,
4: क्योंकि हम जहाँ अपने स्वास्थ्य के लिए जानकारी रखेंगे, जागरूक रहेंगे
3: जी,
4: तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दूसरा भी सभी लोग स्वस्थ रहेंगे
3: जी जी,
4: और जानकारी ही जागरूकता है
3: जी जी,
4: यही कहूंगी। हम जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे
3: जी
4: तो
3: जी,
4: हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सभी लोगों को अपना 6 माह में HIV टेस्ट तो कराना चाहिए, क्योंकि मैं भी कराती रहती हूँ
3: जी जी,
4: मैं भी कराती हूँ क्योंकि
3: सुरक्षा की दृष्टि से,
4: सुरक्षा की दृष्टि से
3: जी जी।
4: मैम उन लोगों के लिए तो HIV टेस्ट हर 6 महीने में बहुत कराना जरूरी है, जो लोग संदिग्ध ये गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं
3: जी जी जी,
4: क्योंकि वो नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा, वो पता चल रहा है कि हमें है तो हमसे चेन बाय चेन जुड़ते जाते हैं
3: जी जी जी,
4: अगर एक को हमने किया तो वो एक कहीं और जा रहा है, ऐसे चेन बाय चेन जुड़ता जाता है। अगर हम एक ही सुरक्षित से तरीके से ये काम करेंगे तो फिर 10 और हमसे इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे।
3: तो श्रोताओं हमें उम्मीद है कि HIV/AIDS के प्रति आप स्वयं भी सतर्क और जागरूक रहेंगे और अपने परिजनों में अपने से छोटे बड़ों से खुलकर प्रश्न करेंगे। जानकारी होना दुर्घटना होने से बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं घर में माता पिता भी बच्चे की समझ और आयु को ध्यान में रखकर बातचीत करें। कई बार बच्चा जो है वो घर में ही बात करना चाहता है लेकिन घर का माहौल या परिजनों के डर से बात नहीं कर पाता, जिसका परिणाम ये होता है कि वो बाहर से विषय की जानकारी खोजता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर उसे जो जानकारी मिल रही है वो सही ही हो या जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो व्यक्ति सही हो। कई बार गलत लोगों के संपर्क से बच्चे गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, घर का माहौल सही रखें। आज HIV/AIDS बीमारी के लक्षण, सतर्कता और सावधानी की बहुत ही उपयोगी जानकारियां हमें मिली हमारी आज की अतिथि महोदय से। संध्या सक्सेना मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई।
4: थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो श्रोताओं ये था हमारा आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हमारी आज की विशेषज्ञ थी काउंसलर सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती संध्या सक्सेना। श्रोताओं इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश वाथम का और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। तो अब हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, ये रेडियो आजाद हिंद है देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: सन 1902 के अंतिम भाग में जापान से दो विख्यात विद्वान बेलूड़ मठ में पधारे। जापान में एक धर्म महासभा बुलाने का संकल्प लेकर वे विशेष रूप से स्वामी जी से ही मिलने के लिए आए थे। जापान के एक बौद्ध मठ के अन्यतम नायक ओडा ने स्वामी जी से कहा,
1: आप जैसे विख्यात व्यक्ति इस कार्य में सहायक हो तो हमारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। जापान में इस समय धर्म का संस्कार विशेष आवश्यक हो गया है। आप जैसे शक्तिशाली आचार्य के अलावा ये कार्य और किसके द्वारा संपन्न हो सकेगा।
2: इन महोदय के साथ ही डॉक्टर ओकाकुरा भी जापान की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर स्वामी जी से अनुरोध करने लगे। जड़ सभ्यता की दृष्टि से तेजी के साथ उन्नति करने वाले जापान में धर्म भाव की कमी की बात सुनकर स्वामी जी के हृदय में जोश भराया। शारीरिक अस्वस्थता को भूलकर वे जापान जाने के लिए तैयार हुए।
0: स्वामी जी के अलौकिक चरित्र और उदारता से मुग्ध होकर वे लोग मठ में ही निवास करने लगे। स्वामी जी प्रतिदिन भगवान बुद्ध देव और बौद्ध धर्म के संबंध में इनके साथ चर्चा किया करते थे। पाश्चात्य पंडितों ने बौद्ध दर्शन को हिंदू दर्शन के नितांत विपरीत बताकर जो मत प्रकट किए हैं, स्वामी जी उनका खंडन करके दिखा देते थे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की विद्रोही संतान होने पर भी बुद्ध देव के अधिकांश उपदेशों के भाव और उपनिषदों का काफी मेल है। फलतः उपनिषद के ज्ञान कांड पर ही बौद्ध दर्शन की नींव है। जापानी पंडितगण स्वामी जी के बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों को सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने देखा कि इस सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली सन्यासी ने बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि स्वामी जी को बौद्ध श्रमण कहें या हिंदू सन्यासी।
2: कुछ दिनों बाद

0: में जाकर कुछ दिन विश्राम करेंगे। स्वामी जी के परिव्राजक जीवन का यही अंतिम भ्रमण था।
1: बौद्ध गया मठ के महंत महाराज स्वामी जी की प्रसिद्धि की बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। आज उन्हें अप्रत्याशित रूप से अतिथि के रूप में प्राप्त कर महंत जी के आनंद की सीमा न रही। स्वामी जी को किसी प्रकार असुविधा न होने पाए, इसलिए स्वयं उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन ध्यान के आनंद में बिताकर स्वामी जी ने वाराणसी की ओर यात्रा प्रारंभ की।
0: स्वामी जी के उपदेशों, शिक्षा तथा उत्साह द्वारा उद्बुद्ध होकर कुछ युवक एकत्र होकर अनाथ, रोगग्रस्त, असहाय तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अग्रसर हुए। एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे राजपथ तथा गंगा घाट से बूढ़े रोगी नर नारियों को उठाकर वहां पर ले जाते और यथा साध्य औषधि, पथ्य, सेवा आदि द्वारा उनके कष्ट को कम करते थे। श्रद्धा व निष्ठा के साथ दीन दुखियों को नारायण मानकर उनकी निस्वार्थ सेवा में आत्मसर्ग करने वाले युवकों की ये दृढ़ता देखकर स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ।
1: ये देखकर कि उनके आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा है, वे कभी कभी दुखी हो जाते थे। परंतु आज इन थोड़े से युवकों का कार्य देखकर उनका वो दुख दूर हुआ। वे गर्व और आनंद से अपने मानस पुत्रों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगे। उत्साह देते हुए बोले,
2: वत्स, तुम लोगों ने सत्य मार्ग जान लिया है। मेरा प्रेम तथा आशीर्वाद सदा तुम्हारा कल्याण करे। साहस के साथ अग्रसर होते जाओ। अपने अभावों के लिए निराश न होना, धन आएगा। तुम्हारी छोटी सी संस्था के नींव पर भविष्य में जो कुछ होगा वो तुम्हारी वर्तमान प्रियतम कल्पनाओं को भी लांघ जाएगा।
0: स्वामी जी ने इस नवीन रामकृष्ण सेवाश्रम की प्रथम रिपोर्ट के साथ जन साधारण के समीप आर्थिक सहायता की प्रार्थना कर आवेदन पत्र लिखा। स्वामी जी से उत्साह और आशीर्वाद प्राप्त कर युवकों का कर्मोत्साह 100 गुना बढ़ गया। काशी धाम में सेवा धर्म के सुवर्ण सौध की नींव चिरकाल के लिए स्थापित हो गई। उसके बाद कितनी बाधाएं, विपत्तियां, असुविधाएं आईं, पर उन सब का सामना कर वो सेवाश्रम आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया है।
1: श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव को निकट जानकर स्वामी जी काशी से बेलूर मठ लौट आए। काशी की जलवायु से स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए थे, परंतु मठ में आकर रोग इतना बढ़ गया कि वे शैया ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्णोत्सव के दिन आनंद पर एक विषाद की छाया दिखने लगी। अनेक व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आए थे, पर मिलने का कोई उपाय न देख वे निराश हो गए। स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि वे जनता के सम्मुख आएंगे, परंतु प्रातःकाल 2-4 व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करके उन्हें इतनी थकावट महसूस होने लगी कि और अधिक बाहर रहने का साहस बिना कर सके।
0: मठ का विशाल प्रांगण जनपूर्ण था। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कहीं प्रसाद बांटा जा रहा है। इस आनंदोत्सव में स्वामी जी को सम्मिलित होने में असमर्थ देख अनेक व्यक्ति दुखी हुए। उस दिन श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के पास बैठे थे। स्वामी जी की धीरे धीरे बढ़ती हुई रोग यंत्रणा तथा शारीरिक अस्वस्थता को देख उनका मुख म्लान हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वे आंसू बहाने लगे। स्वामी जी ने शिष्य का मनोभाव समझकर कहा,
2: क्या सोच रहे हो? शरीर पैदा हुआ है, नष्ट भी होगा। अगर मैं तुम लोगों में अपने भावों को थोड़ा भी प्रविष्ट कराने में समर्थ हो सका तभी जानूंगा कि मेरा शरीर धारण सार्थक हुआ है।
1: थोड़ी देर बाद भगिनी निवेदिता ने कुछ अंग्रेज महिलाओं के साथ जाकर गुरु दर्शन के बाद थोड़ी ही देर में विदा ली। स्वामी जी को कष्ट होगा ये सोचकर वे अधिक देर तक न ठहरी। दिन के 2:30 बजे के बाद शरद बाबू एक बार उत्सव प्रांगण का परिदर्शन कराए और आकर स्वामी जी को उत्सव की बातें बताने लगे। शिष्य के मुंह से 50,000 लोगों के एकत्रित होने का समाचार सुन उन्हें देखने के लिए स्वामी जी बड़े कष्ट से धीरे से खड़े हुए और उस जन समुदाय को देखा, कहा,
2: अधिक से अधिक 30,000।
1: अधिक देर तक खड़े रहना उनके लिए असंभव था। थोड़ी देर बाद वे फिर लेट गए।
0: इस दिन उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रणाली से उत्सव चल रहा है उसे बदलकर 4-5 दिनों के उत्सव की व्यवस्था करना अच्छा होगा। प्रथम दिन शास्त्र पाठ और व्याख्या, दूसरे दिन वेदांत का विवाद और मीमांसा, तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सभा, चौथे दिन श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श व मार्ग के संबंध में भाषण व चर्चा, और अंतिम दिन प्रसाद वितरण व दरिद्र नारायण सेवा।
1: उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे रामकृष्ण देव के जीवन संबंधी विचार सभी शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में प्रविष्ट हो। महोत्सव का अनुष्ठान यदि उनके विचारों के प्रचार के केंद्र के रूप में परिवर्तित न हो तो ऐसा समझना निरर्थक है कि कुछ लोग मिलकर केवल हल्ला गुल्ला करने से ही श्री रामकृष्ण देव के विचारों का प्रचार कर लेंगे। सामयिक धर्म बोध की उत्तेजना में कीर्तन नृत्य आदि द्वारा विशेष कुछ न होगा।
0: लगातार औषधि सेवन तथा नियम कानून के नियंत्रण में रहते हुए स्वामी जी विरक्त हो गए। उन्होंने सुना कि उनके गुरु भाई गण गंभीर दार्शनिक तत्व आदि की आलोचना होने की आशंका से अनेक व्यक्तियों को उनके साथ साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं। अनेक व्यक्ति प्रतिदिन निराश होकर दुखी मन से मठ से लौट जाते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु भाइयों को बुलाकर कहा,
2: देखो इस देह को रखकर और क्या होगा, पर कल्याण में इसका पतन हो जाए तो अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण देव ने असहनीय रोग यंत्रणा को सहन करके भी जीवन के अंतिम दिन तक परहित के लिए उपदेश दिया था, मुझे भी क्या ऐसा ही करना उचित नहीं। तृण जैसी यह मामूली देह रहे या जाए मैं इसकी परवाह नहीं करता। सत्य के अनुसंधानकारी व्यक्तियों के साथ विमर्श करने में मुझे जो आनंद होता है इसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे। अपने स्वदेशवासी भाइयों की आत्मा की छुपी हुई शक्ति को जागृत करने में सहायता करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करने से भी मैं विचलित नहीं होऊंगा।
1: इससे पूर्व स्वामी जी जब कभी कुछ आराम अनुभव करते थे उसी समय कोई ना कोई काम आरंभ कर देते थे। बिना काम किए बैठे रहना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। मार्च मास के प्रथम भाग में जीवन के अंतिम दिन तक इन 4 महीनों में शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उन्होंने नाना प्रकार से जो असाधारण परिश्रम किया था वो वास्तव में आश्चर्य है। जिस समय वे एकाग्र चित से किसी कार्य में युक्त होते थे उस समय उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखने का संकल्प भी लिया था। इस कार्य का प्रारंभ भी हुआ किंतु खेद है एक भी पुस्तक पूर्ण न हुई।
0: स्वामी जी आडंबर पूर्ण क्रियाकलाप के विशेष विरोधी थे। मठ की नित्य नैमित्तिक ठाकुर पूजा यथा संभव सादगी के साथ समाप्त कर वे ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को अधिकांश समय साधना शास्त्र चर्चा वेद पाठ आदि कार्यों में ही बिताने का निर्देश देते थे। मठ के प्रतिदिन की कार्यावली को स्थिर रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक कार्य का समय निर्दिष्ट कर दिया था। मठ के प्रत्येक व्यक्ति पर वे तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। जानबूझकर यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता तो वे उस पर कठोर भाषा में भर्त्सना भी करते थे।
1: रात्रि के 3 बजे शैया त्याग करके स्वामी जी ध्यान मग्न होते थे। ध्यान के कमरे में उनके लिए एक अलग आसन रखा रहता था। दूसरे सन्यासी व ब्रह्मचारी गण उन्हें घेर कर बैठते थे। जब तक स्वामी जी न उठते तब तक किसी को उठने का अधिकार न था और आवश्यकता भी नहीं होती थी। महापुरुषों की पवित्र चिंताधारा के प्रभाव से प्रत्येक का मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होता था। एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति से चित्त भर जाता था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक दिन कहा था,
3: नरेन के साथ ध्यान करने बैठने पर जैसा ध्यान जमता है वैसा मैं जब अकेला बैठता हूँ तब नहीं जमता।
0: कभी कभी स्वामी जी 2 घंटे से अधिक समय तक ध्यानासन पर बैठे रहते थे। उसके बाद शिव शिव कहते कहते आसन से उठकर श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम कर कोई शिव संगीत गाते गाते नीचे उतर आते थे और प्रांगण में टहलते थे। मुखमंडल पर अपूर्व प्रशांति। विशाल विस्तृत नेत्रों में भाव के आवेग, बेसुध सी दशा में लापरवाही से टहलना आदि देखकर ऐसा लगता था कि मानो वास्तव में वे इस पृथ्वी के मानव नहीं हैं।
1: इसके बाद शास्त्र चर्चा प्रारंभ होती थी। स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहकर शिष्यों का विचार करते और जटिल स्थानों की स्वयं मीमांसा करते। प्रातःकाल उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि

0: संध्या आरती के शंख घंटा बजने के साथ ही साथ सब लोग ध्यान गृह में एकत्र होते थे। ध्यान के समय पर यदि कोई अनुपस्थित रहता, स्वामी जी उसकी भर्त्सना करते थे।
1: कोई भी ब्रह्मचारी शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से

0: वह स्नेह परायण थे, दूसरी ओर उसी प्रकार कठोर न्याय परायण तथा निर्मम थे। कितना ही प्रिय पात्र क्यों ना हो, उनकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी वे क्षमा नहीं करते थे। वे जानते थे उदारता व क्षमा की अधिकता होने पर भविष्य में मठ के आदर्श की रक्षा करना असंभव हो जाएगा।
1: वास्तव में इस समय यश मान पद आदि सभी बातें संपूर्ण रूप से भूलकर उन्होंने अपनी सारी शक्ति मनुष्य गठन के कार्य में नियुक्त कर दी। इस प्रकार अप्रैल और मई के माह व्यतीत हुए। भारत तथा बाहरी देशों में रामकृष्ण मिशन के प्रचारक सन्यासीगण बड़े उत्साह पूर्वक प्रचार कार्य में नियुक्त थे। स्वामी जी के नवीन कर्मोत्साह को देख कोई न समझ सका कि वे महायात्रा की तैयारी में हैं।
0: जून मास के प्रथम भाग से ही स्वामी जी मठ तथा रामकृष्ण मिशन संबंधी बातों में संपूर्ण उदासीनता प्रकट करने लगे। किसी भी विषय में अब वे अपना मतामत व्यक्त न करते थे। कभी कभी किसी कार्य में उनकी सलाह पूछने पर वे विरक्ति के साथ उन्हें स्वयं तय कर लेने का आदेश देते थे। आचार्य, नेता, गुरु, शिक्षादाता आदि उपाधियों को एक एक करके छोड़ वे अधिकांश समय ध्यानानंद में ही डूबे रहते थे। ध्यान की आकांक्षा को अधिक से अधिक बढ़ते देख उनके गुरु भाई गण चिंतित हुए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वो जिस दिन अपने को पहचान सकेगा उस दिन फिर उसका शरीर ना रहेगा। यही बात बार बार सभी के मन में आने लगी।
1: सभी समझ गए कि अब किसी भी पल स्वामी जी देह त्याग कर सकते हैं, परंतु इस समय उनके शरीर से रोग के सभी लक्षण दूर हो गए थे। चिंतित व दुखी गुरु भाइयों के साथ हास्य खेल आदि करते हुए वे सदा अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाए रखते थे। वे वास्तव में देह त्याग करेंगे, कोई इस बात को जानकर भी समझ नहीं सकता था।
0: देह त्याग के एक सप्ताह पूर्व आचार्य देव ने स्वामी शुद्धानंद जी को एक पंचांग लाने का निर्देश दिया। पंचांग आ जाने पर उन्होंने स्वयं उसे पढ़कर अपने कमरे में रख दिया। बीच बीच में वे गंभीर ध्यान के साथ उसे देखते थे। उस समय उनके मुख का भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी विशेष कार्य के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं, परंतु किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी का देहांत होने के बाद उनके गुरु भाईगण समझ सके कि स्वामी के बारंबार पंचांग देखने का क्या मतलब था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी देह त्याग से कुछ दिन पूर्व एक शिष्य को पंचांग देखने के लिए बुलाया था। उसके बाद कुछ दिनों की विशेष बातें जान लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बस अब और आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने भी गुरुदेव की पद्धति का अनुसरण करते हुए महायात्रा का दिन निश्चित कर लिया था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी को पंचांग देखते समय किसी को थोड़ा भी इस बात का स्मरण न हुआ।

0: देह त्याग से 3 दिन पूर्व स्वामी जी मठ के विस्तृत मैदान में घूमते घूमते उस स्थान को उंगली के इशारे से दिखाते हुए सहसा बोल उठे,
1: मेरा देहांत होने पर उस स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना।
0: साथ में जो लोग थे उन्होंने चुपचाप सुन लिया, कोई प्रश्न करने की बात किसी के मन में भी ना आई।
2: बुधवार का दिन एकादशी थी। स्वामी जी ने उस दिन उपवास किया था। सुबह के समय उन्होंने शिष्यों को स्वयं परोसकर भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भात के साथ पकाए हुए कटहल के बीज तथा आलू और दूध, यही भोजन की सामग्री थी। भोजन के समय स्वामी हास्य विनोद से सभी को हंसाने लगे।
0: स्वामी जी को प्रफुल्लित देखकर शिष्यगण बहुत ही खुश हुए। स्वामी जी जिस समय बालक की तरह हंसी मजाक करते थे और ठहाके लगाते थे, सभी के साथ सरल भाव से मिलते थे और उस समय उनके सामने किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता था। परंतु जब वे गंभीर होकर बैठे रहते, उस समय उनके पास में जाकर खड़े होने में भी भय होता था। आहार के बाद सब लोगों के उठ जाने पर स्वामी जी उनके हाथ धुलाने के लिए लोटे से स्वयं जल देने लगे और आचमन के बाद तौलिए से उनके मुंह और हाथों को पोंछने लगे।
3: ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ये सब काम तो मुझे करना चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपसे सेवा नहीं ले सकता।
1: क्यों, क्या ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे?
0: शिष्यों ने मन ही मन में सोचा वो तो उनका अंतिम दिन था, पर कोई ये बात कह नहीं पाया।
2: सन 1902 ईस्वी 4 जुलाई तड़के ही शैया त्याग कर स्वामी जी आज सभी के साथ एकत्र ध्यान करने न गए। अतीत की बातें चलाकर वे नाना प्रकार से वार्तालाप करने लगे। दूसरे दिन अमावस्या और शनिवार था, इसलिए मठ में उन्होंने श्री काली पूजा करने की इच्छा प्रकट की। पूजा के आयोजन के संबंध में वार्तालाप हो रहा था। इसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिता शक्ति साधक तंत्र शास्त्र में पंडित ईशान चंद्र भट्टाचार्य महाशय मठ में पधारे। उन्हें देख स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए।
0: भट्टाचार्य महाशय के साथ परामर्श करके

0: तने गाना गुनगुनाते हुए वे टहलने लगे।
1: स्वामी प्रेमानंद जी पास ही खड़े थे, उन्होंने सुना। स्वामी जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं,
2: यदि इस समय कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो समझ सकता था कि विवेकानंद ने क्या किया है, परंतु समय पर अवश्य अनेक विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे।
0: सूक्ष्म अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष स्वामी प्रेमानंद देखकर भी देख न सके, समझकर भी न समझ सके कि उनके प्यारे गुरु भाई विवेकानंद ने आज देह त्याग का संकल्प ले लिया।

0: नियमित समय पर भोजन की घंटी होते ही स्वामी जी ठाकुर घर के नीचे एक बरामदे में सभी के साथ मिलकर भोजन करने बैठे। स्वामी जी अस्वस्थ हो जाने के बाद सभी के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। आज सहसा उस नियम का व्यतिक्रम होते देखकर किसी के मन में कोई संदेह ना हुआ, बल्कि सहसा अप्रत्याशित भाव से स्वामी जी के साथ एकत्र होकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सभी बड़े आनंदित हुए। स्वामी जी अस्वाभाविक आग्रह के साथ भोजन करने लगे और गुरु भाइयों के साथ हास्यालाप में रत हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे दिनों की अपेक्षा आज उनका शरीर अधिक स्वस्थ लग रहा है।
1: भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके ही स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को संस्कृत क्लास में बुला लिया। अन्य दिन 2:30-3 बजे के समय पाठ शुरू होता था, आज 1:15 पर ही पाठ प्रारंभ हुआ। लघु कौमुदी व्याकरण का पाठ चल रहा था। विषय नीरस होने पर भी लगातार 3 घंटे में किसी ने किसी प्रकार विरक्ति का अनुभव नहीं किया। कभी हास्यपूर्ण छोटी छोटी कहानियां कहकर, कभी सूत्रों की नाना प्रकार की आकर्षक व्याख्या करते हुए स्वामी जी कठिन कठिन स्थानों को भी आकर्षक बनाने लगे। एक बार बचपन में स्वामी जी ने अपने मित्र स्वर्गीय दाशरथी सान्याल को एक रात में ही इंग्लैंड का सारा इतिहास सिखा दिया था। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर ऐसा दिखा कि स्वामी जी थक से गए हैं।
0: संध्या आरती का समय, ब्रह्मचारी गण एक एक करके स्वामी जी को प्रणाम करके ठाकुर घर की ओर चले। स्वामी जी धीरे धीरे दुमंजिले पर अपने कमरे में पधारे। स्वामी जी ने उन्हें अपने कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल देने का आदेश दिया। काफी देर बाद मानो एकाएक होश संभाल कर विवेकानंद मुड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मचारी को बाहर बैठकर जप करने का निर्देश देकर वे स्वयं जपमाला हाथ में लिए पद्मासन में बैठ गए। 1 घंटे बाद आसन से उठकर स्वामी जी कमरे में बिस्तर पे लेट गए और ब्रह्मचारी जी को बुलाकर उन्होंने पंखा चालू करने के लिए कहा।
1: जपमाला हाथ में लिए सोए हुए महापुरुष की देह निस्पंद और स्थिर है। उस समय करीब रात्रि के 9 बजे का समय था। इसी समय उनका हाथ कांप उठा और साथ ही वे निद्रित शिशु की तरह अस्पष्ट स्वर से थोड़ा क्रंदन कर उठे। 2 गंभीर दीर्घ निश्वास के साथ ही साथ उनका मस्तक तकिए से हिल गया। स्वामी को इस स्थिति में देख ब्रह्मचारी जी ये न समझ सके कि क्या करना चाहिए। वे घबरा गए और नीचे जाकर दूसरे सन्यासियों को ये समाचार सुनाया। उन्होंने जल्दी ही आकर देखा कि योगीवर अनंत निद्रा में शयन कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि के अंधकार पूर्ण आड़ में जगन माता ने अपने व्यग्र बाहुओं को प्रसारित कर रण क्लांत वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया।
0: जो कुछ आँखों के सामने था वो आँखों से ओझल हो गया, किंतु किस उद्देश्य से संसार रूपी रंगमंच पर किसने ये अभिनय किया? कौन है विवेकानंद? कौन है भगवान श्री राम कृष्ण? मृत्यु की यवनिका द्वारा नेपथ्य भूमि आवृत्त है, काल स्रोत में कहां जाकर ये अभिनय समाप्त होगा? मानव का शुद्र ज्ञान, क्या भूत क्या भविष्य, किसी अंत तक पहुंच नहीं सकता। किंतु आज जो कुछ है कल वो नहीं रहता, बहता रहता है केवल अनंत काल स्रोत। गरज उठती हैं बीच बीच में केवल ऊंची ऊंची लहरें।
1: बंगाल के जीवन स्रोत में राजा राम मोहन से लेकर तरंगों के उत्थान और पतन का हमने निरीक्षण किया है। शताब्दी के अंत तथा प्रथम भाग में फिर ये एक तरंग का अभिघात। दक्षिणेश्वर में गंगा जी के पूर्वी तट पर एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई। बेलोड़ में पश्चिम तट पर इसका विलय हुआ।
0: अमेरिका के स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को उनका महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या ये सचमुच का ही चले जाना, चिर निर्वाण, पृथ्वी के लोगों के साथ चिर विच्छेद? न, उनके जीवन और संदेश से तो ऐसा नहीं लगता। एक बार उन्होंने कहा था,
2: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य से कभी विरत नहीं होऊंगा जब तक कि संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
1: शायद स्वयं को ही लक्ष्य करके वे 4 जुलाई नामक कविता लिख गए थे।
2: वक्त वो हासिल निकाला काम का, प्यार का, पूजा का, जीवन दान का, हाथ उठाया संवर कर पूरा किया, फिर तुम ही ने स्वस्ति की बांधी कमर, जनगणों पर मुक्ति की डाली किरण, देव चलते ही चलो बेरोक टोक, विश्व को दोपहर न जब तक घेर ले, कर तुम्हारा हर जमी जब तक न दे, स्त्री पुरुष जब तक न देखें चाव से, बेड़ियां उनकी कटी उल्लास की जानई, जब तक न समझें आ गई, ओम शांति ओम शांति।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आज़ाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आज़ाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है अत्यष्टि।
2: इंद्राय हि द्यौरसुरो अनम्नतेन्द्राय महि पृथिवी वरी मभिर द्युम्नसाता वरी मभि इंद्रम विश्वे सजोषसो देवासो दधिरे पुरह इंद्राय विश्वा सवनानि मानुषा रातानि संतु मानुषा। विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी द्युलोक ने अपने संसाधनों से इंद्र देव का सहयोग किया। उत्साहित देवगणों ने सहमति पूर्वक इंद्रदेव को अग्रणी रूप से प्रतिष्ठित किया। सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर हवि भाग अर्पित करते हैं। मनुष्यों द्वारा दी गई सोमयुक्त आहुतियां इंद्रदेव के लिए समर्पित हों। विश्वेषु हित्वा सवनेषु तुञ्जते समानमेकम् वृषमणियवः पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक्तम् त्वा नावम् न पर्षणिम् शूषस्य धुरि धीमहि इन्द्रम् न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्र मायवः। हे इंद्रदेव, सभी सोमयागों में विभिन्न उद्देश्यों वाले याजक आपको हविष्यान्न प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप में आहुतियां देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तुति करने वाले स्तोत्रों द्वारा आपका ध्यान करते हैं।
3: विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र शारदी रवातिरः सासहानो अवातिरः शासस्तमिन्द्र मर्त्य मयज्युम शवसस्पते मही ममुष्णाः पृथ्वीमिमा अपो मंदसान इमा अपह। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को पददलित किए जाने पर जब आपने ही उनकी शरतकालीन आवासीय नगरियों को विध्वंस किया, तब प्रजाजनों में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जलों पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। आदित्ये अस्य वीर्यस्य चक्रिरन् मदेषु वृषन् नुषिजो यदा विथ सखीयतो यदा विथ चकर्थ कारमेभ्यः प्रतनासु प्रवन्तवे ते अन्यामन्याम् नद्य सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमानों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया। आपने ही धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्नादि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध कराया। उतो नो अस्या उषसो जुषेत हियर कस्य बोधि हविशो हवीमभि स्वर्षाता हवीमभि यदिंद्र हन्तवे मृधो वृषा वज्रंचिकेतसि आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभातकालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चारित स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जानें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रु नाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्तोत्रों और नए ज्ञानी स्तोताओं की प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। त्वं तमिंद्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्तं तुविजातमर्त्यं वज्रेण शूरमर्त्यं जहि यो नो अघायति शृणुष्व शुश्रवस्तमः रिष्टं न यामन्नप भूतु दुर्मतिर् विश्वाप भूतु दुर्मतिः। हे अतिविख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार डालें। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु आपके वज्रास्त्र के प्रहार से खंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
4: श्रोताओं, वाहन चोरी की घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी, जहां की पुलिस बहुत ही कुशल मानी जाती है, ये घटनाएं कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अमेरिका में तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कारें चोरी हो जाती हैं और इंग्लैंड में हर 5 मिनट में एक कार चोरों के हत्थे चढ़ जाती है। चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि वे सभी सिक्योरिटी डिवाइस को धत्ता बता करके कार उड़ा ले जाते हैं। तो लीजिए, हमारा आज का यह नाटक हाजिर है एक ऐसी ही कार चोरी की काल्पनिक घटना पर, जिसमें चोरों व पुलिस के बीच लगातार आंख मिचोली होती रहती है। इसमें आय स्थानों के नाम और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं तथा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है जो भविष्य में विकसित हो सकती है और कहीं जगह तो हो भी गई ही है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपको सावधान करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हास्य नाटक कार की चोरी।

0: लगता है कि जहां। अरे यार कौन सा सेंट लगाया है आज तुमने, बड़ी महक रही हो।
1: छोड़ो ना सेंट वेंट तुम भी
0: है?
1: अरे अभी देखो दुकान देखते चलते हैं। हाँ, यहाँ रोक दो गाड़ी।
0: अरे यहाँ कहाँ
1: रोको ना, वो देखो कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
0: एक मिनट,
1: कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
0: अरे गाड़ी भी तो लगानी है भाई, कि तुम कहो तो कार समेत दुकान में घुस जाए।
1: अरे इसीलिए तो कह रही थी लगाते थे ना दुकान के सामने, जगह थी तो। अब इतनी दूर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता। पेंसिल हिल पहनती हूँ ना।
0: अरे हाँ इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हिल। अरे यार तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो, चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
1: तो ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार एक मील ले जाकर पार करें, उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आए। घर के काम काज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वो ही बहुत है भाई।
0: कोई शौक वॉक नहीं है मुझे तुम्हारे जॉगिंग वॉगिंग कराने का, कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगे हाथ पकड़ कर टोचर न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
1: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो नहीं संभालनी होती ना
0: जी।
1: हाँ बस लगते हो अपने साथ दौड़ाने मुझे।
0: अरे माफ करो यार, माफ करो भाई, गलती हो गई यार, जो बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कार लगाने के लिए दाएं बाएं थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए यार, टर्निंग वर्निंग करनी होती है, ऊपर से नो पार्किंग जोन था वो। पता चला इधर हम लोग दुकान में घुसे और उधर ट्रैफिक पुलिस आई और ले गई गाड़ी को उठा के।
1: अरे तो पार्किंग में ही खड़ी कर दो ना, पास ही में तो है।
0: अच्छा यार बड़े अच्छे, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बात कि पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी होती हैं।
1: मजाक मत करो।
0: हाँ बताने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: जब देखो तब है ना टोंटी मारते रहते हो मुझे, तुम्हें याद दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
0: नहीं नहीं पर
1: नहीं, सोचते हो सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
0: देखो मैडम बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
1: अच्छा।
0: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
1: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
0: नहीं तो क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता। दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
1: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है। पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
0: अच्छा बताएंगी? नहीं वो वजह मुझे हा?
1: अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
0: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
1: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज बता ही देते हैं तुम्हें।
0: हाँ बताओ ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
1: तो सुनो जी।
0: बताओ जी।
1: एक बात बताओगे
0: जी?
1: बिना भेजा भेजे तुमने मुझसे शादी क्यों की?
0: अरे तुम्हारी खूबसूरती देखकर। अरे बेवकूफ जो बन गया था, क्या जानता था कि बिना भेजे की लड़की
1: क्या?
0: ये तो वही हाल हुआ कि हार्डवेयर तो टिप टॉप है पर सॉफ्टवेयर नदारद। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर और बिना भेजे की लड़की।
1: बहुत सही, पर एक बात और बता दो कृपा करके।
0: वो क्या?
1: अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: क्या मतलब? कुछ रेफरेंस तो दो कि किस किस किस बाबत पूछ रही हो तुम?
1: रेफरेंस? अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि कोई भेजे वाली लड़की क्या तुमसे शादी करती? अरे सुनो जी, अरे कम से कम टिकट तो ले लो स्टैंड वाले से, नहीं तो क्या सबूत रहेगा तुम्हारे पास कि तुमने कार यहाँ खड़ी की थी।
0: अरे सुनो भाई, यार टिकट तो दो।
2: अरे हाँ हम है ना भाई मियाँ, अरे फिकर क्यों करते हैं आप, आपकी गाड़ी जैसी खड़ी है वैसी ही मिलेगी।
0: पर भाई टिकट देने में तुम्हें क्या परेशानी है, कम से कम कोई सबूत तो होना चाहिए हमारे पास कि हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी।
2: अरे सबूत हम है ना खा, वो क्या है ना कि टिकट की कट्टी खत्म हो गई है, प्रिंट में गई है ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: पर आप फिक्र ना करिए बिल्कुल भी, आपकी कार को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा अल्लाह की कसम।
1: सुनो इधर सुनो सुनो, मैं तो कहती हूँ कि कार यहाँ लगाओ ही मत, सामने वाले स्टैंड में चलते हैं ना। अरे सुनो, ये इंसान मुझे ठीक नहीं लगता, बातें लच्छेदार कर रहा है मगर ये है नंबर एक का मक्कार।
0: अरे यार तुम औरतों को भी ना शक करने की बड़ी बुरी बीमारी होती है, किसी पर विश्वास ही नहीं करती। ठीक है ठीक है, सुनो भाई हमें 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, ध्यान रखना हमारी गाड़ी का।
2: अरे जी साहब आप बेफिक्र हो जाइए ना साहब, आपकी गाड़ी की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, अरे मजा लेके कोई स्क्रेच भी आ जाए।
1: सुनो जी तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना।
0: क्या?
1: पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है,
0: क्यों?
1: लग रहा है कि ये।
0: अरे यार काहे खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो, कहीं स्टैंड से भी गाड़ी इधर उधर होती है क्या? इतने दिन से लगा रहा हूँ यहाँ गाड़ी, कभी टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता, अब ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है यार।
1: अच्छा ये सब नियम कायदे फॉर्मेलिटीज लगते हैं तुमको, अरे ऊपर से खुद को बड़ा भारी नॉलेज टैंक मानते हो, जरूरी नहीं कि जो कल नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा, सब दिन जात ना एक समाना।
0: यार तुम औरतें भी ना, अच्छा छोड़ो ये सब, इसी फिक्र में घुलते रहे तो मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी।
1: अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब इतना बोझ लेकर कार तक भी चलो, नहीं मुझसे नहीं उठता इतना भारी थैला, तुम ही उठाओ ना।
0: अरे यार मेरे दोनों हाथ पहले से ही फुल हैं, एक जरा सा थैला नहीं उठाते बनता तुमसे, ऊपर से मार्केटिंग का भूत है कि उतरता ही नहीं है। खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, जरूरत हो चाहे ना हो पर चीज दुकान में टंगी है तो खरीदना तो है आपको, उठाने के लिए एक नौकर तो साथ में है ही आपके।
1: फिर शुरू हो गए ना तुम, आज का दिन ही मेरा खराब है, आज सुबह से ही जैसे लड़ने पर उतारू हो तुम।
0: क्या?
1: ठीक है मत उठाओ, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ।
0: मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, अपना खुद का वजन तो उठा ही नहीं उठता और कहती हो, अरे कभी देखा है अपने आप को? अरे चंपा का फूल थी जब मैं लेके आया था और अब सूरजमुखी का फूल बन चुकी हो।
1: फूल तो है ना कोई कम से कम तुम्हारी तरह बबूल का कांटा तो नहीं है, जो महकता तो बिल्कुल भी नहीं, बस चुपता ही रहता चुपता ही रहता चुपता ही रहता है।
0: अरे गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है क्या?
1: मेरे पास कहाँ दी थी तुमने?
0: अरे वो शायद मैंने तुम्हें अरे वहाँ अंदर क्या देखो यार तुम्हारे पर्स में होगी।
1: अरे मैं वहाँ तक कहाँ गई थी, मैं तो यहीं खड़ी थी ना, तो पार्किंग में गए थे तो।
0: अरे हाँ ये मिल गई।
1: हाँ वही तो।
0: हाँ अरे यार ये पीछे चली गई थी वो। हाँ अरे कार कहाँ चली गई?
1: क्या
0: यहीं तो खड़ी की थी यार। अरे सुनो भाई।
2: हाँ भाई।
0: अरे यार हमारी कार नहीं दिख रही है, इसी जगह खड़ी की थी।
2: अरे हाँ भाई मैं अगर खड़ी की थी तो जरूर होगी, जाएगी कहाँ? अरे ठीक से देखिए देखिए जरा।
0: क्या ठीक से देखूँ? क्या देखूँ ठीक से? अरे यहीं खड़ी की थी यार, बिल्कुल इसी जगह पर। अरे कार कोई कागज का पन्ना है कि इधर उधर उड़ जाएगा?
2: अरे दोहा मैं कब कह रही हूँ कागज का पन्ना है, कार ही थी लेकिन कहीं और खड़ी करी होगी, देख लो जरा।
0: अरे नहीं भैया मैंने बिल्कुल इसी जगह खड़ी की थी।
2: नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं।
0: तो फिर क्या है आपका मतलब?
2: मेरा मतलब है कि कहीं आपने वो सामने वाले

0: चलते हैं पुलिस के पास।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: ये ऐसे नहीं मानेगा।
1: चलो चलो
0: चलो,
2: हाँ जाइए जाइए, देख लेंगे।
3: अरे जमाल, जरा इसको पकड़ और इसकी जरा धुनाई तो लगा रहे। हम्म, ले जा इसको।
4: मैं कम इन सर। सर सुनिए, एक मिनट सर,
3: एक मिनट एक मिनट, आप अभी बैठिए, पहले इनसे निपट लें, फिर आपसे बात करते
4: हैं। अरे सर, हमारा बहुत अर्जेंट मामला है सर।
3: अर्जेंट? तो क्या यहाँ सभी का मामला अर्जेंट रहता है? थाने में कोई शेर करने थोड़े ही आता
4: अरे
3: है।
4: अरे सर, मगर अगर देर हो गई तो शहर से बाहर निकल जाएंगे वो।
3: अरे कौन शहर से बाहर निकल जाएगा? कोई तुम्हारा कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया है क्या?
4: अरे सर, मेरे लिए तो मेरी कार ही बिल्कुल कोहिनूर है। पार्किंग पर से पता नहीं कौन उठा के ले गया। हाँ जी,
5: कार थ्रेफ्ट का मामला है।
4: हाँ जी, जी।
3: कार की उम्र, हुलिया, कोई फोटो वोटो है उसका?
4: हुलिया? ये क्या पूछ रहे हैं सर आप? मेरी बीवी नहीं, कार है वो, कार।
3: अरे भाई, उम्र तो सभी की होती है, चाहे कार हो या बीवी।
2: हाँ, बीवियां अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरा छुपा कर रखती हैं,
3: पर कार के साथ ऐसा नहीं होता। बल्कि हम तो कहेंगे कि कार बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही परचेज की जाती है।
4: क्या कह रहे हो साहब?
3: हाँ, और हुलिया भी उसका जरूर होता है, जैसे रंग, रूप, मेक, मॉडल, कंपनी का नाम वगैरह। और हाँ, सबसे खास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आप बताइए।
4: देखिए देखिए सर, ये लीजिए, ये एप्लीकेशन लिखकर मैं पहले ही लाया हूँ, सारा डिटेल लिखा है इसमें, ये देखिए।
3: ठीक है,
4: रंग रोगन सब है।
3: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगी थी ना गाड़ी में?
4: हाँ सर, और वो क्या कहते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा रखा है सर। हाँ जी,
3: फिर चिंता की कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी पूरी दुनिया में ढूंढ निकालेंगे हम।
4: वेरी गुड सर, वेरी गुड।
3: स्टैंड वाले, इधर आ, इधर आ।
6: जी जी,
3: क्यों बे, ये स्टैंड तेरा ही है क्या?
6: हाँ साहब, ठेकेदार का, लेकिन अपन अपने ही समझते हैं।
3: अच्छा तो बेटा, कैसे निकल गई साहब की कार यहाँ से?
6: कार? अरे हाँ हवलदार साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो इन साहब ने कोई कार वहां नहीं खड़ी करी है हमारे पास, और अगर की थी तो टिकट तो होगा इनके पास।
4: अरे सर सर, ये देखिए, आप झूठ बोल रहा है, ये टिकट मांगा था मैंने मांगा था, और पर इसने बोला कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गया है, और जिम्मेदारी भी ली थी इसने कार की। ये हमारी मैम साहब से पूछो आप।
0: हाँ सर, मेरे सामने की बात है, कह रहा था कि कार को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता यहाँ, और अब जब कार गायब हो गई है तो ये बड़ा स्मार्ट बन रहा है।
6: नहीं साहब, नहीं साहब।
0: हाँ,
6: ये दोनों मियाँ बीबी मुझे खाली पीली में फंसा रहे हैं।
4: क्या कह रहा है?
6: कहीं नो पार्किंग वगैरह में खड़ी कर दी होगी इन्होंने, और वहां से हो गई गायब, और अब साहब मुझ गरीब से वसूली करना चाहते हैं साहब, देखो दाद होती है तो।
3: अच्छा, तो तूने नहीं कहा था कि टिकट का कट्टा खत्म हो गया है, प्रिंट में गई है?
6: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं किया था मैंने, भला मैं को कहूंगा ऐसा, मैं को कहूंगा। ये देखिए आप, ये देखिए, इतनी सारी टिकट की गड्डियां पड़ी है, ढेर लगा पड़ा है।
4: अरे तो ये बात है सर, सर ये बहुत मक्कार झूठा है, टिकट का कट्टा इसके पास है, फिर भी मुझसे झूठ बोला कि कट्टा खत्म हो गया।
6: नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, ये झूठ मूठ का मुझे फंसा रहा है, यकीन मानिए आप।
3: अबे मैं तो तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, वो तो क्या है ना कि कोई शिकायत नहीं आती थी मेरे पास। अब चल तुझे बताता हूँ मैं, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा पता कर रहा हूँ, ले चलो इसको थाने, अब वहीं से बात होगी। चले।
6: अरे ये क्या कर रहे हैं साहब हवलदार? अब मेरे ठेकेदार को अभी आप जानते नहीं है।
3: अच्छा, कोई मंत्री मंत्री है क्या तेरा ठेकेदार?
6: जनाब मंत्री मंत्री तो नहीं है, पर मगर क्या है, वर्दी उतरवाने का दमखम रखते हैं।
3: अबे वर्दी उतरवाने का दम रखते हैं? उसके बाप ने दी है क्या ये वर्दी मुझे? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कार तूने ही उठवाई है, चोरों से मिला हुआ है तू। चल थाने वहीं निकालता हूँ तेरे पेट से अब सारे रात। चल।
6: अरे अरे बाल तो छोड़िए, अरे कालर पकड़ लीजिए, लेकिन गिरेबान तो छोड़िए साहब। अरे कर क्या रहे साहब?

0: चलो स्टैंड से तो पार हो गई गड्डी।
1: हाँ।
0: आप किसी तरह गराज भर में और पहुंच जाए। उफ, ये हाई सिक्योरिटी प्लेट ना लगी होती ना इसमें तो कुछ मुश्किल ना होती।
2: सही है बॉस, लेकिन जो करना है जल्दी करो बॉस। एक बार पुलिस के पास पहुंच गए ना वो, तो चारों ओर नाकेबंदी शुरू हो जाएगी।
0: नहीं रे, इतनी तेज नहीं है इंडिया की पुलिस, वो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का डर है। पुलिस वालों ने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, बस एक बार कहीं 5 मिनट रुक कर ये GPS जैमर इंस्टॉल कर दूं ना इसमें, तो ढूंढते रह जाएंगे सबके सब।
2: यस, आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भयंकर नॉलेज है बॉस। अपनी बिरादरी में तो इतना नॉलेज देखने को ही नहीं मिलता।
0: बेटे इंजीनियरिंग पढ़ी है, इंजीनियरिंग चाहता तो कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेता, पर क्या करूं, रिसेशन के कारण नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में पापी पेट के कारण ये सब करना पड़ रहा है। मुझे कोई शौक थोड़ी है ये चोर पुलिस का खेल खेलना।
2: तुसी ग्रेट हो बॉस, मेरी तो तकदीर ही खुल गई तुम्हारा शागिर्द बनके।
0: बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये देखना है जैमर कहां फिट किया जाए।
2: बॉस इस गली में मोड़ लो, इसकी भीड़ भाड़ में कैमरे ठीक से कैच नहीं कर पाएंगे इसे, और फिर भीतर उस कुलिया में आप जैमर फिट कर लेना।
0: जैमर तो फिट हो गया। आप करते रहे ट्रेस गड्डी को, यार गाड़ी तो झक्कास है।
2: हाँ बॉस,
0: 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए।
2: अरे बिल्कुल।
0: और सुन,
2: हाँ?
0: कुछ गड़बड़ हुई ना तो कवाड़ी को दे देंगे। लाख रुपए तो वो भी दे ही देगा।
2: हाँ बॉस,
0: घंटे भर में सारे नट बोल्ट खोल कर ऐसा हाल कर देगा इसका कि इसका मालिक भी इसे नहीं पहचान पाएगा।
3: अजी सुनिए, क्या नाम है आपका?
4: सुनील सर। सुनील।
3: हाँ सुनील जी, जी, जी। देखिए अब आप चिंता ना करें, आपकी कार की सारी जानकारी कंट्रोल रूम को दे दी गई है।
4: वेरी गुड सर।
3: जल्द ही कार की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। बस अब एक काम करें आप,
4: जी, जी,
3: आप
4: जी,
3: उस मॉनिटर के सामने जाकर बैठ जाएं।
4: अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप है? चोर हमारी गाड़ी उड़ाई जा रहे हैं और आप हैं कि हमसे कंप्यूटर गेम खेलने को कह रहे हैं।
3: अरे नहीं भाई नहीं, ये गेम नहीं है, टेक्नोलॉजी है
4: जी।
3: हाँ, अब चोर पकड़ने के लिए पुलिस गली गली में उसका फोटो लेकर नहीं घूमती, अब तो बस फोटो कंप्यूटर में डाल देते हैं और सर्च का बटन दबा देते हैं।
4: इतनी एडवांस हो गई है सर अब इंडिया की पुलिस।
3: हाँ।
4: विश्वास नहीं होता।
3: विश्वास हो जाएगा भाई, बस थोड़ा कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ।
5: लग रहा है चोर बड़े माहिर हैं भाई, उन्होंने कार में GPS जैमर इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए गाड़ी ट्रेस नहीं हो पा रही है।
4: क्या कह रहे हो सर?
5: एक काम करता हूँ
4: जी, जी।
5: हाँ पर ये देखिए, हमारे कैमरे पकड़ रहे हैं कार को। यही नंबर है ना आपकी गाड़ी का, लास्ट में 5219?
4: हाँ सर, यही है सर।
5: ये देखिए कैमरा, ये कैमरा नंबर B5 शो कर रहा है।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ,
5: अभी 2 मिनट पहले ही गाड़ी गुजरी है यहाँ से।
4: अच्छा,
5: पर अब कहाँ गई होगी, कहाँ समझते नहीं था, शायद बाईपास की ओर मुड़ गई है
4: जी।
5: हाँ पर थोड़ी देर बाद ही हमारे कैमरों की रेंज भी खत्म हो जाएगी।
4: फिर गई सर गाड़ी फिर।
5: पर परेशान नहीं हो, ये गाड़ी जाएगी कहाँ, पुलिस से बचकर जाना इतना आसान थोड़े ही है, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसे
4: जी।
5: हाँ पर काम जरा मुश्किल हो गया है, अब शहर से निकलने से पहले ट्रेस हो जाती तो यही घेराबंदी करके पकड़ लेते।
4: और अब क्या होगा सर?
5: अरे आप चिंता ना करें, अभी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए गाड़ी को निकले, भाई 100 की स्पीड से भी निकली होगी।
4: हाँ?
5: तो भी 16-17 किलोमीटर से ज़्यादा तो जा नहीं पाई होगी
4: जी।

0: हाथ में होगी।
1: हाथ में होगी
0: मेरा मतलब है कि आपके पास होगी।
2: बॉस बॉस लगता है पुलिस पीछे लग गई है।
3: अरे पीछे नहीं लगी रे, आगे लगी है। रहीमगंज थाने पर चेकिंग चल रही है, देख नहीं रहा है आगे कैसा जाम लगा हुआ है।
2: हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बॉस कि हम पकड़े जाएंगे।
3: अरे पकड़े कैसे जाएंगे,
4: अकल क्या पुलिस वालों के पास ही है?
2: अब तो फिर क्या करोगे बॉस?
3: तू तो देखता जा, ऐसे ही नहीं तेरा बॉस हूँ मैं।
2: ये क्या बॉस, ये रास्ता
3: तो तू क्या सोचता है कि रोड पर खड़ी पुलिस से कहूँ कि आ जा भाई, आ हमें गिरफ्तार कर ले, हमने कार चुराई है, गधे कहीं के।
2: बॉस इस नंबर प्लेट का कुछ नहीं हो सकता, पहले तो हम लोग कितनी आसानी से इसे बदल दिया करते थे, फर्जी कागज भी बना दिया करते थे, पुलिस चेकिंग के बीच में भी हम लोग मूछ पर ताव देकर निकल जाते थे।
4: यही तो प्रॉब्लम है मेरे शागिर्द, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी ना, हम चोरों के खिलाफ एक गहरी साजिश है।
2: हाँ बॉस,
3: धंधे पर चोट है सीधे सीधे ये, पर क्या करें,
4: हमारी कोई यूनियन भी तो नहीं है कि हमारी आवाज उठाए वो और सरकार को बताए कि इस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
2: बॉस इसे बदलने की कोई तो टेक्निक होगी।
3: टेक्निक तो है, प्लेट्स तो मान लो किसी तरह हम बदल भी देंगे, पर ये जो विंड स्क्रीन पर जो स्टिकर चिपका है ना।
2: हाँ बॉस।
3: सबसे बड़ा जी का जंजाल ये है, इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी करो तो ये नष्ट हो जाती है, फिर तो हम सीधे सीधे पकड़ में ही आ जाएंगे।
2: इसका कोई तोड़ क्यों नहीं है बॉस अपने पास, आखिर अपने पेशे में भी तो एक से बढ़कर एक रिसर्च रोज हो रहे हैं।
3: अबे वो भी निकल आएगा कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं है।
2: क्या करें बॉस।
5: श्रोताओं, रहीमगंज में घंटों गाड़ियों की चेकिंग होती रही, पुलिस ने एक एक करके सभी गाड़ियों की तलाश ली। इस बीच कई अनसुलझे रहस्य सुलझ गए, घरों से भागी हुई लड़कियां पकड़ी गईं, कई युवक युवतियां चेहरे छुपाते हुए नजर आए, हवाला व्यापार के करोड़ों रुपए पकड़े गए। पूरे देश में रहीमगंज पुलिस की शोहरत फैल गई। वहां के थाना प्रभारी मूछों पे ताव दे करके मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, पर हाय रे सुनील, उस बेचारे का 4 लाख का कोहिनूर यानी कार नहीं मिली। रानी सराय की पुलिस परेशान थी क्योंकि कार उसके इलाके से चोरी हुई थी, पर रहीमगंज की पुलिस खुशी से नाच रही थी। सुनील से किसी को कुछ लेना देना नहीं था, सबको चिंता अपने अपने थाने की थी।

0: क्या हुआ, नहीं दिख रही गाड़ी?
1: सर, ITS में गाड़ी का नंबर तो डाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सिस्टम केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एक्शन कर सकता है, इसलिए बार बार एरिया कोड बदल रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ सर।
0: लगे रहो भाई, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: सर सर, ये देखिए, ये रही गाड़ी की लोकेशन।
0: अरे वाह,
1: महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। मगर अब अपनी नजर में तो है, जिधर जिधर से भी गुजरेगी हमारा सिस्टम इसकी लोकेशन बताता रहेगा सर।
0: अब देखते हैं ये चोर बचकर कहां जाएंगे। मैसेज करता हूं अभी उस इलाके के थाने को। हेलो
2: जी, श्रीमान जी, रहीमगंज थाना।
0: हाँ, नोट करें गाड़ी का नंबर।
2: जी
0: नंबर है 5219, रंग है सफेद। दूरी यही कोई 8 किलोमीटर है आपके थाने से।
2: बहुत अच्छे श्रीमान जी।
0: और जनाब, गाड़ी की स्पीड 60-70 के लगभग है।
2: जी
0: बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, आप बेरियल लगा दीजिए।
2: श्रीमान जी, रिपीट, गाड़ी नंबर 5219 श्रीमान जी।
0: 5219 सफेद रंग की है।
2: जी सर,
0: बेरियल लगवाइए जल्दी से।
2: जी जय हिंद।
1: अब सर, मैं कंप्यूटर पर ही बैठा रहूंगा और लोकेशन देता रहूंगा उन लोगों को।
0: हाँ, ये भी ठीक रहेगा।
3: रुकता के नहीं। हाँ चल, गाड़ी साइड में लगा।
4: सर मेरे पास टाइम नहीं है सर। सर मुझे जाने दीजिए सर। ये देखिए, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है सर।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

ले जाते हैं। तो लीजिए, हमारा आज का यह नाटक हाजिर है एक ऐसी ही कार चोरी की काल्पनिक घटना पर, जिसमें चोरों व पुलिस के बीच लगातार आंख मिचोली होती रहती है। इसमें आए स्थानों के नाम और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, तथा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की भी चर्चा की गई है जो भविष्य में विकसित हो सकती है और कहीं जगह तो हो भी गई ही है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है, आपको सावधान करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हास्य नाटक कार की चोरी।

0: हो तो ये लगता है कि जहां। अरे यार, कौन सा सेंट लगाया है आज तुमने? बड़ी महक रही हो।
1: छोड़ो ना सेंट वेंट तुम भी।
0: हाँ?
1: अरे अभी देखो दुकान देखते चलते हैं। हाँ, यहाँ रोक दो गाड़ी।
0: अरे यहाँ कहाँ जा।
1: रोको ना, वो देखो कहाँ बड़े चले जा रहे हो। रोको ना,
0: एक मिनट।
1: कहाँ बड़े चले जा रहे हो, रोको ना।
0: अरे गाड़ी भी तो लगानी है भाई, कि तुम कहो तो कार समेत दुकान में घुस जाए।
1: इसीलिए तो कह रही थी लगाते थे ना दुकान के सामने, जगह थी तो। अब इतनी दूर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता। पेंसिल हील
0: यार,
1: पहनती हूँ ना।
0: अरे हाँ, इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हील। अरे यार, तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो। चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
1: ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार 1 मील ले जाकर पार करें, अब उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आए। घर के काम काज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वही बहुत है भाई।
0: कोई शौक वॉक नहीं है मुझे तुम्हारी जॉगिंग वॉगिंग कराने का। कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगी। हाथ पकड़ कर टोचन न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
1: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो नहीं संभालनी होती ना।
0: जी
1: हाँ, बस लगते हो अपने साथ दौड़ाने मुझे।
0: अरे माफ करो यार, माफ करो भाई, गलती हो गई यार, जो बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कार लगाने के लिए दाएं बाएं थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए यार, टर्निंग वर्निंग करनी होती है। ऊपर से नो पार्किंग जोन था वो, पता चला इधर हम लोग दुकान में घुसे और उधर ट्रैफिक पुलिस आई और ले गई गाड़ी को उठा के।
1: अरे तो पार्किंग में ही खड़ी कर दो ना, पास ही में तो है।
0: अच्छा यार, बड़े अच्छे, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बात कि पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी होती हैं।
1: मजाक मत करो।
0: हाँ, बताने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: जब देखो तब है ना टोंटी मारते रहते हो मुझे। तुम्हें याद दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
0: नहीं नहीं पर
1: नहीं, सोचते हो सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
0: देखो मैडम, बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
1: अच्छा।
0: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
1: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
0: क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता। दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
1: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है। पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
0: अच्छा, बताएंगी नहीं वो वजह मुझे?
1: अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
0: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
1: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज बता ही देते हैं तुम्हें।
0: हाँ बताओ ना, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
1: तो सुनो जी।
0: बताओ जी।
1: एक बात बताओगे
0: जी?
1: बिना भेजा भेजे तुमने मुझसे शादी क्यों की?
0: अरे तुम्हारी खूबसूरती देखकर। अरे बेवकूफ जो बन गया था, क्या जानता था कि बिना भेजे की लड़की
1: क्या?
0: ये तो वही हाल हुआ कि हार्डवेयर तो टिप टॉप है पर सॉफ्टवेयर नदारद। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर और बिना भेजे की लड़की।
1: बहुत सही, पर एक बात और बता दो कृपा करके।
0: वो क्या?
1: अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: क्या मतलब? कुछ रेफरेंस तो दो कि किस किस किस बाबत पूछ रही हो तुम
1: रेफरेंस।
0: हाँ।
1: अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि कोई भेजे वाली लड़की क्या तुमसे शादी करती? हूँ जी। अरे कम से कम टिकट तो ले लो स्टैंड वाले से, नहीं तो क्या सबूत रहेगा तुम्हारे पास कि तुमने कार यहाँ खड़ी की थी।
0: अरे सुनो भाई, यार टिकट तो दो।
2: अरे हाँ हम है ना भाई मियाँ, अरे फिकर क्यों करते हैं आप, आपकी गाड़ी जैसी खड़ी है वैसी ही मिलेगी।
0: पर भाई टिकट देने में तुम्हें क्या परेशानी है, कम से कम कोई सबूत तो होना चाहिए हमारे पास कि हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी।
2: अरे सबूत हम है ना, हाँ वो क्या है ना कि टिकट की कट्टी खत्म हो गई है, प्रिंट में गई है ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: पर आप फिक्र ना करिए बिल्कुल भी, आपकी कार को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा अल्लाह की कसम।
1: सुनो इधर सुनो सुनो, हाँ, हाँ, मैं तो कहती हूँ कि कार यहाँ लगाओ ही मत, सामने वाले स्टैंड में चलते हैं ना। अरे सुनो, ये इंसान मुझे ठीक नहीं लगता, बातें लच्छेदार कर रहा है मगर ये है नंबर एक का मक्कार।
0: अरे यार तुम औरतों को भी ना शक करने की बड़ी बुरी बीमारी होती है, किसी पर विश्वास ही नहीं करती। ठीक है ठीक है, सुनो भाई हमें 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, ध्यान रखना हमारी गाड़ी का।
2: अरे जी साहब आप बेफिक्र हो जाइए ना साहब, आपकी गाड़ी की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, अरे मजा लेके कोई स्क्रेच भी आ जाए।
1: सुनो जी, हाँ? तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना
0: क्या?
1: पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है,
0: क्यों?
1: लग रहा है कि ये,
0: अरे यार काहे खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो, कहीं स्टैंड से भी गाड़ी इधर उधर होती है क्या? इतने दिन से लगा रहा हूँ यहाँ गाड़ी, कभी टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता, अब ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है यार।
1: अच्छा ये सब नियम कायदे फॉर्मेलिटीज लगते हैं तुमको? अरे ऊपर से खुद को बड़ा भारी नॉलेज टैंक मानते हो, जरूरी नहीं कि जो कल नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा, सब दिन जात ना एक समाना।
0: यार तुम औरतें भी ना, अच्छा छोड़ो ये सब, इसी फिक्र में घुलते रहे तो मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी।
1: अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब इतना बोझ लेकर कार तक भी चलो, नहीं मुझसे नहीं उठता इतना भारी थैला, तुम ही उठाओ ना।
0: अरे यार मेरे दोनों हाथ पहले से ही फुल हैं, एक जरा सा थैला नहीं उठाते बनता तुमसे, ऊपर से मार्केटिंग का भूत है कि उतरता ही नहीं है। खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, जरूरत हो चाहे ना हो पर चीज दुकान में टंगी है तो खरीदना तो है आपको, उठाने के लिए एक नौकर तो साथ में है ही आपके।
1: फिर शुरू हो गए ना तुम, आज का दिन ही मेरा खराब है, आज सुबह से ही जैसे लड़ने पर उतारू हो तुम।
0: क्या
1: ठीक है मत उठाओ, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ।
0: मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, अपना खुद का वजन तो उठा ही नहीं उठता और कहती हो, अरे कभी देखा है अपने आपको? अरे चंपा का फूल थी जब मैं लेके आया था और अब सूरजमुखी का फूल बन चुकी हो।
1: फूल तो है ना कोई, कम से कम तुम्हारी तरह बबूल का कांटा तो नहीं है, जो महकता तो बिल्कुल भी नहीं, बस चुपता ही रहता चुपता ही रहता चुपता ही रहता है।
0: अरे गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है क्या?
1: मेरे पास कहाँ दी थी तुमने?
0: अरे वो शायद मैंने तुम्हें, अरे वहाँ अंदर क्या देखो यार, तुम्हारे पर्स में होगी।
1: अरे मैं वहाँ तक कहाँ गई थी, मैं तो यहीं खड़ी थी ना, तो पार्किंग में गए थे तो।
0: अरे हाँ ये मिल गई,
1: हाँ वही तो।
0: अरे यार ये पीछे चली गई थी वो, हाँ। अरे कार कहाँ चली गई?
1: क्या
0: यही तो खड़ी की थी यार। अरे सुनो भाई।
2: हाँ भाई।
0: अरे यार हमारी कार नहीं दिख रही है, इसी जगह खड़ी की थी।
2: अरे हाँ भाई मैं अगर खड़ी की थी तो जरूर होगी, जाएगी कहाँ? ठीक से देखिए, देखिए जरा।
0: क्या ठीक से देखूं? क्या देखूं ठीक से? अरे यहीं खड़ी की थी यार, बिल्कुल इसी जगह पर। अरे कार कोई कागज का पन्ना है कि इधर उधर उड़ जाएगा?
2: अरे देखो मैं कब कह रही हूँ कागज का पन्ना है, कार ही थी लेकिन कहीं और खड़ी करी होगी, देख लो जरा।
0: अरे नहीं भैया मैंने बिल्कुल इसी जगह खड़ी की थी।
2: नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं।
0: तो फिर क्या है आपका मतलब?
2: मेरा मतलब है कि कहीं आपने वो सामने वाले स्टैंड पर तो नहीं खड़ी कर दी।
0: अरे क्या पागल समझ रखा है तुमने मुझे, यही स्टैंड था और यही तुम थे, टिकट मांगने पर बोले थे ना कि मैं हूँ ना साहब, और अब गाड़ी नहीं मिल रही है तो कह रहे हो कि ये ऐसा है।
2: भाई हाँ जरा लिमिट में बात कीजिए अपन से।
0: क्या मतलब?
2: हमारे स्टैंड का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकली।
0: अरे मैं क्या जानू तुम्हारे रिकॉर्ड फिकॉर्ड को, पर मेरी गाड़ी तो गई ना।
1: अब दिखा
0: अरे टिकट भी नहीं है कि इनको
1: दिखाओ ना, अब दिखाओ होशियारी, कुछ समझाओ तो कहोगे कि
0: अरे यार तुम भी,
1: ये आदमी मुझे ठीक पहले से ही नहीं लग रहा था मगर नहीं।
0: अरे चुप रे भाई, एक तो ऐसे ही अकल चकरा रही है, ऊपर से तू है कि बड़बड़ बड़बड़। बीमा भी रिन्यू नहीं कराया था, गए 4 लाख, अब बैंक वाले चमड़ी उधेड़ कर किस्त वसूलेंगे।
1: ऐसे कैसे गए, मैं हूँ ना गवाह।
0: हाँ।
1: मैं हूँ ना। अरे यहीं खड़ी करी थी कार और इस आदमी ने टिकट देने से मना किया था।
2: ए महोत्रे माँ, आदमी औरत की गवाही का कोई मतलब नहीं होता, समझिए आप। ऐसे तो मैं भी स्टैंड के 10 लोंडे खड़े करके कहलवा दूंगा यहाँ पर कि आपने अपनी कार यहाँ खड़ी नहीं की थी और मैं भी अल्लाह की कसम यहाँ पर मौजूद नहीं था, कह दूंगा।
1: अरे ऐसे कैसे। अब सुनो जी।
0: हाँ?
1: चलो चलते हैं पुलिस के पास।
0: हाँ, हाँ,
1: ये ऐसे नहीं मानेगा।
0: चलो चलो
1: चलो।
2: अरे हाँ जाइए जाइए, देख लेंगे।
3: अरे जमाल जरा इसको पकड़ और इसकी जरा धुनाई तो लगा रहे। ले जा इसको।
0: मैं कमिंग सर। सर सुनिए, एक मिनट
3: आप अभी बैठिए, पहले इनसे निपट ले फिर आपसे बात
0: करते हैं। अरे सर हमारा बहुत अर्जेंट मामला है सर।
3: अर्जेंट तो क्या यहाँ सभी का मामला अर्जेंट रहता है, थाने में कोई शेर करने थोड़े ही आता है।
0: अरे सर मगर अगर देर हो गई तो शहर से बाहर निकल जाएंगे वो।
3: अरे कौन शहर से बाहर निकल जाएगा, कोई तुम्हारा कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया है क्या।
0: अरे सर मेरे लिए तो मेरी कार ही बिल्कुल कोहिनूर है, पार्किंग पर से पता नहीं कौन उठा के ले गया। हाँ जी,
4: कार थ्रेफ्ट का मामला है।
0: हाँ जी, जी।
3: कार की उम्र, हुलिया, कोई फोटो वोटू है उसका।
0: हुलिया? हाँ? ये क्या पूछ रहे हैं सर आप, मेरी बीवी नहीं, कार है वो, कार।
3: अरे भाई उम्र तो सभी की होती है, चाहे कार हो या बीवी।
4: हाँ बीवियां अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरा छुपा कर रखती हैं,
3: पर कार के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि हम तो कहेंगे कि कार बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही परचेज की जाती है।
0: क्या कह रहे हो साहब।
3: हाँ और हुलिया भी उसका जरूर होता है, जैसे रंग, रूप, मेक, मॉडल, कंपनी का नाम वगैरह।
0: हाँ, हाँ।
3: और हाँ सबसे खास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब आप बताइए।
0: देखिए सर ये लीजिए, ये एप्लीकेशन लिखकर मैं पहले ही लाया हूँ, सारा डिटेल लिखा है इसमें, ये देखिए। हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, वाहन चोरी की घटनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में

0: पहनती हूँ ना।
1: अरे हाँ, इतनी मोटी हो और उसके ऊपर पेंसिल हिल। अरे यार तुम भी ना पैर में मेहंदी लगाकर घर से निकलती हो, चाहती हो पूरी मार्केटिंग कार में बैठे बैठे ही हो जाए, एक कदम भी पैदल ना चलना पड़े।
0: तो ये भी कौन सी समझदारी है भाई कि दुकान सामने हो और कार एक मील ले जाकर पार करें और उसके बाद जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आए। घर के काम काज में इतनी जॉगिंग हो जाती है हमारी, वो ही बहुत है भाई।
1: कोई शौक वोक नहीं है मुझे तुम्हारे जॉगिंग वॉगिंग कराने का, कायदे से चलते तो बनता नहीं, जॉगिंग करेंगे हाथ पकड़कर टोचर न लगाओ तो जाने कहाँ छूट जाए क्वीन विक्टोरिया।
0: सही कहा तुमने, ऐसे घसीटते हो जैसे ये भी नहीं सोचते कि आदमी और औरत की चाल में अंतर होता है। तुम्हें हमारी तरह साड़ी तो नहीं संभालनी होती ना
1: जी।
0: हाँ बस लगते हो अपने साथ दौड़ाने मुझे।
1: अरे माफ करो यार, माफ करो भाई, गलती हो गई यार, जो बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कार लगाने के लिए दाएं बाएं थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए यार, टर्निंग वर्निंग करनी होती है, ऊपर से नो पार्किंग जोन था वो, पता चला इधर हम लोग दुकान में घुसे और उधर ट्रैफिक पुलिस आई और ले गई गाड़ी को उठा के।
0: अरे तो पार्किंग में ही खड़ी कर दो ना, पास ही में तो है।
1: अच्छा यार बड़े अच्छे, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बात कि पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी होती हैं।
0: मजाक मत करो।
1: हाँ बताने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
0: जब देखो तब है ना टोंटी मारते रहते हो मुझे, तुम्हें याद दिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या?
1: नहीं नहीं पर
0: नहीं, सोचते हो सारी अकल तो बस तुम्हारे ही पास है, बाकी सबका तो ऊपर चैम्बर खाली है।
1: देखो मैडम, बाकी सबका तो मैं नहीं जानता, पर आपके ऊपर जरूर फिट बैठती है ये बात। इतनी खूबसूरती देकर भी जब उसने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा।
0: अच्छा।
1: और हाँ, और अब दिन भर मेरा भेजा खाती रहती हो।
0: अच्छा जी, भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अच्छा किया जो वो भूल गया, नहीं तो
1: क्या जी है? क्या बिगड़ जाता उसका अगर तुम्हारे भेजे में जरा सा भेजा भी डाल दिया होता? दुनिया में भेजे की कमी थोड़ी पड़ जाती इससे। अरे इतना भेजा तो मेरे भेजे की खुरचन से ही निकल आता।
0: जरूर निकल आता, तुम्हारे जले हुए भेजे से खुरचन के सिवा भला और निकल ही क्या सकता है? पर नहीं, वो भी नहीं निकाली उसने, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
1: अच्छा बताएंगी? नहीं वो वजह मुझे
0: अब रहने दो, मत ही पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
1: टूटने दो दिल, कोई परवाह नहीं, पर सच्चाई तो अब हम जानकर ही मानेंगे।
0: अब ठीक है, तुम इतना ही जिद करते हो तो ये राज भी हम आज

0: बता ही देते हैं तुम्हें।
1: हाँ बताओ ना, बताओ ना।
2: इतनी एडवांस हो गई है सर अब इंडिया की पुलिस। विश्वास नहीं होता।
3: विश्वास हो जाएगा भाई, बस थोड़ा कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ।
4: लग रहा है चोर बड़े माहिर हैं भाई, उन्होंने कार में जीपीएस जैमर इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए गाड़ी ट्रेस नहीं हो पा रही है।
2: क्या कह रहे हो सर?
4: एक काम करता हूँ।
2: जी जी।
4: हाँ पर ये देखिए, हमारे कैमरे पकड़ रहे हैं कार को। यही नंबर है ना आपकी गाड़ी का, लास्ट में 5219?
2: हाँ सर, यही है सर।
4: ये देखिए कैमरा, ये कैमरा नंबर B5 शो कर रहा है।
2: हाँ जी।
4: अभी 2 मिनट पहले ही गाड़ी गुजरी है यहाँ से।
2: अच्छा,
4: पर अब कहाँ गई होगी? कहाँ समझ नहीं आता, शायद बाईपास की ओर मुड़ गई है
2: जी।
4: हाँ पर थोड़ी देर बाद ही हमारे कैमरों की रेंज भी खत्म हो जाएगी।
2: फिर गई सर गाड़ी, गई फिर।
4: परेशान नहीं हो, ये गाड़ी जाएगी कहाँ? पुलिस से बचकर जाना इतना आसान थोड़े ही है, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसे
2: जी।
4: हाँ पर काम जरा मुश्किल हो गया है, अब शहर से निकलने से पहले ट्रेस हो जाती तो यही घेराबंदी करके पकड़ लेते।
2: और अब क्या होगा सर?
4: अरे आप चिंता ना करें, अभी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए गाड़ी को निकले। भाई 100 की स्पीड से भी निकली होगी तो भी 16-17 किलोमीटर से ज़्यादा तो जा नहीं पाई होगी
2: जी। जी
4: नाकेबंदी कर देते हैं।
2: हाँ जी।
4: अरे सर प्लीज़ ऐसा कीजिए कि रहीमगंज को भी मैसेज कर दीजिए।
2: हाँ।
4: नाके

0: फर्जी कागज भी बना दिया करते थे। पुलिस चेकिंग के बीच में भी हम लोग मूछ पर ताव देकर निकल जाते थे।
1: यही तो प्रॉब्लम है मेरे शागिर्द, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी ना, हम चोरों के खिलाफ एक गहरी साजिश है।
0: हाँ बॉस,
1: धंधे पर चोट है सीधे सीधे ये, पर क्या करें, हमारी कोई यूनियन भी तो नहीं है कि हमारी आवाज उठाए वो और सरकार को बताए कि इस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
0: बॉस, इसे बदलने की कोई तो टेक्निक होगी।
1: टेक्निक तो है, प्लेट्स तो मान लो किसी तरह हम बदल भी देंगे, पर ये जो विंड स्क्रीन पर जो स्टिकर चिपका है ना।
0: हाँ बॉस।
1: सबसे बड़ा जी का जंजाल ये है, इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी करो तो ये नष्ट हो जाती है, फिर तो हम सीधे सीधे पकड़ में ही आ जाएंगे।
0: इसका कोई तोड़ क्यों नहीं है बॉस अपने पास, आखिर अपने पेशे में भी तो एक से बढ़कर एक रिसर्च रोज हो रहे हैं।
1: अबे वो भी निकल आएगा कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं है।
0: क्या करें बॉस।
2: श्रोताओं, रहीमगंज में घंटों गाड़ियों की चेकिंग होती रही। पुलिस ने एक एक करके सभी गाड़ियों की तलाश ली। इस बीच कई अनसुलझे रहस्य सुलझ गए। घरों से

भारत भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं, ये भावना है, भाषा है, आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब शब्द रुक जाते हैं तब संगीत बोलता है। संगीत मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने का एक माध्यम भी संगीत ही होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अभंग गायन। जी हाँ, अभंग महाराष्ट्र की बारकरी परंपरा में गाया जाने वाला एक भक्ति संगीत रूप है। ये मुख्यतः भगवान विट्ठल यानी पांडुरंग की उपासना से जुड़ा हुआ है। अभंग शब्द का अर्थ है जो भंग ना हो, यानी ऐसा भजन जो निरंतर अटूट भक्ति व्यक्त करे। अभंग सामान्यतः मराठी भाषा में होते हैं ताकि हर भक्त उन्हें समझ सके। इनका गायन अत्यंत भावपूर्ण और सरल स्वर पद्धति में होता है। जोर भावनाओं और श्रद्धा पर होता है। अभंग में सामान्यतः एक ताली, दादरा, भजनी, कहरवा ये सब होता है। पांडुरंग बारी में बारकरी समुदाय हजारों की संख्या में अभंग गाते हुए चलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र की उस पावन धरा पर जहां हर कदम पर भक्ति बहती है, जहां हर सांस में विट्ठल बसते हैं और जहां गूंजता है अभंग। अभंग एक ऐसा गीत जो कभी भंग नहीं होता। अभंग यानी अटूट, अनंत, अखंड, संतों की वो वाणी जो सीधे हृदय में उतरती है। ये केवल गीत नहीं, ये भाव है, एहसास है और भगवान पांडुरंग से आत्मा का संवाद है। कहते हैं जब शब्द भटकते हैं संगीत राह दिखाता है। हर वर्ष लाखों बारकरी पांडुरंग की ओर कदम बढ़ाते हैं, कंधे पर झोली, हाथ में चिपलिया और होठों पर अभंग।

0: अभंग कोई शास्त्रीय बंधन नहीं, बल्कि मन की वो आवाज है। इसे पखावज, ताल, हारमोनियम, तानपुरा, झांझ के साथ गाया जाता है। अभंग हमें सिखाता है, दुख आए तो विट्ठल का नाम लो, सुख मिले तो उनकी कृपा मानो, और जीवन भर सरल, सहज, नम्र बने रहो। अभंग हमें जोड़ता है धरती से भी, आकाश से भी, और खुद भगवान से भी। श्रोताओं, आज की इस यात्रा में हम अभंग के शुरू से होकर गुजरे। आशा है ये भक्ति की धारा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नए भाव में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल। श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
1: हाँ श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
1: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
1: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
1: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कालीकता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कालीकता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्रो, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
1: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहाँ अंग्रेजी नेवी की अजय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
1: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहां भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहां फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
1: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
1: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
1: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
1: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकातियन सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गई और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
1: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
1: हाँ श्रोताओं, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
1: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
1: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
1: जी हाँ।
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
1: श्रोता, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
1: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राजघराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल न भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है। लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है, वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदल कर न्यू मार्केट रख दिया गया।
1: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती है। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
1: लेकिन इनमें से हम आपको 2 खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं। दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
1: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
1: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
1: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
1: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
1: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
1: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोस के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है, कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
1: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तहरेपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
1: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
1: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
1: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
1: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
1: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और ना ही कोई बाड़ बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
1: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
1: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगोला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए।
0: हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है अत्यष्टि।
1: इंद्राय हि द्यौरसुरो अनम्नतेन्द्राय महि पृथिवी वरीमभिर्द्युम्नसाता वरीमभिः इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासो दधिरे पुरः इन्द्राय विश्वा सवनानि मानुषा रातानि सन्तु मानुषा। विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी द्युलोक ने अपने संसाधनों से इंद्र देव का सहयोग किया। उत्साहित देवगणों ने सहमति पूर्वक इंद्रदेव को अग्रणी रूप से प्रतिष्ठित किया। सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर हवि भाग अर्पित करते हैं। मनुष्यों द्वारा दी गई सोमयुक्त आहुतियां इंद्रदेव के लिए समर्पित हों। विश्वेषु हित्वा सवनेषु तुञ्जते समानमेकम् वृषमणियवः पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक् तं त्वा नावं न पर्षणिं शूषस्य धुरि धीमहि इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमे भिरिंद्र मायवः। हे इंद्रदेव, सभी सोमयागों में विभिन्न उद्देश्यों वाले याजक आपको हविष्यान्न प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप में आहुतियां देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तुति करने वाले स्तोत्रों द्वारा आपका ध्यान करते हैं। विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र शारदी रवातिरः सासहानो अवातिरः शासस्तमिन्द्र मर्त्य मयज्युम शवसस्पते मही ममुष्णाः पृथ्वीमिमा अपो मंदसान इमा अपः। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को पददलित किए जाने पर जब आपने ही उनकी शरतकालीन आवासीय नगरियों को विध्वंस किया, तब प्रजाजनों में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जलों पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। आदित्ये अस्य वीर्यस्य चक्रिरन् मदेषु वृषन् नुषिजो यदा विथ सखीयतो यदा विथ चकर्थ कारमेभ्यः प्रतनासु प्रवन्तवे ते अन्यामन्याम् नद्य सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमानों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया। आपने ही धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्नादि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध कराया। उतो नो अस्या उषसो जुषेत हियर्कस्य बोधि हविषो हवीमभि स्वर्षाता हवीमभि यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषा वज्रंचिकेतसि आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभात कालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चारित स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जानें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रु नाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्तोत्रों और नए ज्ञानी स्तोताओं की प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। त्वं तमिंद्र वावृधानो अस्म युरमित्रयंतम तुविजातमर्त्यम वज्रेण शूरमर्त्यम जहि यो नो अघायति शृणुष्व शुश्रवस्तमः रिष्टं न यामन्नपभूतु दुर्मतिर्विश्वापभूतु दुर्मतिः। हे अतिविख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार डालें। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु आपके वज्रास्त्र के प्रहार से खंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 131वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। यदि ज्ञान दृष्टि से चिंतन किया जाए तो विवेक के द्वारा रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः संप्रदाय को धर्म की मान्यता देना विवेक की दृष्टि से सत्य नहीं हो सकता है। अविवेक से ही अंधश्रद्धा का जन्म होता है। इसी अंधश्रद्धा के कारण ही लोग भ्रमित होकर मानव से मानव के बीच में भेद उत्पन्न करते रहते हैं और यही भेद समाज को विभाजित करने में सहायक सिद्ध होता है। यही अंधश्रद्धा समाज में कुरीतियों को जन्म देकर पूरी मानवता को अज्ञान के अंधकार में ढकेलने में सफलता प्राप्त करती है। समाज को ऐसा चिंतन देकर एकता के सूत्र में बांधने वाले और मानवता को अंधकार की गर्त से निकलने का रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ थे श्री राम शर्मा आचार्य। उनका जन्म आगरा जनपद के आंवलखेड़ा गांव में 20 सितंबर सन 1911 को हुआ था। उनका बचपन गांव में ही बीता। उनके पिता पंडित रूप किशोर जी शर्मा राजघरानों में राजपुरोहिती का काम करते थे। वे उद्भट विद्वान और भगवत कथाकार थे। श्रीराम शर्मा के मन में बचपन से ही मानव मात्र के लिए अपार करुणा का भाव था और व्यक्तिगत साधना की ओर उनका गहरा झुकाव भी था। गांव के छोटे छोटे बच्चों को अमराइयों के नीचे बिठाकर वे स्कूली शिक्षा भी देते और आध्यात्मिक शिक्षा भी। उनके भीतर एक छटपटाहट थी जिसके चलते वे हिमालय की ओर भाग निकलते और जब पकड़े जाते तो कहते, हिमालय ही मेरा घर है, मैं वहीं जा रहा था। ये वो समय था जब समाज जाति धर्म और संप्रदायों में बुरी तरह बंटा हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं था। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने समाज सुधार की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं औपचारिक शिक्षा बहुत कम ली थी, लेकिन उनकी आंतरिक चेतना पूर्णतः जागृत थी। वो हाट बाजारों में जाते और लोगों को सामान्य स्वास्थ्य की शिक्षा देते, पशुधन कैसे सुरक्षित रखें ये बताते। लोगों के जीवन से जुड़कर वे उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे। महिलाओं और बेरोजगारों के लिए उन्होंने गांव में ही एक बुनता घर स्थापित किया ताकि वो हाथ से कपड़े बुनकर स्वावलंबी बन सकें। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही सन 1926 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और इस तरह उन्हें आत्मबोध होना आरंभ हुआ। उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगी। इस तरह उनकी चेतना युग निर्माण मिशन से जाकर जुड़ गई।

एक तरफ श्रीराम शर्मा की आध्यात्मिक यात्रा जारी थी, वो समाज सुधार और युग निर्माण के मिशन से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर भारत की पराधीनता उन्हें कचोटती रहती। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता समझ रही थी और अचानक एक दिन उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी। युग धर्म की महत्ता और समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इस आवाज में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह काम करने का संदेश छिपा हुआ था। गांधी जी ने उन दिनों असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया था। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने की घटना को उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त किया, मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखवा दिया। अब साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी, लंबी सजाएं और काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही नहीं बने, घर वाले उसकी पूरी रोकथाम कर सकें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होते ही मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए, जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से ये आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। किसी ने उन्हें समझा दिया कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वो मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम करा दें। भाइयों ने भी कहा, घर से कोई रिश्ता न रहेगा, उसमें प्रवेश न मिलेगा तुम्हें। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। इस संदर्भ में प्रहलाद का चित्र आंखों के सामने तैरने लगा। ध्रुव की कहानी मस्तिष्क को घेरने लगी। पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। अनगिनत वीर बलिदानियों की, संतों की, सुधारकों की, शहीदों की कहानियां सामने तैरने लगी। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेकों विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता हुआ लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। इस तरह उनका सन 1927 से 1933 तक का समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। वे भूमिगत होकर काम करते रहे और कई बार जेल गए। आसनसोल जेल में ही वे नेहरू जी की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफी किदवई, पंडित मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे। आजादी के महायज्ञ में वो अपनी आहुति लगातार देते रहे।

ये वो समय था जब भारत की आत्मा आजादी के लिए छटपटा रही थी। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के फैसले ने जन आक्रोश को भड़का दिया था। उसके विरोध में वे भी शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान वे ब्रिटिश शासन के समक्ष झुके नहीं। अंग्रेज सिपाही डंडों से उन्हें मारते रहे। वे बेहोश हो गए, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने दांतों से झंडे को पकड़ रखा था। बेहोशी की अवस्था में जब वो चिकित्सक के पास ले जाए गए, तब उनके भिंचे हुए दांतों के नीचे से झंडे का टुकड़ा निकला। उनकी सहन शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और उन्हें आजादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत्त का नाम मिला। आज भी आगरा के उनके साथी मत्त के नाम से ही उन्हें जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी उन्होंने पूरे आगरा प्रांत का दौरा किया था। सारे आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने सौंपे और पंत जी ने उन्हें बापू के सामने पेश किया। फिर गांधी जी ने अपनी प्रशस्ति के साथ ये सारे आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त प्रांत में लगान माफी के आदेश पारित हुए। सन 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर आरंभ हुआ, जब पौंडिचेरी में वे श्री अरविंद से, शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर से और साबरमती आश्रम में वे बापू से मिलने गए। इन सब के निर्देश पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। आगरा से प्रकाशित सैनिक समाचार पत्र के संपादक श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने उन्हें कार्यवाहक संपादक बनाया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से वे गांधी जी के अत्यंत निकट आ गए। साथ ही आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाशनाथ काटजू से उनके घनिष्ठ संबंध बन गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रभारी नेता नियुक्त हुए। मैनपुरी षड्यंत्र केस में उनका सहयोग था और आगरा षड्यंत्र केस के वे प्रमुख अभियुक्त थे। वे अपने एक पुत्र, बेटी और भाई के साथ पकड़े गए। सन 1945 में वो रिहा हुए। इस जेल प्रवास के दौरान ही उनके तीन पुत्रों की मृत्यु हो गई। 1948 के बाद उन्होंने सघन रूप से लेखन का कार्य किया और कई किताबें लिखीं। इन सब के बीच 4 घंटे नियमित स्वाध्याय का उनका क्रम कभी नहीं टूटा। जीवन के उत्तरार्ध में ग्लूकोमा के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। 8 से 10 वर्ष इसी अवस्था में उन्होंने 5 पुस्तकें बोलकर लिखवाईं। उन्होंने वेदों का सरल भाषा में अनुवाद करके उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वे ताउम्र जीवन पर अपने विचारों की रोशनी से लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहे और मानव मात्र के कल्याण में डूबे हुए 2 जून सन 1990 को उस परम ज्योति में विलीन हो गए। उनका कहना था, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। नमन ऐसी दिव्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
2: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
1: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
3: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है
1: जी।
3: और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है
1: जी।
3: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में BSc कृषि किया, फिर MSc कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर PhD जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए, ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
1: जी।
3: और जितना भी गंदा पानी है चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
1: जी।
3: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है, उसके लिए करना है। जैसे पूरे फ्लावर
1: जी,
3: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है। इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके, मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो फूड के जो चेन है उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
3: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
1: जी,
3: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
1: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई?
3: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे
1: जी,
3: वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे, तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमि बोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
1: जी,
3: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए। और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
1: जी,
3: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
1: जी,
3: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस, तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है, मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का। मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है, जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
1: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों, अगर आप समझाएं।
3: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
1: जी,
3: है ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है, मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बेलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे
1: जी।
3: तभी तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना
1: जी।
3: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
1: जी।
3: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
1: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गांवों में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है
3: जी। बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी
1: जी,
3: जो चीज पहले 1 दिन में पता चलती थी वो आज सेकेंड्स में पता चलती है
1: जी।
3: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएंटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
1: जी।
3: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं और पानी चला देते हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको मिट्टी की जान कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले। ये बहुत जरूरी है आज। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे YouTube Facebook पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
1: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने। किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की बात करें या रेलवे रोड की या फिर जो कहीं भी अगर कोई अगर सिटी बनता है
1: जी,
3: तो वो सिटी पूरा आप ये मान लीजिए कि स्क्वायर किलोमीटर मोर देन दैट पूरा सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट? मतलब वहां का जो वाटर होल्डिंग या यूं कहें कि वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जाता है। अब पानी की इंटेंसिटी तो उतनी ही है रेनफॉल की, तो वो जितना भी पानी वन स्क्वायर किलोमीटर में गिरा है वो पूरा फ्लडिंग करके बिल्कुल स्पीड से नदी का रास्ता ढूंढेगा।
1: जी जी,
3: है ना। जो एक स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एब्जॉर्प्शन था वो पूरा एब्जॉर्ब न होके पूरा आगे बढ़ जाएगा।
1: जी,
3: इसे बहुत शुद्ध तरीके से यूं समझें कि अगर हम हमारे एक शर्ट पे पानी डालेंगे तो वो एक लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा।
1: जी,
3: वहीं अगर एक लीटर पानी अगर हम रेनकोट पे डालेंगे
1: जी,
3: पूरा उसको रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा।
1: सही।
3: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है। मतलब सॉइल को पूरा इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया।
1: जी।
3: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है। मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी 90% एरिया में गेहूं लगा है।
1: जी।
3: तो गेहूं को धान के बाद लगाया गया है। 90% एरिया में धान भी था, तो धान को भी वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो गेहूं को चाहिए, गेहूं को भी वही चाहिए जो धान से ले ऑलरेडी ले चुके हैं धान। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। मतलब हमारे सॉइल में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनको फसल की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि फसल को बदल के नहीं लगाया गया। ऐसे तो में किसानों को चाहिए कि जैसे अभी मैंने अगर गेहूं का उदाहरण दिया तो चना भी लगाए कुछ किसान, या फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर मसूर, इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण
1: जी,
3: फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: जी जी।
3: इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है तो कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो CSR का जो नॉर्म्स होता है, जो एनवायरमेंटल सिंपैथी होती है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, तो उसमें प्रॉपर प्लांटेशन यदि हमने कोई रोड निकाला है और उसमें प्लांट कटे हैं तो बी इंश्योर कि उससे ज्यादा प्लांट वापस नए रोड के आइट साइड में लगाए जाए ताकि वो जो बैलेंस में मिसमैच किया है प्रकृति का वो वापस मैच हो जाए।
1: अच्छा।
3: नहीं तो हमें बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मृदा का जो क्षरण है
1: जी,
3: वो करना आसान है लेकिन उसको वापस रोकना या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। अगर कोई चट्टान है उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है
1: जी,
3: तो वो 1000 साल लगते हैं। हजारों साल की प्रोसेस होती है वेदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की। तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है वो सभी अपनाने चाहिए।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
3: जी, अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की
1: जी।
3: एक तो होता है पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ और उसपे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है
1: जी।
3: मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से, तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी
1: जी।
3: और दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मतलब हम मिट्टी परीक्षण से सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है
1: जी जी।
3: अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें
1: जी।
3: तो ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है और अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का, उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है वहां बनाना है या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है। दैट्स इट।
1: सर एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
3: देखिए जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें तो एक किसानों ने क्या है नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है
1: जी।
3: क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं वो पशुओं को खिलाए जाते हैं और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र गोबर उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल लार इत्यादि ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था
1: जी।
3: मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था
1: जी जी।
3: अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है। कारण चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं, मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए
1: जी जी।
3: भाई मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई बस
1: जी जी।
3: उसने वो पोषक तत्व डाले कम और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई
1: जी।
3: तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो क्षरण या उर्वरता की जो समस्या आई है उसमें ये जो दो तीन कारण है
1: जी।
3: ये बहुत ज्यादा रूप से मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़े एक और सवाल कहेगी, जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है?
3: अच्छा एक प्रश्न है या यूं कहूं कि किसानों के लिए सुझाव है कि फसल चक्रण की यदि, जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसान फसल चक्र अपनाता है तो निश्चित ही उस चक्र की फसलों का जो पकने की अवधि रहती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई किसान गेहूं लगा रहा है और कोई किसान चना लगा रहा है, चना तुलनात्मक रूप से जल्दी कट जाएगा, उसकी नरवाई भी कम निकलती है, उसको पोषक तत्व भी कम लगते हैं और वो पशुओं के लिए एक टेस्ट में डिफरेंट लाने का भी काम करता है। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं तो किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है और नरवाई प्रबंधन में भी, और पशुओं को भी वैरायटी वाला फूड मिल जाता है। इसी तरीके से नरवाई प्रबंधन की भी यदि बात करें तो हमने उस नरवाई ने जितने पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं

0: ट्राइकोडर्मा वीरिडी है, ये भी डाल देंगे उसके ऊपर तो वो बहुत जल्दी सड़ गल कर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये नरवाई का प्रबंधन का सबसे अच्छा मतलब तरीका है, इससे हम लोग केंद्र पर भी करते हैं
1: जी
0: ताकि ये जितनी भी नरवाई है
1: जी
0: वापस मिट्टी में चले जाए पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए। तो ये
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा एक मृदा उर्वरता को संरक्षित करने का तरीका है।
1: सर, किसानों के लिए मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और ये कब करना चाहिए, अगर आप इस पर कुछ बताएं।
0: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा है उसमें हमने ये पढ़ा है, प्रोफेसर जस्टिस वान लिबिग ने बताया है
1: जी
0: कि हर पोषक तत्व का एक विशेष कार्य होता है और वो कार्य अन्य पोषक तत्व से नहीं कर सकते हैं,
1: जी
0: है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक की कमी से पौधों में ये विकार हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नत्रजन बहुत ज्यादा दे दिया तो अब वो समस्या समाधान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है।
1: जी
0: इसलिए अब मिट्टी में जिंक कम है या नाइट्रोजन ज्यादा है ये पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना पड़ेगा। तो
1: जी
0: मिट्टी परीक्षण करवाने से हमें पता चलता है कि किस पोषक तत्व में मिट्टी बहुत अच्छी है, किस में कमी है। तो मिट्टी परीक्षण करवाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो एक तो अप्रैल महीने होता है और एक ये नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय एक फसल कट के दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है।
1: अच्छा,
0: कहने का मतलब है कि खेत खाली रहता है, तो
1: जी
0: जब खेत खाली रहता है तब मिट्टी का नमूना लेना बहुत अच्छा रहता है। इसको 3 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नमूना लेने का एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीके का हमने वीडियो बना के भी केंद्र के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे लें मृदा का नमूना। अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो
1: जी
0: कृषि विज्ञान केंद्र के फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पे डालेंगे कैसे ले मृदा का नमूना, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें
1: अच्छा
0: इसमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखते हैं, जैसे खेत खाली होना चाहिए, जहां ढलान वाला हिस्सा है वहां से नमूना नहीं लेते हैं, और अगर मेड़ है तो मेड़ के 2-3 फीट से नमूना छोड़कर लेना है, और खेत में यदि कोई पेड़ है तो
1: जी
0: पेड़ के नीचे से भी जहां चारों तरफ छांव बनती है वहां से नमूना नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक जगह चयन करके वी आकृति का गड्ढा करते हैं, ऊपर से फावड़े से थोड़ी नरवाई हटाते हैं और वी आकृति के गड्ढे को 4 से 6 इंच गहरा करते हैं सामान्य फसलों के लिए,
1: जी
0: गेहूं धान मक्का इनके लिए। अगर किसी को तुअर लगाना है और कपास लगाना है, गन्ना लगाना है, तो 3 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं। और अगर किसी को बगीचा लगाना है, आम का बगीचा, तो वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मतलब 4 से 6 फुट तक गहराई करते हैं, और उस गहराई के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंची मोटी परत निकालते हैं। अब इसके बाद ये एक जगह से निकल गया, इसी तरीके से 4-5 जगह से प्रति एकड़ 5 जगह से नमूना निकाल कर पांचों जगहों के नमूने को एक बड़ी सी पन्नी पर इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, और अगर कोई बड़ा पत्थर या कुछ बड़े लकड़ी या कंकड़ पत्थर इत्यादि है तो उनको हटा देते हैं। अब इसके 4 हिस्से करते हैं हम लोग,
1: जी
0: दो विपरीत दिशा के रखते हैं और दो फेंक देते हैं। मतलब हमको इसका जो मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो दो रखेंगे तो वो 10 किलो का नमूना यदि है तो 5 किलो बचेगा। फिर जो दो हैं इनको अच्छे से मिलाकर एक बनाएंगे, एक का पुनः 4 बनाएंगे, फिर दो रखेंगे, दो विपरीत दिशा के फेंक देंगे तो 2.5 बचेगा, फिर दो का एक और एक के 4, 4 के 2, इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम नमूना केवल शेष न रह जाए।
1: जी
0: अब 500 ग्राम नमूना हम किसान की पूरी जानकारी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, पूर्व लगाई गई फसल, आगामी लगाई गई फसल, ये सब जानकारी के साथ नजदीकी प्रयोगशाला में भेजते हैं परीक्षण के लिए। परीक्षण उपरांत जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम 3 साल में परीक्षण जरूर करवाएं, 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। 3 साल तक एक परीक्षण मान्य रहता है, उसके बाद फिर पोषक तत्वों में बदलाव हो सकते हैं, तो 3 साल में एक बार नमूना परीक्षण करवाना चाहिए।
1: रासायनिक उर्वरकों जो हैं उनके उपयोग से मृदा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं?
0: निश्चित ही, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में अगर हम

0: भी उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा होती
1: जी
0: है ना। जैसे अपन यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नत्रजन होता है और बाकी जो होता है 54% वो फिलर मटेरियल होता है, मतलब एक तरीके से वाहक मटेरियल कह सकते हैं उसको। तो वो जब मिट्टी में धीरे धीरे जाता है तो वो मिट्टी में जमा होने लगता है,
1: जी जी
0: उसकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में विकार उत्पन्न करती है, या यूं कहें कि अम्लीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है या क्षारीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है। कुल मिला के मिट्टी में एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, और जब उसकी निश्चित मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी में अति
1: जी
0: विकार उत्पन्न होता है।
1: जी जी
0: ये जो पोषक तत्व भी होते हैं ये बहुत ज्यादा मिट्टी में एकदम से प्रभाव डालते हैं।
1: जी
0: जैसे हमने यूरिया डाला तो कुछ दिन तक मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है,
1: जी
0: और अगर एक ही तरीके का हमने उर्वरक डालते गए तो वो, जैसे यूरिया है मिट्टी में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, डीएपी है मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, तो अगर हमने केवल यूरिया बहुत ज्यादा डाला है तो वो धीरे धीरे अम्ल हो जाएगा। अब
1: जी
0: अम्ल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान है
1: जी
0: वो निर्धारित करता है कि सभी पोषक तत्व किस अनुपात में पौधे को मिलेंगे।
1: जी
0: अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो कुछ पोषक तत्व तो पौधा ले ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मिट्टी बीमार पड़ जाएगी और वो पौधे को पोषक तत्व अवशोषित नहीं करने देगी, क्योंकि हर पोषक तत्व पौधा तभी ले पाता है जब वो आवेशित अवस्था में आता है।
1: जी
0: हमने पढ़ा है हम शिक्षण संस्थानों में कि जो नत्रजन है उसको सभी पौधे नाइट्रेट रूप में लेते हैं, NO3 माइनस माइनस माइनस, मतलब NO3 ट्रिपल माइनस। अगर धान की बात करें, आलू की बात करें, तो वो अमोनिया रूप में लेते हैं, NH4 प्लस।
1: जी
0: अब अगर ये आवेशित अवस्था में आने का कार्य अगर किसी के द्वारा प्रभावित होता है, किसी रासायनिक केमिकल के द्वारा, तो निश्चित ही पौधों पर भी इसका प्रभाव दिखता है, और
1: जी
0: ये हमारे पौधों की जो उपलब्धता है या पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो पौधे के लिए प्रभावित होती है, और हमारा पौधा फिर अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाता है। इसलिए रसायनों का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक प्रबंधन का सिद्धांत है,
1: जी
0: नरवन प्रबंधन का, गोबर प्रबंधन का, हरी खाद का,
1: जी
0: फसल चक्रण का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी जी
0: और इसके साथ भी मैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जो लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जीव होते हैं
1: जी
0: उनका उपयोग भी करने की सलाह दूंगा किसानों को। जैसे उदाहरण के लिए हम यूरिया की जगह अगर धान और गेहूं की फसल है तो एजोटोबैक्टर से बीज उपचार करना चाहिए। चना और अगर तुवर और मूंग की फसल है तो राइजोबियम से बीज उपचार करना
1: जी
0: चाहिए। ये जो लाभदायक जीव हैं ये वातावरण की नत्रजन को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि इन फसलों को यूरिया के नत्रजन की आवश्यकता न पड़े। इसी तरीके से जो फास्फोरस घोलक जीवाणु रहता है
1: जी
0: वो यदि उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए तो यूरिया और डीएपी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जिंक सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन पे किसानों को वापस थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है, मतलब समन्वित सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके हमको पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।
1: मृदा संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: जी, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2014 से, मतलब अभी भी वो चल रही है बहुत ही व्यापक स्तर पर, है ना। तो इसमें किसानों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है वो इस योजना के माध्यम से करके दिया जाता है, और किसानों को अवगत कराया जाता है कि आज आपकी मिट्टी की ये स्थिति है, आपको अगर इस फसल का इस मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको ये पोषक तत्व डालने पड़ेंगे, और इस तरीके से गोबर की खाद, इस तरीके से PSB, NPK, ये सब डालना पड़ेगा।
1: जी
0: इस योजना के माध्यम से किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाता है, जिसमें एक तो पूरे किसान की जानकारी रहती है, दूसरा
1: जी
0: 12 पैरामीटर जो होते हैं,
1: जी
0: 12 पैरामीटर में पूरे किसान की जो फर्टिलिटी का स्टेटस है वो डाल रहता है, तीसरा मुख्य बिंदु रहता है कि अगर इस 12 पैरामीटर या फिर मृदा उर्वरता के हिसाब से किसान को गेहूं लगाना है तो कितना एनपीके, कितना गोबर की खाद, कितना पीएसबी राइजोबियम डालना पड़ेगा, मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मिट्टी की उर्वरता से लेके किसान की जानकारी से लेके जो आगामी फसल लगाना है उसमें कौन सा पोषक तत्व किस उर्वरक से डालना है, ये
1: जी
0: सब जानकारी उसमें रहता है।
1: जी
0: दूसरा, अगर योजना में बात करें तो ये तो एक विशेष योजना हो गई। उसके बाद भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इससे किसानों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो किन किन कारणों से कम हो रही है, अगर हमको इसको संरक्षित करना है तो क्या क्या कारण करना
1: जी
0: है, और अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब जानकारियां विविध योजनाओं के माध्यम से या फिर अन्य योजना के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं
1: जी
0: ताकि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लगातार बनी रहे और टिकाऊ तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी उसी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करके प्राप्त हो सके।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है? आप लोग क्या कुछ करते हैं? क्या ट्रेनिंग्स देते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में स्टूडेंट्स को लेकर, या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू? थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए।
0: देखिए, किसी भी अगर उत्पादन की बात करें, मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल बेस आता है वो मिट्टी ही होता है। तो निश्चित ही हमारा केंद्र भी इसको बचाने या इसकी उर्वरता को संरक्षित करने में अग्रणी योगदान निभा रहा है। एक तो हम यहाँ से कुछ मॉडल तैयार करके किसानों को बताते हैं कि हमने ये करके देखा है, आप भी कीजिए। जैसे एक तो हरी खाद का प्रयोग हमने करके देखा है कि जैसे हमने पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया, एक की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैविक कार्बन 0.5 था, हमने उसमें 3 बार हरी खाद की फसल लिया और उसका जो जैविक कार्बन है वो 0.75 तक हो गया। मतलब नरवाई प्रबंधन या फिर ये जो हरी खाद की फसल है इससे हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि कैसे रासायनिक केमिकलों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमने केंद्र पर फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद मतलब प्रोम का निर्माण शुरू किया ताकि किसानों को यूरिया का और डीएपी का विकल्प उपलब्ध हो जाए। कि इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक तरल जैव उत्पादन इकाई है जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा। हमें किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग। तो धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए, बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए, नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और
0: जी
1: आपने रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की यानी माटी की,
3: जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, कार्यक्रम सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, मनुष्य जीवन के माया जाल में फंसा हुआ है। वो निरंतर दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ संजो लेने के लिए। किंतु इस अनवरत दौड़ का अंत है कहाँ? इच्छाओं के इस अथाह सागर का किनारा कहाँ है? योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज हम सुनेंगे श्री राम के हृदय से निकली वो करुण पुकार, जिसमें वो तृष्णा के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। राज वैभव के मध्य रहते हुए भी युवराज श्री राम ने देखा कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी शांत होती है तो तीसरी मन के द्वार पर आ खड़ी होती है। तृष्णा मनुष्य को आशा और निराशा के झूलों में झुलाती रहती है। कभी वो स्वप्न दिखाती है तो कभी भय उत्पन्न करती है, कभी सुख का प्रलोभन देती है और कभी दुख के अंधकार में ढकेल देती है। वो मृग तृष्णा के समान है, दूर से जल का आभास देती है लेकिन निकट जाने पर केवल शुष्क मरुभूमि ही हाथ लगती है। भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि जिस हृदय में तृष्णा का साम्राज्य है वहां शांति का निवास नहीं हो सकता है, और जहां संतोष का दीपक जल उठता है वहां संसार के समस्त वैभव भी फीके पड़ जाते हैं। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य चिंतन में और सुने श्री राम के वैराग्य की वो वाणी जो आज भी मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा पर।
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तृष्णा का प्रभाव क्या होता है?
2: देखिए, तृष्णा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो हृदय है ना, वो चंचल हो जाता है। जबकि आप देखें, हम लोग कहते हैं मन चंचल है
1: जी,
2: यहाँ पर बात यह है कि तृष्णा आपके हृदय को भी चंचल करती है, यानी आपके भाव दशा पर सीधे अपना प्रभाव छोड़ती है। इसी को भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। अब ऐसे में तृष्णा कभी शांत नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य है, जो चिंता हमारे जीवन में आती है वो तृष्णा की वजह से आती है। तो तृष्णा का जीवन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है उसके लिए बहुत सुंदर उपमा इसमें दिया गया है। योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उपमा के माध्यम से उन तत्वों पर प्रकाश डाला गया है जिससे आम जीवन में जीने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान हो सके कि वास्तव में योग क्या है। वैराग्य को लोग समझते हैं कि विषयों का त्याग है वैराग्य, विरक्ति है, या संसार से भागना वैराग्य है, उसको पलायन कई बार मैंने कहते हैं, जिसका संसार बहुत अच्छा नहीं रहा या जो संसार में फेलियर देखा, असफलता देखा तो उसने वो वैरागी हो गए, या वैरागी होने से माता पिता डरते हैं। वैराग्य आप समस्त सांसारिक कर्मों में पूरी कुशलता से रत होने के बाद भी वैरागी हो सकते हैं, क्योंकि वैराग्य सत्य का उद्घाटन है, सत्य का दर्शन है वैराग्य। शेक्सपियर ने ही शायद ये बात कही थी कि ये रंगशाला है जहां सारे लोग अपने पात्र भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए, तो उस पात्र से वैराग्य भी है और राग भी है। राग जब तक तभी तक है जब तक आप प्ले कर रहे हैं, जब तक उस पात्र का अभिनय कर रहे हैं तब तक उस पात्र को अपने जीवन में ऐसे उतारते हैं जैसे आपका जीवन ही वो हो। लेकिन जैसे ही वो पात्र पूरा होता है, वो पात्र आप भूल जाते हैं और फिर किसी और पात्र के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये बात एक वैरागी की ही बात की जा रही है। तो अभिनय जैसे है, ये जीवन भी अभिनय है, लेकिन अब कहा जाए तो अभिनय की तरह से कोई देखेगा नहीं, हर आदमी इसमें फंसा हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: तो संसार में फंसा हुआ जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका चित्त तृष्णा से मुक्त न हो, जब तक उसका चित्त वैरागी न हो। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जैसे समुद्र के भीतर जो भंवर उठता है या जो लहरें उठती हैं, वो भंवर और हलचल उत्पन्न करने के लिए उठती हैं, समुद्र की शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होती हैं। यद्यपि बाहरी प्रभाव है वो, चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो तृष्णा है वो उसकी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होता है लहरों की भांति। और जो आपने पूछा इसका क्या प्रभाव है, कहते हैं हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम और आकुलता पैदा करती है। अंतःकरण को कभी वो भ्रम से मुक्त नहीं करती, बेचैन करती है, और हम सोचते हैं कि हम शायद तृष्णा की वजह से शांत हो जाएंगे, वो शांति को हरने वाली है। तो तृष्णा का जीवन में कह सकते हैं प्रभाव यही है कि वो आपको अशांत कर देगी,
1: अशांत कर देगी, बिल्कुल। अच्छा, इसी ग्रंथ में पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा हुई है
2: जी,
1: तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं कि पारमार्थिक स्वरूप से आशय क्या है व्यक्ति के पारमार्थिक स्वरूप से, और दूसरा ये कि व्यक्ति अपने पारमार्थिक स्वरूप को पाने में क्यों असमर्थ है।
2: क्या बात है, देखिए ये जो ग्रंथ है ना, ये अद्वैत का ग्रंथ है, इसको अद्वैत ज्ञान कहा गया। अद्वैत ज्ञान का मतलब हुआ कि जहां फिर किसी दूसरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे में जो आपने पूछा, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब एक सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरः, कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, तो यहां पर मिथ्या को लोग झूठ समझ लेते हैं, झूठ नहीं है, झूठ जैसा जो लगे। तो उन्होंने तीन तरह के सत्ताओं की बात की
1: जी।
2: वेदांत में तीन तरह की सत्ता मानी जाती है, एक प्रातिभासिक सत्ता जिसमें रज्जु और सर्प का उदाहरण लिया जाता है कि रस्सी अंधेरे में सांप जैसी दिखती है, होती नहीं,
1: होता नहीं,
2: होता नहीं है। तो ये हो गया एक प्रातिभासिक सत्ता, आभास हो रहा है, रस्सी में सर्प का आभास होना, ये तभी तक होगा जब तक आपको रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। रस्सी का ज्ञान होते ही आप सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो वैसे ही संसार में जो विषयों के प्रति जो कामना है, इसका सत्य जब आपके सामने उद्घाटित होगा तो विषयों में जो आप वास करना चाहते हैं तो वो वास नहीं होगा, उसी को वास का न होना और वास का होना वासना कहलाता है।
1: अच्छा।
2: और जब विषयों में वास न हो तो उसको आप वैराग्य कह लें, तो वो स्थिति बनती है। तो ये हो गया आभासिक, जहां आभासिक ज्ञान हो रहा है। उसके बाद कहते हैं एक व्यवहारिक जगत है, कि व्यवहारिक जगत में दो के बीच व्यवहार होता है, जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जब दो के बीच व्यवहार होगा, तो इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जब उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं गोपियों के पास कि जहां जाइए इनको आप ब्रह्म ज्ञान दे के आइए, तो चूंकि ये प्रेम की भी कथा है तो ऐसे में देखें तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्म ज्ञान आदमी को शुष्क बना देगा, ऐसा नहीं है। अब उद्धव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शुष्क हो गए थे, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए गोपियों के पास भेजा, और उन्होंने कहा किसके प्रेम में आप लोग इस तरह से विह्वल हैं, वो ब्रह्म आप ही में तो है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ही वना पर। तो फिर गोपियों ने जो ज्ञान दिया, कहा कि ब्रह्म और हम में कोई भेद नहीं है, तो आपके हमें इस ज्ञान की जरूरत क्या है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो आप, हम तो अपने ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, हमारा कृष्ण जो है हमारा ही स्वरूप है, हमें किसी और के रूप में कोई आकर्षण नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में मस्त हैं। तो उद्धव ने कहा कि यह है व्यवहारिक सत्य, जहां पर रोना भी हो रहा है, हंसना भी हो रहा है, कहते हम तो उस कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे व्यवहार में वो है। तो व्यवहारिक सत्य हो गया, और पारमार्थिक सत्य में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसमें समानार्थी बनाते हैं आप।
1: अच्छा।
2: और इसका प्रसंग मैं आपसे लूंगा, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुझे किस रूप में जानते हैं, तो उन्होंने जब पारमार्थिक सत्य को उद्घाटित कहा, हनुमान जी ने कहा कि पारमार्थिक सत्ता में तो जो आप हैं वो मैं हूं, व्यवहारिक रूप में मैं आपका दास हूं, है ना। तो ये हुआ कि व्यवहार में आपको स्वामी और दास बनना पड़ेगा, माता और पुत्र बनना पड़ेगा, माता पिता बनना पड़ेगा, ये व्यवहार होगा इससे, लेकिन पारमार्थिक में तो एक ही सत्ता है, जिसके आप पिता हैं, जो पुत्र है वो भी वही है,
1: वही है। तो ये पारमार्थिक स्वरूप है व्यक्ति का,
2: व्यक्ति का, लेकिन आदमी इसको नहीं जान पाता। तो कहते हैं कि इसका कारण तृष्णा ही है। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं भरद्वाज को, कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होने के लिए बहुत तरह का प्रयास करता है, लेकिन जैसे आधी सले गड़े तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने न जाने कहां से कहां किस अयोग्य अवस्था में हमें पहुंचा दिया। ये राम जी देख रहे हैं
1: जी,
2: तो राम जी की दृष्टि है, और जिसकी भी दृष्टि ऐसी हो जाए वो समझिए वो राम जी की दृष्टि में जा रहा है। राम उससे दूर नहीं है, राम से वो दूर नहीं है।
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तृष्णा का जो स्वभाव है और इसका जो स्वरूप है, इसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगे आप?
2: तृष्णा का स्वभाव ये है कि यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नर्क में गमनागमन कराती है। अब देखिए आदमी यहाँ क्या करता है, हम लोग जो सामाजिक अनुशासन की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना, ये करणीय है, ये निषिद्ध है, अकरणीय है, ये धर्म है, ये अधर्म है, इसको करने से नरक होगा, इसको करने से स्वर्ग होगा। तो ये व्यवहारिक जो जगत है वो इसी तृष्णा से गवर्न है, अनुशासित है। कि ये कहते हैं कि तृष्णा जो है धर्म अधर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में गमनागमन कराती है, आगमन कराती है। तो अगर आप स्वर्ग के आकांक्षी हैं तो भी आप तृष्णा में हैं, और अगर आप नरक से भयभीत हैं तो भी आप तृष्णा में हैं। तो तृष्णा को जैसे ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आपका चित्त स्वर्ग और नरक इन दोनों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण सत्कम में कहते हैं कि जब बंधन नहीं तो मोक्ष कहां। यानी मोक्ष और बंधन इन दोनों के चिंतन से जो मुक्ति दिलाए वो तृष्णा का सत्य उद्घाटन है, तृष्णा के सत्य का उद्घाटन है। कि जहां पर मोक्ष की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। ये है तृष्णा का स्वभाव कि आपको इस तरीके से फंसाएगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि से जुड़ी रहती है हमेशा ही, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। इसका स्वभाव है कि ये हमेशा जड़ से ही जोड़ेगी आपको। स्वर्ग भी देखिए, आप कभी विचार करिए विभिन्न मान्यताओं में स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में आपने उन्हीं श्रेष्ठतम भोगों को स्थापित कर रखा है जिन भोगों के साथ आप यहां होना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो वहां भी जड़ पदार्थों की स्थापना हुई है। और नर्क में भी क्या आपने स्थापित कर रखा है, उन कष्टों का अपार विस्तार कर रखा है आपने, जिन कष्टों से आप अपने आप को यहाँ बचाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो कह दिया ये नर्क है। और उसी आधार पर आप जीवन के व्यवहार को अनुशासित करते हैं। तो तृष्णा हमेशा जड़ पदार्थों से संबंध रखती है। राम जी का चिंतन तो देखिए कि उस उम्र में 12 साल की अवस्था में, क्योंकि ये ब्रह्म का वैराग्य है, कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये देखें तो ये ग्रंथ बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है, और इस पर तो बहुत कह सकते हैं गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। तो तृष्णा का ये स्वभाव है कि जड़ के साथ संबंध रखेगी और सदा आपको विक्षुब्ध रखेगी, कभी शांति नहीं देगी।
1: अच्छा शशिकांत जी, ये जो ग्रंथ है ये क्या बताता है कि प्राणियों के नाश का क्या कारण है?
2: प्राणियों के नाश का कारण क्या है? उन्होंने साफ साफ कहा, राम जी ने कहा कि जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि तृष्णा काली नागिन के समान है, जो सहस्त्र कुटिलताओं से भरी है, जिसमें विषय सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं वो, कि विषय का सुख जहां भी आपने कल्पित किया, ये समझने की वो तृष्णा है और वो आपका नाश कराएगी। कहते हैं विषमता रूपी विष को ही ये उगलती है, मतलब इसमें कभी भी आप समत्व तो नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, योग को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध है सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। उन्होंने कहा कि समत्व योग है अर्जुन। और आप कभी विचार करके देखिए तो बुद्धि क्या आपको समत्व में रहने देगी? बुद्धि हमेशा विषम भाव को खड़ा करती है, विषमता खड़ा करेगी। तो ये जो तृष्णा है ये विषमता रूपी विष ही उगलती है, और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेगी। जैसे आप विषमता रूपी विष के संपर्क में आए, आप कहीं ना कहीं जो करणीय है, जो धर्म है, उसके शिकार हो जाएंगे या अधर्म के शिकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये डसेगी विष का ही आपको। तो इस तरीके से ये प्राणियों का नाश ही करेगी, चाहे वो आप इसे गंभीरता से अगर देखा जाए तो चाहे वो करणीय कर्म भी अगर आपकी वासना बन जाती है, आप किसी जड़ पदार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो आपका नाश करेगा। क्योंकि जड़ पदार्थ से आप चैतन्य से तो दूर होंगे ही ना।
1: जी तो हम यही समझें कि जो तृष्णा है उससे दुख ही दुख है।
2: तृष्णा से दुख ही दुख है। मैंने पहले भी कहा था
1: आपसे, यही उसका फल कहा जाएगा।
2: वैराग्य जब हुआ भर्तृहरि जी को, तो उन्होंने यही तो कहा कि ये तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। है ना?
1: जी
2: तृष्णा जीर्ण नहीं हुई।
1: हाँ। अच्छा, तो मोह से आच्छादित जो चित्त है
2: जी,
1: उसको किस तरह से शांत किया जाए?
2: जी, आपने सुंदर सवाल किया कि मोह से आच्छादित चित्त को कैसे शांत किया जाए। कहते हैं इस संसार रूपी जो ये विस्तार दिख रहा है ना, इसको इन्होंने विशाल वन कहा, और इसमें तृष्णा रूपी विष की बेल फैली हुई है। ये संसार में जो व्यवहार है वो तृष्णा से मुक्त व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहारिक जगत में आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि आपका व्यवहार कहीं तृष्णा रूपी काली नागन के द्वारा प्रेरित तो नहीं है, जहां पर आप विषय वासनाओं के विष का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मोह से आच्छादित चित्त होगा, क्योंकि ये तृष्णा आपके अधोपतन और उपद्रव रूपी फल को ही उत्पन्न करेगी, तृष्णा से कभी आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, अधोगामी बनाएगी
1: जी जी।
2: और आपके जीवन में उपद्रव उत्पन्न होगा
1: जी।
2: तो इसका एक उपाय है कि आप इस संसार के मोह से अपने को मुक्त रखें। संसार के मोह से मुक्त रहने के लिए पहले शरीर के मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतों से निर्मित है तो पंचभूतों की तरफ यह आकर्षित भी होगा। लेकिन आप अगर वैराग्य का दीप जल रहा है आपके अंदर, विवेक है आपके पास, तो आप ये जाने कि यह तृष्णा का प्रभाव है जो हमें अधोपतन या हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न करेगी और हमारा अधोपतन और चित्त को उपद्रव में ही ले जाएगी, चित्त को कभी शांत नहीं करेगी। तब जाके आप इस पर विजय पा सकते हैं या इसको समझ सकते हैं।
1: अच्छा, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि तृष्णा कैसे आती और जाती है, क्या कारण है इसका?
2: अब इसको कहा है इन्होंने कि ये तृष्णा कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ, देख कितनी बड़ी बात है कि कुहरे के समान है जहां आपको दिखेगा नहीं और मोह के आवरण से ढकी है। इसी को हम लोग कहते हैं माया। माया जब
1: जी,
2: कहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: माया का दो काम है, वो आवरण और विक्षेप उत्पन्न करना। विक्षेप का मतलब साफ साफ न देख पाना, सच न देख पाना, और आवरण का मतलब ढक लेना। तो ऐसे में तृष्णा मोह उत्पन्न करती है और ये जो है विवेक का प्रकाश आपके न मिलने पाए, ऐसा इसका होगा कि विवेक के प्रकाश से आप वंचित होकर के इसके अंधकार में, जैसे कोहरे के अंधकार में आप सत्य को नहीं देख पाते, ऐसे ही आप कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है और विवेक का प्रकाश छा जाने पर ही शांत होती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। ये तृष्णा इतनी इतनी प्रबल है कि जो साध्य नहीं है उसको भी ये आपका साधन बना देगी और उसमें चित्त को उलझा देगी और आप जीवन भर दुख के सिवाय, जैसे कहते हैं ना कि सुख को हम साध्य मानते हैं कि हमारे जीवन का साध्य सुख है
1: जी, जी, जी।
2: तो ऐसे में तृष्णा के कुहरे के नाते हम सुख के स्वरूप, जो हमारा स्वरूप ही है, अविनाशी जो स्वरूप है, वो सुख का सुख राशि है, जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सुंदर और सत्य है वो शिव है, लेकिन वो शिव एक तृष्णा के नाते आच्छादित है वो आपका, और आप मोह के शरीर के मोह में फंसकर संसार के विषय वासनाओं में ही शिव को खोजते रहते हैं। और आप विचार करके देखिए कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की शरण में भी अगर जाते हैं तो संसार ही लेके जाते हैं, भगवान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यानी वही भगवान हमें प्रिय है जो हमारे सांसारिक जड़ कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हो। तो अंततः हम तृष्णा के ही तो शिकार हुए ना, क्योंकि तृष्णा हमेशा जड़ के साथ आपको जोड़ेगी।
1: कौन मीरा की तरह जाता है, सभी कामना लेकर जाते हैं,
2: सब जाते हैं कामना लेकर के, और कामना हमेशा संसार की ही होगी, शरीर को तो संसार की ही कामना होगी, क्योंकि ये भी जड़ है। चेतना के बिना शरीर क्या है, जड़ है। और तृष्णा कभी चेतना के प्रति आपको चैतन्य होने नहीं देगी, हमेशा जड़ के साथ आपका संबंध जोड़ेगी। तो ऐसे में हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब हम अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं तो उस समय हमारा साध्य संसार है कि आराध्य है। तो तृष्णा क्या कर रही है, असाध्य को साधने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, जो संसार कभी सदा किसी का नहीं।
1: जी जी जी,
2: संसार आज तक का आप इतिहास उठा करके देखें, चूंकि ये दृष्टि राम जी की है इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को विवेक की दृष्टि है, विवेक से उत्पन्न वैराग्य है। देखिए एक बात मैं अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई बार हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन की असफलता से प्रभावित होकर के लोग वैराग्य की तरफ बढ़ पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर देखने में
2: यही आता देखने में यही आता है कि उनको संसार दुखद दिखा या उनके आसपास के लोगों को संसार में उन्होंने दुखद देखा तो ऐसे में उन्होंने संसार से पलायन कर लिया, जबकि वैराग्य बिल्कुल ये नहीं है। वैराग्य एक सत्य उद्घाटित होने के बाद संसार में किया जाने वाला व्यवहार है, जिसके लिए राम जी को उपदेश हो रहा है कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। राम जी भी व्यवहार से भाग रहे हैं।
1: जी जी जी,
2: सांसारिक व्यवहार से राम जी हट रहे हैं और हट गए हैं। जी, तभी ये गुरु उपदेश कर रहे हैं उनको।
1: हाँ,
2: है ना,
1: बिल्कुल।
2: और वो अपने चित्त की बात कर रहे हैं, उस वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं, और गुरु उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस संसार में जब तक हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक आप कर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब कर्म आप ऐसा करने लगो जिसमें न समाज की भलाई हो, न बताने योग्य हो, तो ऐसा कर्म तो आपने उसी दिन अपने आप को मार दिया। एक ऐसा आदमी जिसका कर्म संसार में प्रकाशित होने योग्य न हो, आप क्या समझते हैं वो आदमी जिंदा कब था? किसी ने कहा भी था कि हम मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए देर से जाते हैं।
1: जी,
2: तो ऐसा अगर हमने कोई कर्म नहीं किया, जिस कर्म को प्रकाशित न किया जा सके, बताया न जा सके, तो निश्चित ही हमारे जीवन पर सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में हमने, प्रकृति ने तो हमें वो सब कुछ दिया जो सबको देती है, तभी तो हम जिंदा रहे, लेकिन हमने क्या दिया?
1: बिल्कुल,
2: हमने तो जीवन के विपरीत व्यवहार किया ना।
1: जी जी,
2: तो इसीलिए विष्णु पालनहार हैं, और इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो,
1: जीने दो।
2: यही राम जी को सिखाया जा रहा है। हाँ। ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए समझते हैं कि तो अलग बात है, ये अलग बात है, अन्यथा देखें, कहते हैं कि राम पहले जो वैराग्य आपका हुआ है उससे आप तो जीना सीखो, क्योंकि आप तो जीने से भागने लगे।
1: अच्छा,
2: हो ना,
1: ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब भी संसार की निस्सारता का ज्ञान भीतर उतरता है तो इंसान फिर कर्म से छूटता है, है ना, और उनको फिर से इस ज्ञान के साथ कर्म में रत करने के लिए सारा उपदेश है, और यही हमें भी सीखना है।
2: मैं आपसे सुनीता जी कहूं, मनोविज्ञान आज जो तमाम मानसिक बीमारियों का अध्ययन कर रहा है, वो मानसिक बीमारियां व्यक्ति के कर्म न करने से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है करना वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है उसे चाहता नहीं है। फिर वो अंदर के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में इतना उलझ गया है कि वो अपने चित्त के साथ शांत नहीं रह पाता, अपने आप को जवाब नहीं दे पाता। कहते ना कि आप अपनी नजर में गिरने लगते हैं, फिर आपको संभाले कौन? तो ऐसे में फिर वैराग्य की आवश्यकता है, और वो वैराग्य जो असफलता से नहीं, विवेक से उत्पन्न हो, सत्य के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वैराग्य।
1: ज्ञान है, बिल्कुल
2: वैराग्य। अच्छा, ज्ञान है
1: जी। जी। अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि दो सवालों का जवाब आप दे दें कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है, और तृष्णा की हमने बात की है, तो तृष्णा के निवारण का क्या मंत्र है?
2: व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है? क्या आपने सुंदर प्रश्न किया कि व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है, संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। राम जी ने कहा
1: जी,
2: अब
1: जी,
2: सवाल आप देखिए कि संसार में जब आप देखेंगे कि जब अभी हमने बात की कि तृष्णा हमेशा जड़ चीजों से आपको जोड़ती है, तो स्वर्ग की कामना, क्या ये भी तो तृष्णा का ही हिस्सा है? तो अंत में हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना लेके बैठा है। तो राम जी की दृष्टि में तृष्णा ऐसी है, लेकिन हमारी तृष्णा तो स्वर्ग तक हमें ले जाती है। आप देखिए, हमारे लिए ये बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शास्त्र बहुत दुर्लभ और अद्वैत ज्ञान की बात करता है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए, जो आपके प्रश्नों से के साथ हम बढ़ भी रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि ये तृष्णा जो है, यही जो है व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है।
1: दूसरा निवारण का मंत्र
2: जी, इसके निवारण का कहते हैं मंत्र ये है कि इसके लिए कहते हैं ना कि सत्संग करें, तो कहते हैं ये जो संतों का संग है या इस तरह का जो चिंतन है, महर्षि राम जी कह रहे हैं, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान सूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यों को भी यह तृष्णा एक मात्र पल भर का याचक बनाकर रख देती है। सोचिए आप, यानी आप, एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति याचक क्यों बना हुआ है?
1: हाँ।
2: जब हम ब्रह्म हैं, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, अपने यहाँ हर जगह पंडित पूजन में बोलते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इतना गहरा घोष कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण से कुछ भी घटाओ वो पूर्ण ही रहेगा, जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण होगा, तो फिर ऐसे में व्यक्ति याचक क्यों है, क्यों मंदिर जा रहा है?
1: बड़ा प्रश्न है। जी जी।
2: तो ये इसलिए है कि वो तृष्णा का शिकार है। तृष्णा कुछ है नहीं, एक प्रकार की अज्ञानता है, जड़ पदार्थों से हमारा योग होने के नाते हम तृष्णा से ग्रस्त हैं। अगर हम चैतन्य का चिंतन करें, जो राम जी ने अपने वैराग्य दशा में तृष्णा की जो निंदा की है, वो इसलिए की है, मतलब वो बता सकें लोगों को कि देखो ये तृष्णा किस तरीके से तुम्हें पकड़े हुए है, और इस जाल में तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कर्म से सुखी नहीं हो, क्योंकि राम जी के वैराग्य का यही कारण था।
1: जी, जी,
2: उन्होंने वैराग्य किसी विषाद से नहीं लिया था।
1: हाँ।
2: जबकि गीता में अर्जुन को विषाद से वैराग्य होता है,
1: बिल्कुल,
2: यहां राम जी ने कर्म करते हुए लोगों को जब देखा तो कहा कि किसी भी कर्म से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो फिर उनके चित्त में ये अनुसंधान, ये प्रश्न फूटा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग किया तो तब गुरु वशिष्ठ ने, जो गुरु वशिष्ठ मतलब उसके पहले भी शिक्षा दिए हैं चारों भाइयों को, लेकिन अब जो योग के अंतरतम रहस्यों को जो श्री राम जी के सामने विश्वामित्र जी के मांगने पर जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को दिया है, तब दिया है जब उनके अंदर ये विवेक से उत्पन्न वैराग्य हुआ है।
1: तो मुझे ऐसा लगता है शशिकांत जी कि इस संसार में कोई भी ज्ञान
2: जी
1: हम नहीं जानते हैं, जिस बात को एक बार बताया जाता है तो वो ज्ञान हमें सांसारिक ज्ञान हो जाता है
2: जी।
1: फिर दोबारा उसे जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती
2: जी।
1: लेकिन ये जो ज्ञान है
2: जी,
1: ये अभ्यास मांगता है,
2: अभ्यास मांगता
1: है ना, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती
2: बिल्कुल।
1: है। तो ये सत्संग हमारा आपका बना रहेगा
2: जी, जी।
1: अगले अंक में भी आज आप उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में आपने सुना श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा विषय पर चर्चा। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सुश्री कलापिनी हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभाएं हैं। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमगली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और मौलिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती हैं। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध है।

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूं। तुकाराम का पद है, मेरे पूज्य पिता और गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने इसे स्वरबद्ध किया है।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो रिपोर्ट में पहले आज हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल स्टोरी टेलर्स के कार्यक्रम में, जहां रविवार को सफलता के पीछे छिपे संघर्ष की कहानियों ने प्रेरित किया।

0: जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: बट एट द एंड लॉन्ग टर्म गेम, जो एक बात बोलते हैं ना, एक्चुअली जो आप कर रहे हो ना, उसका एक टर्म होता है इवेंट आईपीस। आज के दिन ये टर्म काफी प्रचलित हो रहा है इवेंट इंडस्ट्री में, इवेंट आईपी। इवेंट आईपी मतलब इवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इवेंट तो कोई नई चीज़ है नहीं, दुनिया भर में सालों से हो रहा है, मतलब अरसों से होते आ रहे हैं इवेंट्स। अब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी ही आपकी स्ट्रेंथ आपके कॉन्फ़िगरेशन में है। कोई बड़े नाम, कोई छोटे नाम, बट बड़े लेवल पे, ऐसे समझो एक एग्जांपल के तौर पे, हमारे एक एडिशन में गुलजार साहब आए थे। किसी ने कहा गुलजार साहब आ रहे हैं भोपाल, एक सेशन हो रहा है उनका, काई के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई तो कुछ हो रहा है फेस्टिवल। तो मुझे समझ आया, जब तक मैं इन, बहुत अच्छे नाम है, बट अगर मेरा फोकस यही रहेगा ना कि मुझे नाम बुलाने, जो कि मेरा रहता था, मैं तब तक अपना नाम नहीं बना पाऊंगा। अपना नाम बनाने के लिए, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने भी, या कोई भी इस तरह की आईपी को आप देखोगे, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एज एन आईपी, कई रीजन से वो आईपी बना। आज मैं भी अगर एक लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा हूँ, तो वो आइडिया मैं क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से उठा के कर रहा हूँ। मैंने फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल कर दिया, बट एट द एंड ऑफ इट, लिटरेचर फेस्टिवल वॉज देयर आइडिया, एन इनिशियल आइडिया विच बूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स। इतने साल लग गए उनको एक नाम बनने में, जो जयपुर का एक बहुत प्रचलित नाम है।

अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा मानना ये किसी भी फेस्टिवल में जो जाए, जो लोग अटेंड करें, उनको उनके लिए कुछ टेक अवे होना चाहिए वहाँ से। आप क्या लेके जा रहे हैं वहाँ से? फॉर एग्जाम्पल जो राइट, एक तो वो लोग आएंगे जो सुनना पसंद करते हैं और दूसरे वो तो सुनाना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कैंस गया था, कैंस के अंदर एक सेक्शन होता है जिसे वो मतलब मार्केट प्लेस कहते हैं हम कॉन्टेंट का, जहाँ पर कॉन्टेंट खरीदने और बेचने वाले लोग भी आते हैं, उनकी नेटवर्किंग होती है, उनकी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब जब हम इससे एसोसिएट हुआ, स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स हु आर इन वर्किंग इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो क्रिएटिव डिसीजंस देते हैं वहां पर। आई हैव स्पोकन विद स्टेज, देयर इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टेज। सो इनके लोग आने के लिए तैयार हैं कि भाई हम आएंगे, अपना स्टॉल लगा के बैठेंगे, जिनको अपनी स्टोरी सबमिट करनी है हमारे पास आके सबमिट कर सकते हो। सो इट विल बी समथिंग कि यहाँ से उन राइटर्स के लिए भी टेक अवे होगा।

एब्सोल्युटली आई थिंक ये है, और इस बार हम उसको उस सबसे पहले उसी मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं. वी आर फाइनलाइजिंग अ वेन्यू विद इन द सिटी, विद इन द लिमिट्स ऑफ द सिटी. अब इसी इसी जवाब के साथ और इस उम्मीद के साथ कि भोपाल कहानियों का शहर बनेगा, और जो कि है भी, बट यहाँ पे और ऑर्गेनाइज तरीके से, और बट इवेंचुअली वी विल मेक भोपाल द स्टोरी टेलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड देन वील गो बियॉन्ड इंडिया. और हम अच्छा फेस्टिवल करेंगे.

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं भारत भवन में, जहां सादा नीरा समागम के तहत कई प्रस्तुतियां हुई। यह निमाड़ी गायन की प्रस्तुति, कलाकार हैं मनीषा शास्त्री और उनके साथी।

नर्मदा के पावन तट से आए हम निमाड़ के कलाकार, आप सभी को हमारा नर्मदे हार। अगली प्रस्तुति हमारी है आयो महीनो आषाढ़ को। आषाढ़ के महीने में किस प्रकार से पानी गिरता है और क्या क्या होता है, वो गीत के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
2: तारीख मध्य प्रदेश की धरती ने एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया।
1: मैं जानती हूँ आज तुम मध्य प्रदेश की धरती का गुणगान क्यों कर रहे हो।
2: अच्छा, क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि तुम मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हो, जहाँ 3 जून 1891 को राय साहब त्रिलोक्यनाथ मुखर्जी के घर एक महान क्रांतिकारी अवनीनाथ मुखर्जी ने जन्म लिया था।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुम।
1: अवनीनाथ के बचपन में किसने सोचा था कि आगे चलकर वह महान क्रांतिकारी बनेगा।
2: हाँ तारीख, अवनीनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ। अवनीनाथ ने वस्त्र उद्योग में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस कला के उच्च अध्ययन के लिए पहले वे जापान और फिर जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन दिनों भारतीय क्रांति की फसल पनप रही थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्र वातावरण इसके लिए काफी अनुकूल था। अनेक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। अवनीनाथ उनके संपर्क में आए तो फिर पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए, ऐसे कि उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का संकल्प ही ले लिया।
1: हाँ, कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी श्रृंखला की प्रमुख कड़ी बन गए। जर्मनी के प्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क से भारत में पहुंचने के लिए हथियारों का प्रबंध करना अवनीनाथ का प्रमुख दायित्व था।
2: ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग ने उन्हें भयानक क्रांतिकारी की संज्ञा दे रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जासूसों का एक पूरा दल उनके पीछे छोड़ दिया था। पर अवनीनाथ जासूसों की जासूसी करने की कला में निपुण थे। उन्हें कोई ब्रिटिश जासूस जानता ही नहीं था कि आखिर अवनीनाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी कौन सा है। इसके चलते कई बार वे अपने लिए तैनात जासूसों के साथ ही सफर कर चुके थे और कोई ब्रिटिश जासूस जान ही नहीं पाया था कि उनके साथ सफर करने वाला व्यक्ति वही अवनीनाथ मुखर्जी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बेचैन है।
1: अपने दायित्व की पूर्ति के सिलसिले में सन 1912 में जब अवनीनाथ भारत लौटे तो अपने शक की जाँच के लिए ब्रिटिश जासूसों का एक दल भी उनके पीछे पीछे भारत आया। कुछ दिन ब्रिटिश जासूसों की आंखों से ओझल रहने के लिए अवनीनाथ ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में प्राध्यापकी स्वीकार कर ली। प्राध्यापकी तो केवल बहाना थी, उद्देश्य था वृंदावन को कुछ समय के लिए आश्रय स्थली बनाना। उचित अवसर पाकर अवनीनाथ वृंदावन से गायब होकर जापान जा पहुँचे। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार इकट्ठे करने की योजना अभी अधूरी जो थी।
3: ओ

0: जापान से शस्त्र विक्रेताओं से सौदा करके अवनीनाथ जब जापान से भारत के लिए जहाज पर सवार हुए तो साथ ही एक ब्रिटिश जासूस भी उनके साथ उस जहाज में सवार हो गया। जिस केबिन में अवनीनाथ यात्रा कर रहे थे वह जासूस भी उसी केबिन में उनका सहयात्री बन करके उनसे मित्रता गाढ़ने की गरज से तरह तरह की बातें करता रहा। यूं तो अवनीनाथ के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, पर जापान के शस्त्र विक्रेताओं के कुछ पते जरूर एक कागज पर लिखे हुए थे। जब वह सहयात्री नहाने के लिए स्नान गृह में गया तो अवनीनाथ ने पते वाला कागज शैया के मोटे गद्दे के नीचे दबा दिया और निश्चिंत हो गए।
1: पर जासूस ने अवनीनाथ की तलाशी लेने के लिए एक चाल चली। जब जहाज सिंगापुर पहुंचा तो वहां बंदरगाह पर भारी सरगर्मी थी। अवनीनाथ को शक तो हुआ पर वे जासूसों की चाल समझ नहीं पाए। फिर वे अपने पास का एकमात्र आपत्तिजनक पते वाला कागज अपने कब्जे से हटा ही चुके थे, सो निश्चिंत बने रहे। ब्रिटिश जासूसों ने केबिन में दवा छिड़कने के बहाने अवनीनाथ मुखर्जी और उनके सहयात्री को केबिन से बाहर निकाला और तलाशी का काम शुरू कर दिया।
0: आखिर तलाशी में जापान के शस्त्र विक्रेताओं के पते वाला कागज जासूसों के हाथ लग ही गया। ब्रिटिश जासूसों ने समुद्री तार द्वारा जापान से इस बात की पुष्टि कर ली कि अवनीनाथ मुखर्जी उस कागज पर लिखे पतों ठिकानों पर हथियारों की खरीद के लिए पहुंचे थे। अवनीनाथ मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अवनीनाथ ने लाख सफाई दी कि उस कागज से उसका कोई वास्ता नहीं है। फिर वह कागज उनके पास से बरामद भी नहीं हुआ है बल्कि सहयात्री के गद्दे के नीचे से निकला है, पर उनकी कोई दलील नहीं सुनी गई। जापान के शस्त्र विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी उनके विरुद्ध थी। उन्हें सिंगापुर से गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
1: भारत पहुंचने पर गिरफ्तारी की अवस्था में अवनीनाथ कब और कैसे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से निकल भागे कोई नहीं जान पाया। वह रहस्य ही बना रहा। इधर भारत में पुलिस इस मामले की तहकीकात और अवनीनाथ की पुनः गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी रही। उधर अवनीनाथ मुखर्जी सबको चकमा देकर हॉलैंड जा पहुँचे।

0: भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी यह घटना कम विस्मयकारी नहीं थी कि भारत से गायब होकर के हॉलैंड में अवनीनाथ मुखर्जी न केवल द्वितीय कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, बल्कि कुमारी रोशा फिटिंगफ के साथ प्यार की पेंगे भी बढ़ा रहे थे। आखिर हॉलैंड में ही रहते हुए उन्होंने रोशा फिटिंगफ से 1920 में विवाह कर लिया।
1: सन 1922 में अवनीनाथ मुखर्जी बर्लिन में थे और अपने पुराने क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हॉलैंड से गायब होकर वे कब बर्लिन पहुंचे, कोई नहीं जानता था। बर्लिन में उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे उनमें सुरेंद्र कर, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रमुख थे। अवनीनाथ मुखर्जी इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे।
0: बर्लिन में मौजूद क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि वह समय आ गया है जब उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत पहुंचकर विभिन्न प्रांतों में गुप्त संगठनों द्वारा विद्रोह की भूमिका बनाए। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल हुलिया बदलने में माहिर हो वरन आवाज बदलकर विभिन्न प्रांतों की बोलियों के लहजे में भी बात कर सके। सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से इसके लिए अवनीनाथ मुखर्जी का चुनाव किया, क्योंकि हुलिया और आवाज बदलने में उन्हें इतना कमाल हासिल था कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कई अवसरों पर वे अपने इस हुनर का लोहा मनवा चुके थे।
1: आखिर अवनीनाथ मुखर्जी अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे। अत्यंत कुशलता के साथ उन्होंने साथियों द्वारा सौंपा गया दायित्व पूरा किया। मद्रास, गया, कलकत्ता और ढाका नगरों में उन्होंने क्रांति की संरचना पूरी सफलता के साथ नियोजित की। अपना काम पूरा करके वे सन 1924 में यूरोप के लिए रवाना हो गए।
0: रूस के मास्को नगर में रह करके उन्होंने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें आजादी के लिए भारत का दावा पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रूसी प्रवास में ही भारत की आजादी के चिंतक, भारत माता के सपूत अवनीनाथ मुखर्जी ने 28 अक्टूबर 1937 को अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी और अपना नाम हमेशा के लिए भारत के महान सपूतों की सूची में दर्ज करा दिया।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, और आज कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे HIV एड्स की। साथियों, यूं तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती जाती रहती हैं और उनका उपचार भी हमें मिल जाता है। हम समय पर दवाइयां लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज पूर्णतः हम अभी तक भी ढूंढ नहीं पाए हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज और अपने नाम से ही लाइलाज सा लगने वाला HIV/AIDS। जी हाँ श्रोताओं, जितना इसका नाम खतरनाक है ना, उतनी ही ये बीमारी भी भयावह है, क्योंकि जरा सी लापरवाही का एक ही परिणाम है और वो है असमय मृत्यु। तो श्रोताओं, HIV/AIDS के विरुद्ध लड़ाई के लिए लोगों को एकजुट करती हैं हमारी आज की अतिथि। आज HIV/AIDS के कारण, लक्षण और समाधान पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं काउंसलर और सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती संध्या सक्सेना। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नमस्कार।
2: धन्यवाद मैम।
1: HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक प्रथम चरण है और दूसरा उसका अंतिम चरण यानी बीमारी। मैडम, आपसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि HIV क्या है?
2: HIV मैम एक वायरस है
1: जी,
2: और एड्स एक बीमारी है।
1: मैडम, अगला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें सबसे अधिक HIV फैलने की संभावना रहती है?
2: मैम, पहला कारण है इसका संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से
1: जी।
2: दूसरा है संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे को। तीसरा है संक्रमित सुई से अगर कोई व्यक्ति इंजेक्शन लगाता है तो उससे होता है
1: जी।
2: और चौथा है संक्रमित ब्लड लेने से। ब्लड भी जब भी लें तो जांचा परखा ब्लड बैंक से लेना चाहिए।
1: जैसा कि आजकल आधुनिकता के चलते मैडम व्यक्ति में धैर्य या संयम बहुत ही कम हो गया है, हमारे संस्कारों में पहले ब्रह्मचर्य से रहना सिखाया जाता था, लेकिन आजकल संस्कारों की सीमाओं को कहीं ना कहीं लांघा जा चुका है, तो क्या कहना चाहेंगी आप विशेषकर युवा वर्ग से?
2: मैं यही कहूँगी कि समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि जो पहले युवाओं में जो चीज़ें थी वो आज नहीं है
1: जी।
2: तो जो भी करें तो बहुत सावधानी से रखें ताकि हम जिसके साथ जो भी संबंध बना रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। इसके लिए कॉन्डोम यूज करें हमेशा
1: जी।
2: युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा युवा वर्ग देश का भविष्य है
1: जी।
2: अगर ये भविष्य खतरे में जाता है तो हमारा जाहिर सी बात है कि देश खतरे में जा रहा है।
1: मान लीजिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति, आपने कहा कि युवा वर्ग मानता नहीं है या परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं और उनको ऐसा पता चलता है कि उनका जो HIV टेस्ट वो कराना चाहते हैं, तो वो कैसे करा सकते हैं, कहाँ से करा सकते हैं?
2: मैम, HIV टेस्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सभी जगह होता है
1: जी।
2: हम उसे ICTC कहते हैं
1: जी। जी,
2: वहाँ पे काउंसलर रहती हैं, वो काउंसलिंग करती हैं और जो भी जिसका भी टेस्ट हो रहा है अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके और जो काउंसलर मैम होती है, सर होते हैं, जो भी है गोपनीयता रखी जाती है
1: जी,
2: इसमें
1: जी।
2: सबसे पहले तो इसमें गोपनीयता रखना ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब तक हम गोपनीयता नहीं रखेंगे तो सामने वाला हमसे कोई चीज शेयर नहीं करेगा
1: जी। जी जी,
2: तो इससे ना डरे टेस्ट कराने वाला जो भी है व्यक्ति कि ये चीज उजागर हो जाएगी। उजागर नहीं होगी कभी भी। अगर पॉजिटिव आता है तो उसका 3 बार टेस्ट होता है, 3रे बार में फाइनल होता है कि हाँ ये पॉजिटिव है। इसके लिए ना डरे किसी भी तरह की, अपने मन में वो ना लाए कि हमारी गोपनीयता भंग हो रही है या किसी से हम कह देंगे, टेस्ट करने वाला व्यक्ति कह देगा
1: जी।
2: ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चिंत होकर अपना टेस्ट कराएं।
1: जैसे HIV/AIDS का जब पता चलता है तो आप एक काउंसलर भी हैं, स्वास्थ्यकर्ता भी हैं, तो आप मरीज को गोपनीय रखती हैं, तो कैसे निर्धारित करती हैं आप? पहली बात ये कि आप उसके परिवार को ये बात पता होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से या पता नहीं होनी चाहिए? जैसे आपने कहा अभी कि हम उस बात को सीक्रेट रखते हैं,
2: बगैर पेशेंट की अनुमति के बगैर हम किसी को नहीं बता सकते हैं।
1: अच्छा,
2: ओनली पेशेंट से हम जब अनुमति ले लेते हैं उसके बाद ही, अगर मैरिड है जो मेल है फीमेल है तो उसके हम पार्टनर को तभी बता सकते हैं जबकि हमें उसकी अनुमति मिल जाती है। एकदम ऐसे नहीं बता पाते हैं कि इसे HIV हो गया है।
1: जी जी।
2: पता चल रहा है कि वो सुनने पे, मतलब HIV एक ऐसा है कि कई लोगों को
1: पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
2: सुनने से बहुत घबरा जाते हैं। और जिस जो पॉजिटिव निकलता है हम उसे भी ऐसे नहीं बता हैं कि आप HIV हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत उसे समझा बुझा के, और कुछ नहीं है ये तो छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। फिर हम लोग AIT से लिंक कराते हैं उसे, तो वहाँ से दवाइयाँ वगैरह दिलवाई जाती हैं, दवाई रहेगी आपकी, आप दवाइयाँ खाइए टाइम टू टाइम, एकदम ठीक हो जाएंगे। मतलब वो इंसान व्यक्ति ये है ना, मैं टूट जाता है अंदर से, जहाँ उसने HIV का नाम सुना वहाँ पे बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। क्योंकि मैंने भी देखा है ऐसे कई लोगों को तो पसीना आ जाता है, ठंडा कांप जाते हैं इस तरह की हो जाता है।
1: जैसे आपने कहा कि आप मतलब उनको समझाती हैं, तो जैसे आप कई बार स्वास्थ्यकर्ता भी हैं तो घर घर जाकर एक जागरूकता अभियान छेड़ती हैं, या आप ऑफिस में भी कई बार रहती हैं तो HIV/AIDS के बारे में लोगों को समझाती हैं। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम इंसान जो है ना वो इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहता, या करना भी चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं संकोच रहता है। तो आप किस तरीके से बात करने की शुरुआत करती हैं जब आप घर घर जाती हैं या ऑफिस में रहती हैं? क्योंकि मैडम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके ऊपर जिसे आपको पूरा करना होता है।
2: घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उन लोग से ऐसे फैमिली वो बनाने पड़ते हैं, जैसे फैमिली वाला मेंबर होता है, फैमिली मेंबर्स की तरह उनके साथ हमें बैठना उठना होता है उनके साथ। तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हम मैम हैं, हम आप हमारे वो हैं, हम पेशेंट हैं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। फैमिली मेंबर की तरह बहुत प्यार से उन्हें डील करना पड़ता है। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि अगर हमें बाय द वे पता चल जाता है टेस्ट के बाद कि बहू या बेटी जो भी है पॉजिटिव आए हैं, तो हम फिर धीरे से उनको बताएंगे कि सबसे ऐसे ही बोलना पड़ता है वहाँ भाभी भैया आंटी अंकल जी करके कि क्या बात है, ये कब से तबीयत इनकी खराब हो रही है। या उन लोगों को फिर मैम अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उन्हें कोई भी दवाइयाँ नहीं लगती हैं, उन्हें केवल AIT की ही दवाई से आराम मिलता है। बाकी अगर ऐसे किसी डॉक्टर को भी दिखा भी देते हैं तो वहाँ पे उन्हें आराम नहीं मिलता है।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि पता चल जाता है कई बार जैसे बीमारी का, तो दवाइयाँ कैसे आप उन मरीजों को देते हैं? क्योंकि कई बार ये भी परिस्थितियाँ बनती हैं, ऐसा सुनने में भी आता है कि जो मरीज है वो दवाइयाँ ही नहीं खाते हैं, तो क्या ये दवाइयाँ जो आप देते हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, या कोई सरकार इसमें मदद करती है, या पेशेंट जो है वो खुद उसके लिए खर्च उठाता है?
2: नहीं जी मैम, ये सरकार की तरफ से मिलती है।
1: सरकार की तरफ
2: से पेशेंट को भी नहीं देना होता है, हमें भी हमारे तरह से कुछ नहीं करना है, सरकार देती है, ये फ्री दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ।
1: तो मरीज को आप कैसे समझाते हैं जो मरीज दवाइयाँ नहीं खाते हैं?
2: मरीज को मैम हम बहुत काउंसलिंग करते हैं, बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। हमसे अगर नहीं समझते हैं तो जो मेरे सीनियर है मेरे ऑफिस में वो लोग समझाते हैं, उनसे भी अगर समझ में नहीं आती है तो फिर हम काउंसलिंग उनकी ICTC गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहती है, ICTC रहती है, वहाँ पे मैम वगैरह से करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, वो फिर AIT पे भी जाके काउंसलिंग करवाते हैं उनकी, तो फिर आ जाता है धीरे धीरे समझ में। कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना ही समझाओ उन्हें समझ में नहीं आता है, तब वो बीमार पड़ जाते हैं बुरी तरह से। क्योंकि हम तो उनका समय समय पे हर 15 दिन में उनकी जानकारी लेते हैं, उनके घर जाना है, उन्हें देखनी है कि भाई आपकी डायरी दिखाइएगा हमें, आपने दवाई कब से नहीं ली है, या डब्बी मिलती है मैम दवाई की, तो वो देखते हैं, उसमें 30 टैबलेट मिलता है तो उसको देखते हैं कि आपकी कितनी खत्म हो गई है, कितनी खाई है। मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह मैम उनको हमें देखरेख करनी पड़ती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और ये बीमारी ऐसे छींकने खांसने से या छूने से, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से ऐसे नहीं फैलती है। ओनली इसके 4 कारण हैं मैम जो मैं बता चुकी हूँ, उसी से फैलनी है। बहुत काउंसलिंग के बाद समझ में आती है, फिर उन लोग को समझ जाते हैं,
1: तो कहीं ना कहीं जागरूकता आती ही है। आप जो प्रयास है उनसे कहीं ना कहीं
2: हम लोग भी प्रयास करते हैं, बाकी और हमारे जो सीनियर्स हैं वो लोग भी सारे प्रयास करते हैं।
1: नहीं, कुल मिलाकर एक टीम वर्क जो है,
2: पूरा टीम वर्क
1: पूरा काम करता है
2: मैम, पूरा टीम वर्क ही होता है। अगर मैं अकेले अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को कर लूँ तो नहीं कर पाऊंगी। पूरा टीम वर्क रहे
1: क्योंकि बीमारी जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है।
2: ये बीमारी एक ऐसी होती है ना HIV के, इसमें समाज भी मतलब एक झिझक देता है, हर इंसान को अलग कर देता है कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है उसके फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें एचआईवी एड्स है, आप हमारे घर में मत रहो, हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमसे ये कहेंगे अरे इसको एचआईवी एड्स है। ये पता नहीं रहता कि एचआईवी एड्स किस कारण फैला है। इसका ये कारण नहीं है कि हम किसी के साथ संभोग कर रहे तो फैल रहा है, एक ही कारण नहीं है इसके, क्योंकि मैम इसके चार कारण है। अब वो चार में से तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं चारों में से। मैम इसका पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है संक्रमित माँ से उसके होने वाले शिशु को। तीसरा कारण है संक्रमित व्यक्ति की सुई से, जो एक सुई से चार लोग इंजेक्ट करते हैं उससे। और तीसरा संक्रमित ब्लड लेने से।
3: जी
2: इसके चार कारण तो हैं, लेकिन सबका ध्यान पहले कारण पे जाता है। अगर कोई एचआईवी आ जाता है तो सबसे पहले बस वो एक ही कारण पे जाता है कि इसी कारण हुआ है ये।
3: यानी कहीं ना कहीं देखिए कि आपका कहना ये है कि जो पेशेंट है उसको भी कितनी सारी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
2: उसे तो पल पल मतलब हर कदम पे चुनौतियों का सामना करना है।
3: जैसे मैं आपकी बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, जैसे आप लोग स्वास्थ्यकर्ता रहते हैं तो कैसे उन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं?
2: कई बार ऐसा होता है कि मैं भी आईटी पे दवाइयाँ दिलाने पेशेंट को लेके जाती हूँ, तो मेरे भी वहाँ पे जान पहचान वाले
3: डॉक्टर्स
2: हाँ सभी लोग हैं। डॉक्टर्स वगैरह तो जानते हैं कि भाई ये तो संस्था में काम कर रही है तो इसलिए आई है। बाकी और जो मिलने वाले मिल जाते हैं, मुझे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ,
3: तो आपके लिए भी एक चुनौती है,
2: मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
3: काम करते हैं मैडम, आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, जैसे व्यक्ति जो रहता है वो एचआईवी टेस्ट कराना चाहता है तो ऐसा सुनने में आता है कि 2 से 3 बार किया जाना चाहिए, तो लोगों में कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं कि एक बार में कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या ये सही बात है कि 2 से 3 बार में कराना चाहिए?
2: पहली स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग बोलते हम, हमारे ऑफिस में ही करते हैं। अगर ऑफिस में आता है ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं से है सिम्टम्स है, तो फिर हम इसके आईसीटीसी में टेस्ट कराते हैं। तो आईसीटीसी में भी वो लोग 3 बार टेस्ट लगाते हैं, जब तीसरा हो जाता है, तीसरे में फाइनल होता है कि हाँ है पॉजिटिव
3: है या नहीं है, दोनों परिस्थितियां पता चल जाती होंगी। मैम, एक आमजन और एक संक्रमित व्यक्ति, दोनों को आप कैसे समझाएंगी?
2: आमजन और पॉजिटिव समझाने का नजरिया तो मैम हमारा दोनों का एक ही रहता,
3: एक ही रहता है
2: क्योंकि हम दोनों को एक ही पल्ले में रखते हैं। अगर अलग अलग रखेंगे तो फिर हमें भी मुश्किल होंगी थोड़ी सी, और उसको भी लगेगा कि ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ दोनों का समझाने का एक ही वो रहता है दोनों लोगों को। लेकिन इसके भी बीच में फिर जो पॉजिटिव है, फिर उसे हमें वन टू वन उसके साथ बात करनी पड़ती है, और ग्रुप में तो उसे कर ही नहीं सकते
3: क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन कौन सी सुरक्षाएं आपको रखनी है।
2: जी
3: अच्छा मैडम, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि एचआईवी के लक्षण जो है वो महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होते हैं या लगभग एक जैसे ही होते हैं?
2: नहीं मैम, एक सेम रहता है,
3: एक जैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा लक्षण आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, कौन कौन से वो लक्षण रहते हैं जो एचआईवी में, जब व्यक्ति में थोड़े कुछ लक्षण जो शुरुआती होते हैं?
2: जैसे वजन कम होना,
3: जी
2: कहीं की दवाइयां ना लगना उसे,
3: जी
2: और उल्टी होना, जी मचलाना, इस तरह के लक्षण होते हैं।
3: बहुत सामान्य से लक्षण है, यानी कहीं ना कहीं
2: क्योंकि ऐसे अगर हम बीमार होते हैं तो कोई भी डॉक्टर को दिखा देते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। अगर बाय द वे हमें पता नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं तो फिर हमें कहीं की दवाइयां नहीं लगेंगी, हम दुबले पतले होते जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उल्टियां होंगी, वजन कम होगा, जी मचलाना, इस तरह के सिम्टम्स होता है।
3: यानी शुरुआती दौर में आपको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये।
2: हाँ जी मैम, और सबसे पहला ये है कि सभी जगह कहीं पे भी, एक अगर प्रेग्नेंट महिला भी है तो सबसे पहले उसका पता चलता है कि भाई प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट मंथ है, तो उसके एचआईवी टेस्ट होता है।
3: जी
2: क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो एचआईवी टेस्ट तो इम्पोर्टेंट रहता है।
3: जी अच्छा मैडम, एक और सवाल हमारे दिमाग में इस समय आ रहा है कि क्या एचआईवी एड्स का इलाज मिल पाया है जिससे इस महामारी से व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सके?
2: मैम इलाज तो है इसका, बट ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ दवाइयाँ आप कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू हमारा पेशेंट अगर दवाइयाँ खाता है, एआरटी की दवाइयाँ खाता है, तो ये है कि एक लंबा समय, अपना लंबा जीवन अच्छे से गुजार सकता है, जी सकता है,
3: लेकिन वो दवाइयों के ही,
2: दवाइयों के ही। अगर 1 महीने भी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो फिर वो इसी तरह का होने लगता है, वो उल्टी होना, कमजोरी होना शरीर में, भूख ना लगना, इस तरह का। दिक्कतें होने लगती हैं।
3: अच्छा मैडम, कई बार नशे की लत के कारण या आर्थिक समस्याओं के चलते या कई सारे ऐसे कारण होते हैं जो HIV संक्रमित व्यक्ति हैं वो दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं, तो कितना ज़रूरी है दवाइयाँ लेना, और यदि दवाइयाँ छोड़ दी जाएँ तो क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं व्यक्ति की सेहत के लिए?
2: मैम, दवाइयाँ लेना तो इतना ज़रूरी है जैसे कि हम सांस लेते हैं, इस तरह की दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। लाइफ टाइम दवाइयाँ लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे।
3: जी जी,
2: दवाइयाँ नहीं लेंगे तो फिर अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि कितना वो होता
3: कहीं
2: है
3: ना कहीं हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम वो कमजोर हो जाएगा और
2: सिस्टम है बीमारियां घेर हमारा लेंगे। बीमारियां
3: जी जी
2: हमें
3: जी
2: घेर लेती हैं चारों तरफ से
3: जी,
2: तो
3: जी,
2: फिर जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ, शरीर का बीमारियों ने घेरा
3: जी,
2: तो फिर दिक्कतें होती हैं हमें आगे जीवन जीने के लिए।
3: युवा वर्ग को आप खास तौर से क्या कहना चाहेंगी कि एक जो युवा वर्ग एक अपने दोस्त से ही बातचीत करता है तो वो खुद HIV से कैसे अपना बचाव करे, कैसे समझदारी रखे और अपने युवा साथी को कैसे वो समझाए?
2: सबसे मेन पॉइंट इसका ये रहता है कि HIV के बारे में अगर हम किसी को जानकारी दे रहे हैं तो उनको सही जानकारी दें। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम उसे जानकारी ना दें। कभी कभी ये भी होता है ना कि गलत जानकारी भी बहुत बड़ा खतरनाक कोई हमारे सामने स्थिति ला के खड़ा कर देती है।
3: कहीं ना कहीं देखिए जानकारियों का अभाव जो है अफवाहों को भी फैलाता है, तो अफवाहें अगर दिमाग में घर कर जाएं तो वो एक मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो सही बात आपने बोली कि सही माध्यम से आप जानकारी लें और अगर जानकारी आपके पास उचित नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना बांटें,
2: क्योंकि गलत जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। हम तो गलत हैं, पता चल रहा है कि सामने वाले को भी हमने अगर गलत जानकारी दे दी है तो वो सही होते हुए भी फिर वो गलत हो जाता है।
3: अच्छा मैडम, आज के परिवेश की अगर हम बात करें जिसमें हम हर बात जो है वो अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन ये जो HIV/AIDS एक ऐसा विषय है कि बेडरूम की बातें हम लिविंग रूम में कैसे करें, सोचकर हम खुद भी कतरा जाते हैं इस विषय पर बच्चों से बात करने से। और आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर के माहौल के कारण कई सारे सवाल लेकर आते हैं, उनके मन में कई सारी जिज्ञासाएं पनपती हैं, एक एज के बाद में उनका शरीर भी जो है वो हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि बच्चा जो है वो 9वीं-10वीं में आ जाए तो क्या उससे HIV/AIDS के बारे में बात करनी चाहिए?
2: बिल्कुल मैम, करनी चाहिए।
3: और करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए
2: मैम? क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों से, और मैं तो ये कहूंगी मैं कि अपने पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को सही जानकारी नहीं देंगे घर में
3: जी जी,
2: तब तक कि वो कहते ना मन भटकता है
3: जी जी,
2: क्योंकि बच्चे जहाँ 10-15 साल 12-13 साल के होते हैं तो एक मन में नए नए प्रश्न उठते
3: जी
2: हैं
3: जी जी,
2: कि भाई ये कैसे से कैसे होता है, जहाँ सुन लिया उनने कि HIV क्या है तो वो सोचेंगे कि HIV क्या है, कैसे होता है। जब तक कि हम बच्चों के पेरेंट्स सही जानकारी उन्हें नहीं देंगे तो वो कहीं पर भी एक गलत रास्ता भी शायद अपना लेंगे।
3: जी जी जी। अच्छा मैडम, ऐसा होता भी अक्सर कि जिस विषय को हम बच्चों से छुपाते हैं बच्चे उसी विषय को ज्यादा पूछते हैं। जी जी,
2: और वे पूछते भी हैं मैम, और कहीं कहीं बच्चे सही भी हैं
3: जी जी,
2: क्योंकि बच्चे हमसे सही चीज पूछ रहे हैं। अगर आपने वही चीज घुमा फिरा दी
3: जी
2: और
3: जी
2: उसे सही आंसर नहीं दिया फिर वो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाएगा।
3: आपने ही भटकाने की शुरुआत आपने कर दी,
2: क्योंकि हमें पता है कि हमने ही बच्चे को भटका दिया है। इसलिए सही उसे जानकारी दीजिए, HIV/AIDS कोई बुरी चीज नहीं है, इसके बारे में जितना भी खुल के आप अपने बच्चे को बताएंगे तो उसे उतने अच्छे से जानकारी मिलेगी, ताकि अगर वो कहीं पे भटकना भी चाह रहा होगा
3: जी जी, तो समझ जाएगा
2: जी जी।
3: मैडम, जैसे कई बार पता चलता है समाज में HIV संक्रमित व्यक्ति है कोई भी, या माता पिता से किसी बच्चे में, आपने जैसे कहा कि माँ से बच्चे में बीमारी आ जाती है, तो बच्चा अगर संक्रमित है पता चल जाता है स्कूलों में तो उसे भेदभाव होने लगता है, कई बार वो छुआछूत जैसी स्थितियों का भी सामना करता है, कई सारी समस्याएं चुनौतियां उसके सामने आती हैं। तो इस तरह की जो एक भ्रांति है कि एड्स जो है वो छुआछूत से फैलता है, क्या ये सही है, या फिर बच्चे के प्रति जो व्यवहार समाज के द्वारा हो रहा है ये सही है क्या?
2: नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भेदभाव कभी भी किसी से नहीं रखना चाहिए
3: जी जी,
2: क्योंकि ये छुआछूत से नहीं होना, मैं फिर इस चीज को रिपीट करूंगी कि ये छुआछूत से नहीं होता है, ना छूने से होता है, ना साथ में खाना खाने से होता है
3: जी जी,
2: ना बात करने से होता है, ना आप एक टॉवल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी नहीं हो रहा है। ओनली इसके चार कारण है जो मैं बता चुकी हूँ, उससे ही होना है, बाकी ऐसे नहीं होता है। स्कूलों में भी ये सारी चीजें गोपनीयता रखी जाती है।
3: मैडम, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि HIV का कोई टोल फ्री नंबर है जिस पर व्यक्ति जानकारी ले सकता है?
2: हाँ जी मैम, बिल्कुल है, परवरिश का, अगर हमें कहीं से सही जानकारी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स के द्वारा भी नहीं मिल रही है और स्कूलों में भी नहीं मिल रही है, हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं मिल रही है, तो इसका टोल फ्री नंबर है 1097
3: जी।
2: ये नंबर आप डायल करेंगे तो इस पे आपको सारी जानकारी HIV एड्स के बारे में मिलेगी।
3: अच्छा, चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी अब आप?
2: मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि 2025 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार
3: जी,
2: क्योंकि हम जहां अपने स्वास्थ्य के लिए जानकारी रखेंगे, जागरूक रहेंगे
3: जी,
2: तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दूसरा भी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे
3: जी जी।
2: और जानकारी ही जागरूकता है
3: जी जी,
2: यही कहूंगी। हम जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे
3: जी
2: तो
3: जी,
2: हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं। इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सभी लोगों को अपना 6 माह में HIV टेस्ट तो कराना चाहिए, क्योंकि मैं भी कराती रहती हूँ
3: जी जी,
2: मैं भी कराती हूँ, क्योंकि
3: सुरक्षा की दृष्टि से,
2: सुरक्षा की दृष्टि से
3: जी जी।
2: मैम, उन लोगों के लिए तो HIV टेस्ट हर 6 महीने में बहुत कराना जरूरी है, जो लोग संदिग्ध ये गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं
3: जी जी जी,
2: क्योंकि वो नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा, और पता चल रहा है कि हमें है तो हमसे चेन बाई चेन जुड़ते जाते हैं
3: जी जी।
2: अगर एक को हमने किया तो वो एक कहीं और जा रहा है, ऐसे चैन बाई चैन जुड़ता जाता है। अगर हम एक ही सुरक्षित से तरीके से ये काम करेंगे तो फिर 10 और हमसे इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे।
3: तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि HIV एड्स के प्रति आप स्वयं भी सतर्क और जागरूक रहेंगे और अपने परिजनों में अपने से छोटे बड़ों से खुलकर प्रश्न करेंगे। जानकारी होना दुर्घटना होने से बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं, घर में माता पिता भी बच्चे की समझ और आयु को ध्यान में रखकर बातचीत करें। कई बार बच्चा जो है वो घर में ही बात करना चाहता है, लेकिन घर का माहौल या परिजनों के डर से बात नहीं कर पाता, जिसका परिणाम ये होता है कि वो बाहर से विषय की जानकारी खोजता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर उसे जो जानकारी मिल रही है वो सही ही हो, या जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो व्यक्ति सही हो। कई बार गलत लोगों के संपर्क से बच्चे गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, घर का माहौल सही रखें। आज HIV एड्स बीमारी के लक्षण, सतर्कता और सावधानी की बहुत ही उपयोगी जानकारियां हमें मिली हमारी आज की अतिथि महोदय से। संध्या सक्सेना मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई।
2: थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हमारी आज की विशेषज्ञ थी काउंसलर, सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती संध्या सक्सेना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश वाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। तो अब हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: सन 1902 के अंतिम भाग में जापान से दो विख्यात विद्वान बेलूर मठ में पधारे। जापान में एक धर्म महासभा बुलाने का संकल्प लेकर वे विशेष रूप से स्वामी जी से ही मिलने के लिए आए थे। जापान के एक बौद्ध मठ के अन्यतम नायक ओडा ने स्वामी जी से कहा,
1: आप जैसे विख्यात व्यक्ति इस कार्य में सहायक हो तो हमारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। जापान में इस समय धर्म का संस्कार विशेष आवश्यक हो गया है। आप जैसे शक्तिशाली आचार्य के अलावा ये कार्य और किसके द्वारा संपन्न हो सकेगा?
2: इन महोदय के साथ ही डॉक्टर ओकाकुरा भी जापान की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर स्वामी जी से अनुरोध करने लगे। जड़ सभ्यता की दृष्टि से तेजी के साथ उन्नति करने वाले जापान में धर्म भाव की कमी की बात सुनकर स्वामी जी के हृदय में जोश भराया। शारीरिक अस्वस्थता को भूलकर वे जापान जाने के लिए तैयार हुए।
0: स्वामी जी के अलौकिक चरित्र और उदारता से मुग्ध होकर वे लोग मठ में ही निवास करने लगे। स्वामी जी प्रतिदिन भगवान बुद्ध देव और बौद्ध धर्म के संबंध में इनके साथ चर्चा किया करते थे। पाश्चात्य पंडितों ने बौद्ध दर्शन को हिंदू दर्शन के नितांत विपरीत बताकर जो मत प्रकट किए हैं, स्वामी जी उनका खंडन करके दिखा देते थे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की विद्रोही संतान होने पर भी बुद्ध देव के अधिकांश उपदेशों के भाव और उपनिषदों का काफी मेल है। फलतः उपनिषद के ज्ञान कांड पर ही बौद्ध दर्शन की नींव है। जापानी पंडितगण स्वामी जी के बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों को सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने देखा कि इस सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली सन्यासी ने बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि स्वामी जी को बौद्ध श्रमण कहें या हिंदू सन्यासी।
2: कुछ दिनों बाद 1902 ईस्वी के जनवरी मास में स्वामी जी डॉक्टर ओकाकुरा का आमंत्रण स्वीकार कर उनके साथ बुद्ध गया जाने के लिए तैयार हुए। ये भी निश्चय हुआ कि वे वहाँ से काशीधाम में जाकर कुछ दिन विश्राम करेंगे। स्वामी जी के परिव्राजक जीवन का यही अंतिम भ्रमण था।
0: बौद्ध गया मठ के महंत महाराज स्वामी जी की प्रसिद्धि की बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। आज उन्हें अप्रत्याशित रूप से अतिथि के रूप में प्राप्त कर महंत जी के आनंद की सीमा ना रही। स्वामी जी को किसी प्रकार असुविधा ना होने पाए इसलिए स्वयं उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन ध्यान के आनंद में बिताकर स्वामी जी ने वाराणसी की ओर यात्रा प्रारंभ की।
2: स्वामी जी के उपदेशों, शिक्षा तथा उत्साह द्वारा उद्बुद्ध होकर कुछ युवक एकत्र होकर अनाथ, रोगग्रस्त, असहाय तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अग्रसर हुए। एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे राजपथ तथा गंगा घाट से बूढ़े रोगी नर नारियों को उठाकर वहां पर ले जाते और यथा साध्य औषधि, पथ्य, सेवा आदि द्वारा उनके कष्ट को कम करते थे। श्रद्धा व निष्ठा के साथ दीन दुखियों को नारायण मानकर उनकी निस्वार्थ सेवा में आत्मसर्ग करने वाले युवकों की ये दृढ़ता देखकर स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ।
0: ये देखकर कि उनके आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा है, वे कभी कभी दुखी हो जाते थे। परंतु आज इन थोड़े से युवकों का कार्य देखकर उनका वो दुख दूर हुआ। वे गर्व और आनंद से अपने मानस पुत्रों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगे। उत्साह देते हुए बोले,
3: वत्स, तुम लोगों ने सत्य मार्ग जान लिया है। मेरा प्रेम तथा आशीर्वाद सदा तुम्हारा कल्याण करे। साहस के साथ अग्रसर होते जाओ। अपने अभावों के लिए निराश न होना, धन आएगा। तुम्हारी इस छोटी सी संस्था के नींव पर भविष्य में जो कुछ होगा वो तुम्हारी वर्तमान प्रियतम कल्पनाओं को भी लांग जाएगा।
2: स्वामी जी ने इस नवीन रामकृष्ण सेवाश्रम की प्रथम रिपोर्ट के साथ जनसाधारण के समीप आर्थिक सहायता की प्रार्थना कर आवेदन पत्र लिखा। स्वामी जी से उत्साह और आशीर्वाद प्राप्त कर युवकों का कर्मोत्साह 100 गुना बढ़ गया। काशीधाम में सेवा धर्म के सुवर्ण सौध की नींव चिरकाल के लिए स्थापित हो गई। उसके बाद कितनी बाधाएं, विपत्तियां, असुविधाएं आईं, पर उन सब का सामना कर वो सेवाश्रम आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया है।
0: श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव को निकट जानकर स्वामी जी काशी से बेलूर मठ लौट आए। काशी की जलवायु से स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए थे, परंतु मठ में आकर रोग इतना बढ़ गया कि वे शैया ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्णोत्सव के दिन आनंद पर एक विषाद की छाया दिखने लगी। अनेक व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आए थे, पर मिलने का कोई उपाय न देख वे निराश हो गए। स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि वे जनता के सम्मुख आएंगे, परंतु प्रातः काल दो चार व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करके उन्हें इतनी थकावट महसूस होने लगी कि और अधिक बाहर रहने का साहस बिना कर सके।
2: मठ का विशाल प्रांगण जनपूर्ण था। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कहीं प्रसाद बांटा जा रहा है। इस आनंदोत्सव में स्वामी जी को सम्मिलित होने में असमर्थ देख अनेक व्यक्ति दुखी हुए। उस दिन श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के पास बैठे थे। स्वामी जी की धीरे धीरे बढ़ती हुई रोग यंत्रणा तथा शारीरिक अस्वस्थता को देख उनका मुख म्लान हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वे आंसू बहाने लगे। स्वामी जी ने शिष्य का मनोभाव समझकर कहा,
3: क्या सोच रहे हो? शरीर पैदा हुआ है, नष्ट भी होगा। अगर मैं तुम लोगों में अपने भावों को थोड़ा भी प्रविष्ट कराने में समर्थ हो सका, तभी जानूंगा कि मेरा शरीर धारण सार्थक हुआ है।
0: थोड़ी देर बाद भगनी निवेदिता ने कुछ अंग्रेज महिलाओं के साथ जाकर गुरु दर्शन के बाद थोड़ी ही देर में विदा ली। स्वामी जी को कष्ट होगा ये सोचकर वे अधिक देर तक न ठहरी। दिन के 2:30 बजे के बाद शरद बाबू एक बार उत्सव प्रांगण का परिदर्शन कराए और आकर स्वामी जी को उत्सव की बातें बताने लगे। शिष्य के मुंह से 50,000 लोगों के एकत्रित होने का समाचार सुन उन्हें देखने के लिए स्वामी जी बड़े कष्ट से धीरे से खड़े हुए और उस जन समुदाय को देखा, कहा,
3: अधिक से अधिक 30,000।
0: अधिक देर तक खड़े रहना उनके लिए असंभव था। थोड़ी देर बाद वे फिर लेट गए।
2: इस दिन उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रणाली से उत्सव चल रहा है उसे बदलकर 4-5 दिनों के उत्सव की व्यवस्था करना अच्छा होगा। प्रथम दिन शास्त्र पाठ और व्याख्या, दूसरे दिन वेदांत का विवाद और मीमांसा, तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सभा, चौथे दिन श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श व मार्ग के संबंध में भाषण व चर्चा, और अंतिम दिन प्रसाद वितरण व दरिद्र नारायण सेवा।
0: उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे रामकृष्ण देव के जीवन संबंधी विचार सभी शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में प्रविष्ट हो। महोत्सव का अनुष्ठान यदि उनके विचारों के प्रचार के केंद्र के रूप में परिवर्तित न हो तो ऐसा समझना निरर्थक है कि कुछ लोग मिलकर केवल हल्ला गुल्ला करने से ही श्री रामकृष्ण देव के विचारों का प्रचार कर लेंगे। सामयिक धर्म बोध की उत्तेजना में कीर्तन नृत्य आदि द्वारा विशेष कुछ न होगा।
2: लगातार औषधि सेवन तथा नियम कानून के नियंत्रण में रहते हुए स्वामी जी विरक्त हो गए। उन्होंने सुना कि उनके गुरु भाई गण गंभीर दार्शनिक तत्व आदि की आलोचना होने की आशंका से अनेक व्यक्तियों को उनके साथ साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं। अनेक व्यक्ति प्रतिदिन निराश होकर दुखी मन से मठ से लौट जाते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु भाइयों को बुलाकर कहा,
3: देखो इस देह को रखकर और क्या होगा, पर कल्याण में इसका पतन हो जाए तो अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण देव ने असहनीय रोग यंत्रणा को सहन करके भी जीवन के अंतिम दिन तक परहित के लिए उपदेश दिया था, मुझे भी क्या ऐसा ही करना उचित नहीं? तृण जैसी यह मामूली देह रहे या जाए मैं इसकी परवाह नहीं करता। सत्य के अनुसंधानकारी व्यक्तियों के साथ विमर्श करने में मुझे जो आनंद होता है इसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे। अपने स्वदेशवासी भाइयों की आत्मा की छुपी हुई शक्ति को जागृत करने में सहायता करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करने से भी मैं विचलित नहीं होऊंगा।
0: इससे पूर्व स्वामी जी जब कभी कुछ आराम अनुभव करते थे उसी समय कोई ना कोई काम आरंभ कर देते थे। बिना काम किए बैठे रहना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। मार्च मास के प्रथम भाग में जीवन के अंतिम दिन तक इन 4 महीनों में शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उन्होंने नाना प्रकार से जो असाधारण परिश्रम किया था वो वास्तव में आश्चर्य है। जिस समय वे एकाग्र चित्त से किसी कार्य में युक्त होते थे उस समय उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखने का संकल्प भी लिया था। इस कार्य का प्रारंभ भी हुआ किंतु खेद है एक भी पुस्तक पूर्ण न हुई।
2: स्वामी जी आडंबर पूर्ण क्रियाकलाप के विशेष विरोधी थे। मठ की नित्य नैमित्तिक ठाकुर पूजा यथा संभव सादगी के साथ समाप्त कर वे ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को अधिकांश समय साधना, शास्त्र चर्चा, वेद पाठ आदि कार्यों में ही बिताने का निर्देश देते थे। मठ के प्रतिदिन की कार्यावली को स्थिर रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक कार्य का समय निर्दिष्ट कर दिया था। मठ के प्रत्येक व्यक्ति पर वे तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। जानबूझकर यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता तो वे उस पर कठोर भाषा में भर्त्सना भी करते थे।
0: रात्रि के 3 बजे शैया त्याग करके स्वामी जी ध्यान मग्न होते थे। ध्यान के कमरे में उनके लिए एक अलग आसन रखा रहता था। दूसरे सन्यासी व ब्रह्मचारी गण उन्हें घेर कर बैठते थे। जब तक स्वामी जी न उठते तब तक किसी को उठने का अधिकार न था और आवश्यकता भी नहीं होती थी। महापुरुषों की पवित्र चिंताधारा के प्रभाव से प्रत्येक का मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होता था। एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति से चित्त भर जाता था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक दिन कहा था,
1: नरेन के साथ ध्यान करने बैठने पर जैसा ध्यान जमता है वैसा मैं जब अकेला बैठता हूँ तब नहीं जमता।
2: कभी कभी स्वामी जी 2 घंटे से अधिक समय तक ध्यानासन पर बैठे रहते थे। उसके बाद शिव शिव कहते कहते आसन से उठकर श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम कर कोई शिव संगीत गाते गाते नीचे उतर आते थे और प्रांगण में टहलते थे। मुखमंडल पर अपूर्व प्रशांति, विशाल विस्तृत नेत्रों में भाव के आवेग, बेसुध सी दशा में लापरवाही से टहलना आदि देखकर ऐसा लगता था कि मानो वास्तव में वे इस पृथ्वी के मानव नहीं हैं।
0: इसके बाद शास्त्र चर्चा प्रारंभ होती थी। स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहकर शिष्यों का विचार करते और जटिल स्थानों की स्वयं मीमांसा करते। प्रातःकाल उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि वेदांत शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन चलता था। स्वामी जी ने स्वयं कुछ दिनों से शिष्यों को पाणिनी तथा लघु कौमुदी पढ़ाना शुरू किया था। दोपहर में भोजन के उपरांत फिर पठन पाठन होता था। संध्या आरती के शंख घंटा बजने के साथ ही साथ सब लोग ध्यान गृह में एकत्र होते थे। ध्यान के समय पर यदि कोई अनुपस्थित रहता स्वामी जी उसकी भर्त्सना करते थे।
2: कोई भी ब्रह्मचारी शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से मठ की दैनिक नियमावली का उल्लंघन करने पर उस दिन मठ में भोजन नहीं कर पाता था। आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर उस दिन के लिए उसे उदर पूर्ति करनी पड़ती थी। स्वामी जी एक ओर जिस प्रकार उदार, दयालु व स्नेह परायण थे, दूसरी ओर उसी प्रकार कठोर, न्याय परायण तथा निर्मम थे। कितना ही प्रिय पात्र क्यों ना हो, उनकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी वे क्षमा नहीं करते थे। वे जानते थे उदारता व क्षमा की अधिकता होने पर भविष्य में मठ के आदर्श की रक्षा करना असंभव हो जाएगा।
0: वास्तव में इस समय यश, मान, पद आदि सभी बातें संपूर्ण रूप से भूलकर उन्होंने अपनी सारी शक्ति मनुष्य गठन के कार्य में नियुक्त कर दी। इस प्रकार अप्रैल और मई के माह व्यतीत हुए। भारत तथा बाहरी देशों में रामकृष्ण मिशन के प्रचारक सन्यासीगण बड़े उत्साह पूर्वक प्रचार कार्य में नियुक्त थे। स्वामी जी के नवीन कर्मोत्साह को देख कोई न समझ सका कि वे महायात्रा की तैयारी में हैं।
2: जून मास के प्रथम भाग से ही स्वामी जी मठ तथा रामकृष्ण मिशन संबंधी बातों में संपूर्ण उदासीनता प्रकट करने लगे। किसी भी विषय में अब वे अपना मतामत व्यक्त न करते थे। कभी कभी किसी कार्य में उनकी सलाह पूछने पर वे विरक्ति के साथ उन्हें स्वयं तय कर लेने का आदेश देते थे। आचार्य, नेता, गुरु, शिक्षादाता आदि उपाधियों को एक एक करके छोड़ वे अधिकांश समय ध्यानानंद में ही डूबे रहते थे। ध्यान की आकांक्षा को अधिक से अधिक बढ़ते देख उनके गुरु भाई गण चिंतित हुए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वो जिस दिन अपने को पहचान सकेगा उस दिन फिर उसका शरीर न रहेगा। यही बात बार बार सभी के मन में आने लगी।
0: सभी समझ गए कि अब किसी भी पल स्वामी जी देह त्याग कर सकते हैं, परंतु इस समय उनके शरीर से रोग के सभी लक्षण दूर हो गए थे। चिंतित व दुखी गुरु भाइयों के साथ हास्य खेल आदि करते हुए वे सदा अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाए रखते थे। वे वास्तव में देह त्याग करेंगे, कोई इस बात को जानकर भी समझ नहीं सकता था।
2: देह त्याग के एक सप्ताह पूर्व आचार्य देव ने स्वामी शुद्धानंद जी को एक पंचांग लाने का निर्देश दिया। पंचांग आ जाने पर उन्होंने स्वयं उसे पढ़कर अपने कमरे में रख दिया। बीच बीच में वे गंभीर ध्यान के साथ उसे देखते थे। उस समय उनके मुख का भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी विशेष कार्य के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं, परंतु किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी का देहांत होने के बाद उनके गुरु भाईगण समझ सके कि स्वामी के बारंबार पंचांग देखने का क्या मतलब था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी देह त्याग से कुछ दिन पूर्व एक शिष्य को पंचांग देखने के लिए बुलाया था। उसके बाद कुछ दिनों की विशेष बातें जान लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बस अब और आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने भी गुरुदेव की पद्धति का अनुसरण करते हुए महायात्रा का दिन निश्चित कर लिया था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी को पंचांग देखते समय किसी को थोड़ा भी इस बात का स्मरण न हुआ।

0: त्याग से 3 दिन पूर्व स्वामी जी मठ के विस्तृत मैदान में घूमते घूमते उस स्थान को उंगली के इशारे से दिखाते हुए सहसा बोल उठे,
1: मेरा देहांत होने पर उस स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना।
0: साथ में जो लोग थे उन्होंने चुपचाप सुन लिया, कोई प्रश्न करने की बात किसी के मन में भी ना आई।
2: बुधवार का दिन एकादशी थी। स्वामी जी ने उस दिन उपवास किया था। सुबह के समय उन्होंने शिष्यों को स्वयं परोसकर भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भात के साथ पकाए हुए कटहल के बीज तथा आलू और दूध यही भोजन की सामग्री थी। भोजन के समय स्वामी हास्य विनोद से सभी को हंसाने लगे।
0: स्वामी जी को प्रफुल्लित देखकर शिष्यगण बहुत ही खुश हुए। स्वामी जी जिस समय बालक की तरह हंसी मजाक करते थे और ठहाके लगाते थे, सभी के साथ सरल भाव से मिलते थे और उस समय उनके सामने किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता था। परंतु जब वे गंभीर होकर बैठे रहते, उस समय उनके पास में जाकर खड़े होने में भी भय होता था। आहार के बाद सब लोगों के उठ जाने पर स्वामी जी उनके हाथ धुलाने के लिए लोटे से स्वयं जल देने लगे और आचमन के बाद तौलिए से उनके मुंह और हाथों को पोंछने लगे।
3: ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? यह सब काम तो मुझे करना चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपसे सेवा नहीं ले सकता।
1: क्यों, क्या ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे?
0: शिष्यों ने मन ही मन में सोचा वो तो उनका अंतिम दिन था, पर कोई ये बात कह नहीं पाया।
2: सन 1902 ईस्वी 4 जुलाई तड़के ही शैया त्याग कर स्वामी जी आज सभी के साथ एकत्र ध्यान करने न गए। अतीत की बातें चलाकर वे नाना प्रकार से वार्तालाप करने लगे। दूसरे दिन अमावस्या और शनिवार था, इसलिए मठ में उन्होंने श्री काली पूजा करने की इच्छा प्रकट की। पूजा के आयोजन के संबंध में वार्तालाप हो रहा था। इसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिता शक्ति साधक तंत्र शास्त्र में पंडित ईशान चंद्र भट्टाचार्य महाशय मठ में पधारे। उन्हें देख स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए।
0: भट्टाचार्य महाशय के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने उसी समय स्वामी शुद्धानंद जी और बोधानंद जी को पूजा की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया। इसके बाद थोड़ी सी चाय पीकर वे मठ के ठाकुर घर में प्रविष्ट हुए। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई। इस प्रकार तो वे कभी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करते थे, इसका क्या कारण है कौन कहे। 3 घंटे व्यतीत हो जाने पर एक श्यामा संगीत गाना गाने के बाद आनंद में मग्न स्वामी जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर कर नीचे आए। मन चल निज निकेतने, गाना गुनगुनाते हुए वे टहलने लगे।
2: स्वामी प्रेमानंद जी पास ही खड़े थे। उन्होंने सुना स्वामी जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं,
1: यदि इस समय कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो समझ सकता था कि विवेकानंद ने क्या किया है, परंतु समय पर अवश्य अनेक विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे।
0: सूक्ष्म अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष स्वामी प्रेमानंद देख कर भी देख न सके, समझ कर भी न समझ सके कि उनके प्यारे गुरु भाई विवेकानंद ने आज देह त्याग का संकल्प

0: आशित भाव से स्वामी जी के साथ एकत्र होकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सभी बड़े आनंदित हुए। स्वामी जी अस्वाभाविक आग्रह के साथ भोजन करने लगे और गुरु भाइयों के साथ हास्यालाप में रत हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे दिनों की अपेक्षा आज उनका शरीर अधिक स्वस्थ लग रहा है।
1: भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके ही स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को संस्कृत क्लास में बुला लिया। अन्य दिन 2:30-3 बजे के समय पाठ शुरू होता था। आज 1:15 पर ही पाठ प्रारंभ हुआ। लघु कौमुदी व्याकरण का पाठ चल रहा था। विषय नीरस होने पर भी लगातार 3 घंटे में किसी ने किसी प्रकार विरक्ति का अनुभव नहीं किया। कभी हास्यपूर्ण छोटी छोटी कहानियां कहकर, कभी सूत्रों की नाना प्रकार की आकर्षक व्याख्या करते हुए स्वामी जी कठिन कठिन स्थानों को भी आकर्षक बनाने लगे। एक बार बचपन में स्वामी जी ने अपने मित्र स्वर्गीय दाशरथी सान्याल को एक रात में ही इंग्लैंड का सारा इतिहास सिखा दिया था। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर ऐसा दिखा कि स्वामी जी थक से गए हैं।
0: संध्या आरती का समय, ब्रह्मचारी गण एक एक करके स्वामी जी को प्रणाम करके ठाकुर घर की ओर चले। स्वामी जी धीरे धीरे दुमंजिले पर अपने कमरे में पधारे। स्वामी जी ने उन्हें अपने कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल देने का आदेश दिया। काफी देर बाद मानो एकाएक होश संभाल कर विवेकानंद मुड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मचारी को बाहर बैठकर जप करने का निर्देश देकर वे स्वयं जपमाला हाथ में लिए पद्मासन में बैठ गए। 1 घंटे बाद आसन से उठकर स्वामी जी कमरे में बिस्तर पर लेट गए और ब्रह्मचारी जी को बुलाकर उन्होंने पंखा चालू करने के लिए कहा।
1: जप माला हाथ में लिए सोए हुए महापुरुष की देह निस्पंद और स्थिर है। उस समय करीब रात्रि के 9 बजे का समय था। इसी समय उनका हाथ कांप उठा और साथ ही वे निद्रित शिशु की तरह अस्पष्ट स्वर से थोड़ा क्रंदन कर उठे। 2 गंभीर दीर्घ निश्वास के साथ ही साथ उनका मस्तक तकिए से हिल गया। स्वामी को इस स्थिति में देख ब्रह्मचारी जी ये न समझ सके कि क्या करना चाहिए। वे घबरा गए और नीचे जाकर दूसरे सन्यासियों को ये समाचार सुनाया। उन्होंने जल्दी ही आकर देखा कि योगीवर अनंत निद्रा में शयन कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि के अंधकार पूर्ण आड़ में जगन माता ने अपने व्यग्र बाहुओं को प्रसारित कर रण क्लांत वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया।
0: जो कुछ आँखों के सामने था वो आँखों से ओझल हो गया। किंतु किस उद्देश्य से संसार रूपी रंगमंच पर किसने ये अभिनय किया? कौन है विवेकानंद? कौन है भगवान श्री राम कृष्ण? मृत्यु की यवनिका द्वारा नेपथ्य भूमि आवृत्त है। काल स्रोत में कहाँ जाकर ये अभिनय समाप्त होगा? मानव का शुद्र ज्ञान क्या भूत क्या भविष्य किसी अंत तक पहुंच नहीं सकता। किंतु आज जो कुछ है कल वो नहीं रहता। बहता रहता है केवल अनंत काल स्रोत। गरज उठती हैं बीच बीच में केवल ऊंची ऊंची लहरें।
1: बंगाल के जीवन स्रोत में राजा राम मोहन से लेकर तरंगों के उत्थान और पतन का हमने निरीक्षण किया है। शताब्दी के अंत तथा प्रथम भाग में फिर ये एक तरंग का अभिघात। दक्षिणेश्वर में गंगा जी के पूर्वी तट पर एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई। बेलूर में पश्चिम तट पर इसका विलय हुआ।
0: अमेरिका के स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को उनका महाप्रयाण हुआ। परंतु क्या ये सचमुच का ही चले जाना, चिर निर्वाण, पृथ्वी के लोगों के साथ चिर विच्छेद? न, उनके जीवन और संदेश से तो ऐसा नहीं लगता। एक बार उन्होंने कहा था,
2: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य से कभी विरत नहीं होऊंगा जब तक कि संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
1: शायद स्वयं को ही लक्ष्य करके वे 4 जुलाई नामक कविता लिख गए थे।
2: वक्त वो हासिल निकाला काम का, प्यार का, पूजा का, जीवन दान का। हाथ उठाया, संवर कर पूरा किया। फिर तुम्ही ने स्वस्ति की बांधी कमर, जनगणों पर मुक्ति की डाली किरण। देव चलते ही चलो बेरोक टोक, विश्व को दोपहर न जब तक घेर ले, कर तुम्हारा हर जमी जब तक न दे, स्त्री पुरुष जब तक न देखें चाव से, बेड़ियां उनकी कटी उल्लास की जानई, जब तक न समझें आ गई। ओम शांति, ओम शांति।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।